फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जबलपुर का ये विविध भारती केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 जून सन 2026। सुबह के 5:58 हो चुके हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है। आप सभी का दिन मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामना है।

0: आकाशवाणी जबलपुर का ये विविध भारती केंद्र है। 6 बजने वाले हैं समाचारों के लिए दिल्ली केंद्र चलते हैं।
1: चार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2री बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती।
4: वंदन वार,
5: भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार।

आज का चिंतन। आचार्य चाणक्य का कथन है, अच्छे और ज्ञानी लोगों के साथ रहें, क्योंकि संगति का असर हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। अब लीजिए सुनिए भक्ति रचनाएं।

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। झरोखा के अंतर्गत अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर श्री रामचरित मानस गान सुनेगा भाग 209। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर भाग 4। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खसनीस, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी, प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।

सुबह 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक एसपी बाल सुब्रमण्यम पर। 10 बजे पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान 10 बजे आज के मेहमान के अंतर्गत सुनिए डॉक्टर गायत्री आहूजा से ममता सिंह की बातचीत। प्रस्तुतकर्ता सुबैर खान। 11 बजे रंग तरंग। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 बजे सुनिए सुरीला सफर। 2 बजे त्रिवेणी। 2:30 पर सदाबहार नक में। 3 बजे सखी सहेली के अंतर्गत सुनेगा बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श कहानी पद्मश्री की दुलारी देवी मधुबनी पेंटिंग। मुझे कुछ कहना है गर्मी की छुट्टियां और आम के मजे उपयोगी टिप्स वजन कैसे घटाएं। शाम 4 बजे हेलो फरमाइश प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 5 बजे छाया गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 शाम सुनिए संध्या रंजन। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर भाग 4। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खसनीस। 7 बजे फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए निर्देशक इकबाल अली से यूनुस खान की बातचीत। इनसे मिले कार्यक्रम में सुनिएगा भाग 1। प्रस्तुतकर्ता सुबैर खान। हवा महल में रात 8 बजे सुनिए झलकी स्टिन केस लेखन राजकुमार दाग का निर्देशन दीनानाथ का।

8:15 पर चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार। रात 9:30 आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री नूतन पर। रात 10 बजे छाया गीत,

रात 10 बजे छायागीत, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे सुनेगा कार्यक्रम रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 209।

भरत का दल बल समेत और विशेषकर चतुरंगिनी सेना के साथ पर्णकुटी आने का समाचार सुन लक्ष्मण का क्रोध जाग उठा था और उन्होंने भरत का वध करने की सौगंध ले ली। तभी आकाशवाणी हुई कि कोई भी काम उचित अनुचित जानकर तथा खूब सोच समझ कर करना चाहिए। देववाणी सुनकर लक्ष्मण सकुचा गए। श्री राम ने तब उन्हें समझाया कि भरत सरीखा श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया न ही देखा गया। अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए, आकाश भले ही बादलों में सिमट जाए, गोखुर जितने जल में अगस्त्य ऋषि डूब जाएं, पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक सहनशीलता छोड़ दे, किंतु भरत को राजमद हो ही नहीं सकता। श्री राम के वचन सुनकर देवलोक में उनकी जय जयकार होने लगी। यदि जगत में भरत का जन्म नहीं होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान भाग 209।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। प्रस्तुत है इस श्रृंखला की चौथी कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं। रविंद्र जी, हम त्रिताल की बात कर रहे थे पिछली कड़ी में
2: जी,
1: और तबले के दौर की बात चल रही है, तो नृत्य के जो बोल है वो हाँ। अनायास ही याद आ जाते हैं
2: हाँ।
1: कैसे होता है फिल्म संगीत में तबला और नृत्य का संयोग?
2: नृत्य की तो हमारे भारत में बहुत उज्ज्वल परंपरा रही है
1: जी जी,
2: और उत्तर हिंदुस्तान में कथक नृत्य पेश किया जाता है, तो फिल्मों में भी उसका आना बिल्कुल स्वाभाविक था, और उसी तरह वो फिल्मों में कई गीतों में नृत्य का आविष्कार लिया गया है
1: जी।
2: जो मतलब नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, कथक नृत्य
1: जी,
2: उसका आविष्कार फिल्मों में शुरुआती दौर में बहुत अच्छा था। तबला और नृत्य का वैसे तो बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि तबले के बोल और घुंघरू के बोल बिल्कुल एक से होने के वजह से तबला और उसके साथ में वो नृत्य, तो वो सारे परण वगैरह जो चलते हैं फिल्मों में जो लिए गए हैं
1: जी,
2: तो वो काफ़ी हद तक मतलब लोगों ने पसंद किया उसको, और वो जो हमारे भारत की उज्ज्वल शैली है नृत्य की
1: जी,
2: तो उसका आविष्कार तो लोगों ने हमेशा देखना पसंद किया है उसको। एक उदाहरण के तौर पर जो कथक के जो प्रोग्राम होते हैं
1: जी,
2: जिसमें कार्यक्रम में तो कथक का तो पूरा मतलब जैसे तबला सोलो, तो तबला सोलो में जैसे पूरा हम तबले का एक किसी एक ताल में
1: जी,
2: उसका पेशकार, कायदा, रेला, परण वगैरह सब सब कुछ उसमें होता है, तो वैसे ही नृत्य का जब स्वतंत्र कार्यक्रम होता है तो उसमें सब आता है, लेकिन फिल्मों में उसमें से कुछ हिस्सा दिखाया जाता है, और जो छोटा सा होता है लेकिन हमेशा के लिए याद रहे इस तरह का वो होता है
1: जी, जी,
2: बहुत उच्च कोटि का आविष्कार जिसे हम लोग कह सकते हैं।
1: और बहुत तो, से नृत्य गीत हैं फिल्मों में।
2: बिल्कुल है,
1: जो अनायास ही याद आ रहा है वो मधुबन
2: में
1: राधिका नाचे रे, ये जो कोहिनूर फिल्म का गीत है
2: जी हाँ, इसमें तो तराना भी लिया गया है
1: जी जी,
2: तो तराना भी नृत्य में भी करते हैं तराना,
1: तो ये गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं
2: जी।

0: कोहिनूर फिल्म का ये गीत हमने सुना मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, और संगीतकार नौशाद साहब ने कितनी खूबसूरती से तीन ताल का इसमें प्रयोग किया है। रविंद्र जी, फिल्म संगीत में तबले का दौर, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं, और तबले की बात हो और मूर्धन्य कलाकार पंडित सामता प्रसाद जी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल, पंडित सामता प्रसाद जी ने फिल्मों में जो योगदान दिया है वो हमेशा के लिए लोग उसको याद करते रहेंगे। आरडी बर्मन जो है
0: जी,
1: संगीतकार आरडी बर्मन, सामता प्रसाद जी को अपने गुरु स्थान पर मानते थे
0: जी।
1: मेरे ख्याल से पंडित सामता प्रसाद जी का जो गाना है नाचे मन मोरा मगन तिगदा दिगी दिगी, सचिन दा का संगीत दिया हुआ ये जी, गीत जी। जो है तो ये गाना जो है वो अपने आप में बेमिसाल है, क्योंकि उसमें जो है ना वो पंडित सामता प्रसाद जी की खासियत है कि वो तिगदा दिगी दिगी, तो वो दिगी दिगी बजा के धिन, ये उन्होंने उसमें रेला का भी जो आविष्कार किया है।
0: सचिन देव बर्मन की जिस संगीत रचना की बात हो रही है उसकी एक झलक सुनकर आगे बढ़ते हैं रविंद्र जी।
1: बिल्कुल।

0: सामता प्रसाद जी का ये जो तबला है वो हमेशा सब लोग उसको याद करते हैं। आरडी बर्मन जी ने भी शोले फिल्म में, किनारा फिल्म में
1: जी,
0: उसमें भी पंडित सामता प्रसाद जी का तबला हमें सुनने को मिलता है। और शोले फिल्म में तो पार्श्व संगीत जो होता है,
1: बैकग्राउंड
0: स्कोर में भी उन्होंने उसको लिया है। आर डी बर्मन साहब ने वो जो सीन है शोले का, सबको मालूम है वो चल बसंती धन्नों को वो बोलती है। तब वो जो घोड़ा दौड़ता है तो बैकग्राउंड में जो बजता है तबला, वो तबला वो सीन को बहुत ऊपर उठाता है।
1: जी जी,
0: तो ऐसे महान कलाकार हमारे फिल्मों में उनका जो योगदान है उस वजह से वो सारी चीज़ें अमर हो गई है।
1: तो क्यों ना फिर किनारा फिल्म का गीत सुन लिया जाए जिसमें पंडित सामता प्रसाद जी ने बहुत ही सुंदर तबला बजाया है और तबले की बोल भी गायक के स्वर में यानी भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में हमें सुनने को मिलते हैं। बड़ा ही खूबसूरत गीत है।

0: किनारा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं, जो राग भैरवी पर आधारित है और इसमें अद्धा तीन ताल का उपयोग हुआ है। संगीतकार राहुल देव बर्मन। इसी के साथ फिल्म संगीत में तबले का दौर श्रृंखला की ये कड़ी अब संपन्न हो रही है।
1: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। अभी आपने सुनी इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: है तो टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ,
4: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले?
4: ना,
3: पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और?
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़िया,
3: जाओ भाई।
5: आरबीआई कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
8: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
9: हर घर सूर्य घर।
10: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती। वीको वज्रदंती, मजेदार नहीं असरदार, इंडिया का गम एक्सपर्ट। वीको टर्म

छबीली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज नूतन की थी, एस रतन ने इस गीत को लिखा था और स्नेहल भाटकर का संगीत था। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब हम आपको सुना रहे हैं सीमा फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज है, हसरत जयपुरी के बोल हैं और शंकर जयकिशन की धुन।

0: वर्ष के बाद।
1: सुनो छोटी सी गुड़िया की ये लंबी कहानी, बहुत ही सुंदर सा गीत आप सुन रहे थे। सीमा फिल्म से लता मंगेशकर की ये आवाज़ थी, हसरत जयपुरी के बोल थे और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए शबाब फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज़ें हैं, शकील बतावनी के बोल हैं और नौशाद की।

शबाब फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजें थीं। शब्दकार थे शकील बदायनी, संगीतकार थे नौशाद।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

0: नगीना फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शंकर जयकिशन।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
5: देखो जी बहार आई गांवों में खिली गलियां।
3: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
6: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
3: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
7: तुम्हारी याद सताते हैं
3: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कर।
1: लैला मजनू फिल्म का गीत तलत महमूद की आवाज में आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा था और सरदार मलिक का संगीत था। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए दिल्ली का ठग फिल्म का गाना। आशा भोसले की आवाज है, एसएच बिहारी की रचना और रवि की।

0: ठंडी प्यार की हवाएं काली रात की घटाएं आ जा।
1: कभी अंधेरा कभी उजाला, इस फिल्म का गाना आप आशा भोसले मन्ना डे की आवाज़ों में सुन रहे थे। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे ओपी नैयर। इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए सविता सिंह को। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वज्रदंती। वीको वज्रदंती मजेदार नहीं असरदार, इंडिया का गम एक्सपर्ट।
1: बड़ी बहू ये तुम्हारे ना।
2: इतनी भी क्या जल्दी थी?
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना।
3: और ये
4: मेरी गुड़िया के नाम।
5: पर दादी
1: हाँ?
5: आपके नाम?
6: सब कुछ, मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो।
5: क्या
6: RBI कहता है?
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी जो गीत आपने सुना था, इसे लिखा था आनंद बख्शी ने और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई थी। अब लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजों में ही।

शिखा भोसले की आवाजों में सुन रहे थे। इस गाने के पहले आपने मिलन फिल्म का गाना सुना था, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजें थी। आनंद बख्शी ने उस गीत को लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई थी। लीजिए अब सुनिए तेरे घर के सामने, इस फिल्म का ये गाना।

0: तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आपने ये गीत सुना। और इस फिल्म का नाम था तेरे घर के सामने। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा था और एस टी बर्मन ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हम हेरा ही प्यार के ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। इस कार्यक्रम में चलिए लेते हैं एक बहुत छोटा सा अंतराल।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में इंदिवर का लिखा हुआ ये गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का था। फिल्म का नाम था सरस्वती चंद्र।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के आवाज़ों में फिल्म देवी का ये गीत अभी आपने सुना। आनंद बख्शी ने इसे लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई थी। लीजिए अब सुनिए पेंगेस्ट फिल्म का गाना। किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाज़ें हैं, बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे हैं, तर्ज एस टी बर्मन ने बनाई है।

0: जमाना दीवाना क्या कहेगा,
1: जमाना क्या कहेगा
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: किशोर कुमार, आशा भोसले की आवाज़ों में पेइंग गेस्ट फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था और एस डी बर्मन ने धुन बनाई थी। इसी गीत के साथ ही आज का हमें राही प्यार के कार्यक्रम अब समाप्त करने की इजाज़त सविता सिंह को दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
4: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
3: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
5: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
3: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
7: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
8: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करके ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष करके रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
7: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
9: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
7: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
10: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जांच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस

0: ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिन्दुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋतव्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी का विषय है मुलाकातें। दोस्तों, मुलाकातें क्यों जरूरी होती हैं? इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हमारे विचार, भावनाएं और पहचान दूसरों के साथ संबंधों से आकार लेती हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तो सिर्फ बातें नहीं होती, हाव भाव, आंखों का संपर्क, आवाज का उतार चढ़ाव, वे सब मिलकर सच्चा जुड़ाव बनाते हैं। यही वजह है कि आमने सामने की मुलाकातें रिश्तों में जान डालती हैं। मिलने जुलने से रिश्तों में मिठास आती है। इन मुलाकातों का असर मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ देता है।

0: खबर।
1: दोस्तों, मुलाकातें हमें सुना हुआ और समझा हुआ महसूस कराती हैं। दुख बांटने से हल्का लगता है और खुशी बांटने से बढ़ती है। अकेलेपन में इंसान अपने ही विचारों में उलझ सकता है। लोगों से मिलना उस घेरे को तोड़ता है और मन को संतुलन और सुकून देता है। हम एक दूसरे से बात किए बिना रह नहीं सकते। कितनी परेशानियों का हल किसी न किसी के साथ होने से, बात होने से चुटकियों में दूर चली जाती हैं। एक छोटी सी मुलाकात जिंदगी की तमाम समस्याओं से लड़ने की हिम्मत दे जाती है, जिसमें सही राय और विचारों के आदान प्रदान में स्पष्टता और सच्चाई हो।

दोस्तों, हर व्यक्ति की एक अलग कहानी होती है। उनसे मिलने जुलने से हमारी सोच व्यापक होती है, पूर्वाग्रह कम होते हैं और सहानुभूति बढ़ती है। हम दूसरों की गलतियों और सफलताओं दोनों से सीखते हैं, जो किताबों से हमेशा नहीं मिल पाती। रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं रहते, उन्हें समय और मौजूदगी चाहिए। साथ बैठना, चाय पीना, खामोशी साझा करना, ये छोटे पल भरोसा बनाते हैं। मुश्किल वक्त में वही रिश्ते काम आते हैं जिनमें नियमित मुलाकातें होती रहती हों। अच्छी मुलाकातें यादें बनाती हैं, सालों बाद भी वही हंसी वही बातचीत दिल को गर्म रखती है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज़।

0: आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में सुनेंगे कार्यक्रम आप चित्रलोक।

0: एनिमी फिल्म का गाना आपने चित्रलोक कार्यक्रम में अभी सुना। ऐश्वर्या कुमार, दर्शना मेनन, रीना गिलबर्ट और विद्या गोपाल और यशिका सिक्का की आवाजें थी।
1: पत्थर है वो, मुझे रोक टोक कहते हैं लोग, पर मोमसा है मेरा जान।
0: पुष्पा 2 फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं श्रेया घोषाल की आवाज में।

0: मलयालम के बोल थे और देवी श्री प्रसाद का संगीत था चित्रलोक कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े

हो जाने की जस्बी का। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

धुरंधर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी सतेंद्र सतराज और जैस्मिन सैंडल्स की। इस गीत को सतेंद्र सतराज और जैस्मिन सैंडल्स ने मिलकर लिखा और संगीत से संवारा था इस गीत को शाश्वत सचदेव ने। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा इस समय आप सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से अंतराल का।

जुबिन नौटियाल और सुवर्णा तिवारी की आवाजों में आप धड़क टू फिल्म का गीत सुन रहे थे। तनिष्क बागची ने इस गीत को संगीत से संवारा था। आइए अब सुनते हैं बॉर्डर टू फिल्म का ये गाना। आवाजें हैं सोनू निगम और पलक मुछाल की।

यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

दोस्तों, इस संदेश के पहले जो गीत आपने सुना था उसे हमने बॉर्डर टू फिल्म से लिया था। आवाजें सोनू निगम और पलक मुछाल की थी। जावेद अख्तर और मनोज मुंतशिर ने मिलकर इस गीत को लिखा था और अनु मलिक और मिथुन ने इस गीत की धुन बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से।

विशाल मिश्रा की आवाज़ में हक फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कौशल किशोर ने इस गीत को लिखा था, विशाल मिश्रा ने इस गीत की धुन बनाई थी। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है कि एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं गदर 2 फिल्म का गाना। अरिजीत सिंह की आवाज में सईद कादरी की बोल है मिथुन का संगीत।

अरिजीत सिंह की आवाज में गदर 2 फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों, आज इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम्स ऑफ अग्रेशन यानी दिवस है, यानी हिंसा और आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। बच्चों की दुनिया सपनों और उम्मीदों से भरी होती है, उनकी सुरक्षा, प्यार, दुलार, शिक्षा उनका अधिकार है। लेकिन जब हिंसा और संघर्ष जीवन में प्रवेश करता है तो सबसे अधिक प्रभावित बचपन होता है। बहुत सारे बच्चे अपने परिवार, घर और शिक्षा से वंचित हो जाते हैं और मानसिक भावनात्मक आघात का सामना करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा सन 1982 में शुरू किए गए इस दिवस का उद्देश्य दुनिया का ध्यान उन निर्दोष बच्चों की ओर आकर्षित करना है जो किसी न किसी रूप में आक्रामकता और हिंसा का शिकार हुए हैं। ये दिवस सिर्फ संवेदना व्यक्त करने का अवसर नहीं, बल्कि हम सभी को बच्चों के अधिकारों की रक्षा, उनके लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के जिम्मेदारी का भी स्मरण कराता है। आज जब दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और अस्थिरता का वातावरण है, इन सब से होने वाले दुष्प्रभाव में बच्चे भी शामिल हैं। ऐसे में ये प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम बच्चों को सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण कैसे प्रदान करें। बच्चों की सुरक्षा सिर्फ संस्कारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ही जिम्मेदारी नहीं, बल्कि परिवार, समाज, स्कूल की भी समान भागीदारी ये आवश्यक है। बच्चे प्रेम, विश्वास और संवाद का बच्चों को ये वातावरण मिले, ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। उनकी शिक्षा, उनके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना अति आवश्यक है। उन्हें हिंसा और शोषण से बचाने के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। घर, परिवार, विद्यालय, समाज और समाज सभी की यह जिम्मेदारी है कि बच्चों का उचित संरक्षण, देखभाल हो, उचित शिक्षा व्यवस्था हो, भयमुक्त प्रेमपूर्ण वातावरण मिले ताकि वे अपने सपनों को खुलकर जी सकें। चित्रलोक कार्यक्रम में हम आपको सनम रे फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं।

0: सनम रे फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। शान की आवाज में मनोज मुंतशिर ने इस गीत को लिखा था और जीत गांगुली ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
5: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
6: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
5: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
6: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
7: सखी सहेली।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। चित्रलोक कार्यक्रम में अब समय एक और छोटे से अंतराल का है, फिर से हाजिर होंगे।

श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजों में आरक्षण फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। प्रसून जोशी ने इसे लिखा था और शंकर एहसान लॉय ने तर्स बनाई थी। दोस्तों, आज महान पार्श्व गायक एसपी बाल सुब्रमण्यम का जन्मदिन है, उन्हें सादर नमन। एसपी बाल सुब्रमण्यम भारतीय सिनेमा के उन दुर्लभ गायकों में से हैं जिन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सहित कई भाषाओं में अपने मधुर आवाज से करोड़ों श्रोताओं के दिलों में अपना विशेष स्थान बनाया है। आपको याद दिला दें कि आज सुबह 9:30 पर आज के फनकार केंद्रित होगा एसपी बाल सुब्रमण्यम पर, जरूर सुनिएगा। अब चित्रलोक कार्यक्रम में एक और गाना।

हीर एक्सप्रेस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी सिमर कौर और नवीश रन की। हरमनजीत का लिखा हुआ ये गीत आपने सुना। अब सत्यमेव जयते 2 फिल्म का ये गाना।

ज़ारा एहसान और जास मनक की आवाज़ों में ये सत्यमेव जयते टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार और संगीतकार तनिष्क बागची और जास मनक थे। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन से। अब चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की सविता सिंह को आज्ञा दीजिए। नमस्कार और आप स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए, समृद्ध रहिए, इसी कामना के साथ आज यहीं से इजाजत लेते हैं। नमस्कार।

0: प्रकृति के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल,
1: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी हरकत है, हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास ढंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने कहा क्यों।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

0: लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार।
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, लेट्स स्टार्ट द फन।
0: दोस्तों आज के प्रोग्राम में फनकार हैं जाने माने पार्श्व गायक एस पी बाल सुब्रमण्यम।

1981 की फिल्म एक दूजे के लिए अपने सुपरहिट गीत और संगीत के लिए भी जानी जाती है। इस फिल्म के गानों में अपनी आवाज देकर एसपी बाल सुब्रमण्यम ने हिंदी फिल्म संगीत प्रेमियों के दिलों में भी अपनी खास जगह बनाई और बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए अपना दूसरा नेशनल अवार्ड भी हासिल किया। इसके पहले 1980 में एसपी बाल सुब्रमण्यम को डायरेक्टर के विश्वनाथ निर्देशित तेलुगु फिल्म शंकरा भरणम के लिए भी अपने बेहतरीन गायन के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पहला नेशनल अवार्ड मिल चुका था और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बतौर सिंगर ख्याति पा चुके थे।

4 जून 1946 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के मूलापेटा में जन्मे एसपी बाल सुब्रमण्यम का परिवेश पूरी तरह से संगीतमय था। उनके पिता एक हरी कथा कलाकार थे और उन्होंने कई मंचित नाटकों में भी काम किया था। एसपी बाल सुब्रमण्यम की बचपन से ही संगीत में रुचि थी। यही वजह थी कि उन्होंने छोटी उम्र में ही हारमोनियम और बांसुरी बजाना सीख लिया था। हालांकि इंजीनियर बनने की चाहत में एसपी बाल सुब्रमण्यम ने अनंतपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में

दाखिला हासिल कर लिया, लेकिन स्टडी के दौरान बीमारी की वजह से रुकावट भी आई, मगर उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और इसी दौरान 1964 में एक सिंगिंग कंपटीशन में भाग लेकर अवार्ड भी जीता।

गायन का सिलसिला शुरू हुआ तो तमाम एमेच्योर कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेकर एसपी बाल सुब्रमण्यम प्रोत्साहित होते रहे, आगे बढ़ते रहे और बाद में एक लाइट म्यूजिक ट्रुप के प्रमुख गायक बन गए। उस दौरान गिटार और बाद में बांसुरी पर उनका साथ दिया करते थे संगत के रूप में इलैया राजा, जो बाद में संगीतकार भी बन गए।

दोस्तों, एसपी बाल सुब्रमण्यम की फिल्मों में गायन की शुरुआत 15 दिसंबर 1966 में एक तेलुगु फिल्म से हुई। ये फिल्म थी श्री श्री श्री मर्यादा रामन्ना। उसके चंद दिनों बाद 1966 में ही कन्नड़ फिल्मों के लिए और 1969 में तमिल फिल्मों के लिए भी अपने गायन की शुरुआत करके एसपी बालसुब्रमण्यम चर्चा में आ गए। अपने दौर के दिग्गज कलाकारों जैसे जेमिनी गणेशन, शिवाजी गणेशन और एमजी रामचंद्रन की आवाज बनकर उभरे। एसपी बालसुब्रमण्यम को जी देवराजन ने मलयालम फिल्मों के लिए भी गायन के लिए इंट्रोड्यूस किया। एसपी बालसुब्रमण्यम उन दिनों साउथ में अपने गायन के चरम पर थे। व्यस्तता का आलम यह था दोस्तों कि 1981 में 8 फरवरी को 12 घंटे की अवधि में कन्नड़ भाषा में 21 गाने गाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। बाद में तमिल में एक दिन में 19 और हिंदी में भी 16 गीत एक ही दिन में गाकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया।

उस दौर की साउथ की जानी मानी फीमेल सिंगर्स जैसे पी सुशीला, एस जानकी, वाणी जयराम और एल आर ईश्वरी के साथ भी एस पी बालसुब्रमण्यम की बेहतरीन ट्यूनिंग रही और उन्होंने तमाम युगल गीत गाए। आगे चलकर महान संगीतकार बने इलैया राजा के साथ एस पी बालसुब्रमण्यम का जुड़ाव बहुत पहले से रहा है, जब इलैया राजा उनके ऑर्केस्ट्रा ट्रुप में महज हारमोनियम और गिटार वादन किया करते थे। उनका ये जुड़ाव बाद में बना रहा और कई गीतों को रचकर और भी पक्का हो गया। 1989 में एस पी बालसुब्रमण्यम ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को अपनी आवाज दी। फिल्म थी मैंने प्यार किया। फिल्म के साथ साथ गानों ने भी धूम मचा दी थी। इस फिल्म के दिल दीवाना गाने के लिए एस पी बालसुब्रमण्यम को फिल्म फेयर के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था।

बाद में सलमान खान के लिए ही एसपी बालसुब्रमण्यम ने हम आपके हैं कौन फिल्म के गाने गाए, जो सुपर डुपर गीतों की श्रेणी में शामिल हो गए।

दोस्तों यहाँ काबिले जिक्र है कि एस पी बाल सुब्रमण्यम को कई लोग बतौर गायक ही जानते हैं, जबकि वो एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, वॉइस एक्टर और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। कमल हसन, रजनीकांत, सलमान खान, के भाग्यराज, मोहन, अनिल कपूर, गिरीश कर्नाड, जेमिनी गणेशन, अर्जुन सरजा, नागेश, कार्तिक, रघुवरन जैसे हिंदी और साउथ के तमाम कलाकारों के लिए साउथ की विभिन्न भाषाओं में वॉइसिंग भी कर चुके हैं एस पी बाल सुब्रमण्यम। विभिन्न भारतीय भाषाओं में 40,000 से ज्यादा गीत गाने वाले एस पी बाल सुब्रमण्यम को अब तक 6 बार बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है। एक दिन में अधिकतम गीत गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वो बना चुके हैं। आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से तेलुगु सिनेमा का नंदी अवार्ड्स लगभग उन्हें 25 बार हासिल हो चुका है। फिल्म फेयर अवार्ड, साउथ फिल्म फेयर अवार्ड्स, तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों के और भी कई अवार्ड्स हासिल कर चुके एस पी बाल सुब्रमण्यम को भारत सरकार द्वारा सन 2001 में पद्मश्री और सन 2011 में पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन एस पी बाल सुब्रमण्यम अपने सबसे बड़े अवार्ड को मानते हैं अपने प्रशंसकों की गुनगुनाहट के जरिए, वो जो उनके गीत गुनगुनाकर खुशियों में डूबे रहते हैं।

दोस्तों, एसपी बाल सुब्रमण्यम एक बेहतरीन गायक होने के साथ साथ बेहतरीन इंसान भी हैं। उनकी पत्नी हैं श्रीमती सावित्री, एक बेटी है पल्लवी और एक बेटा है एसपी बी चरण, जो खुद भी पार्श्व गायक और फिल्म प्रोड्यूसर है। एसपी बाल सुब्रमण्यम ने फिर से एक बार हिंदी की ओर शुरुआत की 2013 में शाहरुख खान अभिनीत फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए भी पार्श्व गायन करके। संगीतकार विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में उन्होंने ये गीत

एस पी बालसुब्रमण्यम दक्षिण भारतीय फिल्म संगीत तथा हिंदी फिल्म संगीत के इस महान पार्श्व गायक का निधन 25 सितंबर 2020 को हुआ। विविध भारती परिवार की ओर से एस पी बालसुब्रमण्यम की यादों को विनम्र नमन।

0: ये था पार्श्व गायक एसपी बाल सुब्रमण्यम पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: जिले की चिट्ठी के लिए चलते हैं भोपाल केंद्र।
4: अभी आप सुन रहे थे नाटक रणधीर पहलवान, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कटनी जिले की चिट्ठी।
5: प्रस्तुत है
6: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कटनी जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश चतुर्वेदी, वाचन स्वर दीपा सिंह। कटनी जिले में इन दिनों बदले मौसम के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है।

मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे में तेज हवा और आंधी के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। जिले में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष जून माह को मलेरिया निरोधक माह के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मलेरिया संक्रमण काल प्रारंभ होने से पूर्व जन समुदाय में मलेरिया से बचाव रोकथाम संबंधी व्यापक जन जागरूकता फैलाना है, ताकि मलेरिया नियंत्रण और उन्मूलन में आमजन की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए मलेरिया जागरूकता रथ भी चलाया जा रहा है। कटनी में भी पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को आधुनिक प्रभावी तकनीक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में पुलिस द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त टैबलेट जिले के विभिन्न थानों में पदस्थ विवेचना अधिकारियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे अनुसंधान कार्यों में तेजी, पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। कटनी में भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हितग्राहियों की ईकेवाईसी किए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा जारी नवीन निर्देश द्वारा पीएम किसान योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रति वर्ष बायोमेट्रिक के माध्यम से ईकेवाईसी की कार्यवाही सभी हितग्राहियों द्वारा कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कटनी में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए पुलिस सीधी अभियान चलाया गया। पिछले दिनों पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन और महिला थाना प्रभारी वर्षा सोनकर के मार्गदर्शन में गठित पुलिस सीधी की विशेष टीम ने शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों का दौरा किया। टीम ने चौपाटी, मनोरंजन, मेला सहित अन्य भारी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में सघन भ्रमण कर महिलाओं और बालिकाओं से सीधा संवाद स्थापित किया। पिछले दिनों कटनी में मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक शासकीय तिलक महाविद्यालय कटनी में आयोजित की गई। बैठक में समान नागरिक संहिता के संबंध में अध्ययन और परीक्षण के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति की सदस्य और प्रख्यात कानूनविद अनूप नायर उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित जनों ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के बारे में खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। कटनी जिले में नागरिक सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर जिले भर में संचालित पटाखा फैक्ट्रियों, विस्फोटक भंडारण मैगजीनों और अमोनियम नाइट्रेट फैक्ट्रियों तथा स्टोर हाउसों की व्यापक जांच और भौतिक सत्यापन अभियान चलाया गया। जिले में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने और आमजन को स्वस्थ जीवन शैली के लिए प्रेरित करने हेतु 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व 40 दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये पहल भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार संचालित की जा रही है। जिला आयुष अधिकारी डॉ आशीष रेजा ने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 11 मई से प्रारंभ होकर जिले के 18 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। प्रतिदिन 8 बजे से 9 बजे तक पंडित खुशीलाल आयुर्वेद चिकित्सालय से योग आयोग के विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन माध्यम से योग सत्र संचालित किए जा रहे हैं। कटनी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आह्वान और कलेक्टर आशीष तिवारी के मार्गदर्शन में 19 मार्च से जिले में जल स्तर को सुधारने और पारंपरिक जल स्रोतों को सहेजने के लिए चलाया जा रहा जलगंगा संवर्धन अभियान 2026 में जिले ने उत्कृष्ट कार्य किया है। बलराम तालाब की श्रेणी में जलगंगा संवर्धन अभियान के मामले में कटनी प्रदेश के 4 अग्रणी जिलों में शामिल है। जिला प्रशासन और ग्रामीणों के साझा प्रयासों से अब तक जिले में 3,284 जल संरक्षण संबंधी कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं, से पानी को सहेजने और उसके संरक्षण तथा संवर्धन में मदद मिलेगी। कटनी में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत संचालित मकान सूचीकरण मकान गणना कार्य पूरा हो गया है। इसमें कटनी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कीर्तिमान स्थापित किया है। अब प्रगणकों द्वारा बनाए गए नजरी नक्शे को ट्रेस का काम किया जा रहा है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे कटनी जिले की चिट्ठी। आलेख राकेश चतुर्वेदी का था, वाचन स्वर दीपा सिंह का।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जबलपुर का ये विविध भारती केंद्र है। 10:05 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए आज सुबह प्रसारित किए गए प्रादेशिक समाचार की रिकॉर्डिंग।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय प्रवास पर उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश में भी शीघ्र लागू होगी समान नागरिक संहिता, कहा मुख्यमंत्री ने। और प्रदेश के हर जिले में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए फीडर सेंटर स्थापित होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रतियोगिता ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को एक मंच पर लाने का काम किया है। उन्होंने इसे योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि, बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देश में एक निशान, एक विधान और एक कानून लागू हो, इस राष्ट्रीय भावना में कुछ भी गलत नहीं है। समान नागरिक संहिता को देश के 3 राज्यों ने पहले ही लागू कर दिया है। हमारी सरकार भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। शीघ्र ही मध्य प्रदेश भी देश का UCC लागू करने वाला राज्य बन जाएगा। इसके लिए हमने उच्चतम न्यायालय की रिटायर्ड जज न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित की है। ये समिति जिला स्तर पर सभी वर्गों से उनकी राय ले रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी जनजाति समुदाय को यूसीसी से पृथक रखा जाएगा। उन्हें अपने पारंपरिक रीति रिवाज मानने की स्वतंत्रता होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल नई दिल्ली में आयोजित एक कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की उन योजनाओं की जो देश के विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98 लाख से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50 से 80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रिपरिषद के आर्थिक मामलों की समिति ने मध्य प्रदेश में 4,415 करोड़ रुपए की लागत वाली दो सड़क निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की इस महत्वपूर्ण सौगात से प्रदेश की जनजातीय बहुल जिले बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी के समग्र विकास को तेज गति मिलेगी, साथ ही हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस परियोजना में खरगोन जिले में एक ग्रीनफील्ड बाईपास भी विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा,
2: राजमार्ग की जो सौगात मिली है, मैं उसके लिए उनका आभार भी मानता और बधाई देता हूँ। बैतूल, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, ये चारों जिले हमारे करीब करीब महाराष्ट्र से लगे हुए भी हैं और इनके माध्यम से पूरा प्रदेश का विकास का परिपथ बनता है। ऐसे में 4,415 करोड़ से लगभग दो जो सड़कें की सौगात मिली, दो परियोजनाएं, ये भविष्य की दृष्टि से एक अलग प्रकार से हमको आर्थिक रूप से इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने में मदद करेगी।
0: उधर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नई पहल की है। वे अब राजधानी भोपाल में नियमित रूप से ईवी कार से ही यात्रा करेंगे। ये ईवी मुख्यमंत्री सुरक्षा से जुड़े सभी मानकों पर खरा उतरने, फीचर्स की विधिवत जांच और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं का बारीकी से पालन करने के बाद मुख्यमंत्री के लघु कार किट में कल से शामिल कर ली गई है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रदेश के कई जिलों में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत व्यापक पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने 5 जून से शुरू हो रहे विशेष जनकल्याण अभियान के तहत प्रदेश भर में वृहद पौधरोपण के निर्देश दिए हैं। खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि प्रदेश के हर जिले में फीडर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इनके माध्यम से खेल प्रतिभाओं की खोज और संवर्धन को नई गति मिलेगी। श्री सारंग कल भोपाल के टीटी नगर स्थित मेजर ध्यानचंद हॉल में टैलेंट सर्च अभियान की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों और खेल प्रशिक्षकों को इस संबंध में व्यापक दिशा निर्देश दिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में प्री मानसून की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अगले 24 घंटों में भी 20 से अधिक जिलों में आंधी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार बिजली गिरने की भी आशंका है। शिवपुरी में कोलारस की ग्राम पंचायत गोरा टीला में रात्रि चौपाल लगाकर प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण किया। खंडवा में आज जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। आगरमालवा में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर चलाए जा रहे स्वच्छ गांव मेरी जिम्मेदारी थीम के तहत मिशन लाइफ के अंतर्गत पेड़ पौधों की साफ सफाई संरक्षण संबंधी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मंदसौर जिले के आदर्श गांव बालागुड़ा में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल में कलेक्टर अदिति गर्ग ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। झाबुआ में कल विश्व क्लब फुट दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डिंडौरी में आगामी मानसून और संभावित बाढ़ की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन संबंधी तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। गुना के कुंभराज क्षेत्र के ग्राम बड़ौद में कल कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और पुलिस अधीक्षक हितिका वासल ने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से संवाद किया। भारतीय पहलवान आज से मंगोलिया में उलान बतार ओपन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में अभियान शुरू करेंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: बड़ी बहू ये तुम्हारी नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
0: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम
1: और ये
0: मेरी गुड़िया थी।

0: पर दादी
1: हाँ?
0: आपके नाम
2: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो
0: क्या
3: RBI कहता है।
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: कानूनी सहायता टेलीलॉके ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायु सेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
6: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
5: बन गया बजट?
6: हाँ, 5,000 बच गए।
5: तो नई साड़ी ले ले।
6: ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
5: बढ़िया,
6: जाओ भाई।
7: RBI कहता है,
8: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
9: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जबलपुर का ये विविध भारती केंद्र है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी जबलपुर का ये विविध भारती केंद्र है। एक कलाकार।

एक कलाकार कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आपकी अपनी रेडियो दोस्त साबनी राजू का नमस्कार। आज की एक कलाकार जिनसे हम सबको प्यार हुआ चुपके से, और फिर कुछ समय बाद उनका पिया घर आया, वो हैं तो वो हैं चालबाज। जी हाँ, आज की एक कलाकार पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति।

भारतीय सिनेमा की एक महत्वपूर्ण पार्श्व गायिका हैं कविता कृष्णमूर्ति। कविता जी जब 8 साल की थीं तो उन्होंने एक गायन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। तब से ही बड़ी होकर एक मशहूर गायिका बनने का उन्हें सपना देखा। 2005 में उन्हें पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। कविता कृष्णमूर्ति को बहुत सारे फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड मिले, तो सन 2000 में बेस्ट सिंगर ऑफ द मिलेनियम अवार्ड भी मिला। अंतर्राष्ट्रीय हिट फिल्म देवदास की डोला रे डोला के लिए इनको बॉलीवुड अवार्ड वो भी 2 बार दिया। हिंदी सिनेमा जगत की इस लोकप्रिय पार्श्व गायिका का जन्म 1958 में नई दिल्ली में हुआ। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा उन्हें घर में मिली। बाद में बलरामपुरी से उन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखा। 9 साल की उम्र में कविता जी को स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के साथ बांग्ला भाषा में गीत गाने का मौका मिला और यहीं से उन्होंने पार्श्व गायन के क्षेत्र में आने के लिए तय किया। बस तब से वो इस तरह अपना करियर बनाती गईं कि कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन हमेशा हम सबके दिलो दिमाग में।

1980 में कविता जी ने अपना पहला पार्श्व गीत काहे को बियाही मांग भरो सजना गाया। हालांकि ये गीत बाद में फिल्म से हटा दिया गया और उनको पहचान मिली 1985 में प्यार झुकता नहीं के इस गीत से, जो गीत रहा सुपर डुपर हिट।

मिस्टर इंडिया फिल्म का गाना आया हवा हवाई, और हवा हवाई ने इन्हें बिल्कुल बना दिया लोगों के दिलों में हवा हवाई, और सुपरहिट गायिका का दर्जा दिलाया।

90 के दशक में कविता कृष्णमूर्ति हिंदी सिनेमा की अग्रणी पार्श्व गायिका बनकर उभरी। 1942 अ लव स्टोरी में उनके जो गाने उन्होंने गाए हैं उन्हें लोग आज भी पसंद करते हैं, और वो गाने भी ऐसा ही हैं कि हर वक्त जब सुनो तब नए नए से ही लगते हैं।

कविता कृष्णमूर्ति आज की एक कलाकार कार्यक्रम में है। आज की एक कलाकार यानी आज हम सुन रहे हैं पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति के गाए गीत। कविता जी ने अपने करियर में आनंद मिलिंद, उदित नारायण, एआर रहमान, अनु मलिक जैसे गायकों और संगीत निर्देशकों के साथ काम किया। कविता जी ने एक बार एक साक्षात्कार में बताया कि बचपन में उन्हें अभिनेता दिलीप कुमार बहुत पसंद थे। जब वो बड़ी हुई तब फिर वो संजीव कुमार को पसंद करने लगी। उन्हें अमिताभ बच्चन और

आमिर खान भी पसंद हैं। अभिनेत्रियों में श्रीदेवी, रानी मुखर्जी, काजोल और प्रीति जिंटा पसंद हैं और इनकी कई फिल्मों के गीत इन्होंने गाए भी हैं। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि श्रीदेवी जी की तो फिल्मी गानों की आवाज़

और अब बारी आती है नगीना और निगाहें। ये दोनों ही फिल्म, नगीना पहले आई और उसका पार्ट टू बना निगाहें। नगीना में श्रीदेवी थी, साथ थे ऋषि कपूर, निगाहें में साथ आ गए सनी देओल। लेकिन दोनों ही फिल्मों में श्रीदेवी जी की आवाज़ बनी रही कविता कृष्णमूर्ति।

कविता जी ने वॉयलिन वादक एल सुब्रमण्यम जी से विवाह किया। एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि उन्हें गायक हरिहरन के साथ मिलकर सुब्रमण्यम जी के लिए एक गाना गाना था और तब उनकी शादी नहीं हुई थी, तो इस तरह वो फिर आगे बढ़ी और बन गई वो कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम।

0: साज फिल्म का ये गीत हमारे आपके सबके दिलों के साज जगा देता है। कविता जी की आवाज़, उस्ताद जाकिर हुसैन का संगीत। सुनिए, हमें आपको सबको ही लगेगा कि वाह कविता जी, क्या आपने कह दिया।
1: धुम धुम धुम धुम धुम धुम धुम धुम धुम।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक कलाकार। आज के इस कार्यक्रम में आपने सुना पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति के गाए गीत आपकी अपनी रेडियो दोस्त सावनी राजू के साथ। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जबलपुर का ये विविध भारती केंद्र है। आज है गुरुवार और इस दिन आप सुनते हैं कार्यक्रम नई फिल्मों से। नई फिल्मों से कार्यक्रम का आरंभ करते हैं बागी सीरीज की फिल्म के साथ। टाइगर श्रॉफ इस फिल्म में थे, श्रद्धा कपूर थी, बाद में अभिनेत्रियां बदलती गईं। तो पहले आपको सुनवाते हैं बागी 3 फिल्म का गीत और उसके बाद बागी 4 का गीत, रोचक कोहली का गाया।

नई फिल्मों से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM 102.9 MHz पर आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र से। आप चाहें तो इसे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। इस वक्त फिल्म अग्निपथ का गीत आप तक पहुंच रहा है, उदित नारायण और सुनिधि चौहान।

भूल भुलैया टू फिल्म का ये गीत आपने सुना और भूल भुलैया थ्री फिल्म का गीत है, सोनू निगम श्रेया घोषाल ने गाया है।

नई फिल्मों से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जबलपुर के विविध भारती केंद्र से। अभी आपने ये गीत सुना जिसे हमने लिया था फिल्म भोला से, और अब आपको

सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जिसे हमने लिया है बिन्नी एंड फैमिली से। बिन्नी एंड फैमिली फिल्म का ये गीत आप तक।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। इस गीत में आवाज़ मीत बंधुओं की थी। ड्रीम गर्ल फिल्म जिसमें आयुष्मान खुराना थे, फिर उसका भाग टू यानी ड्रीम गर्ल टू भी आई थी। तो लीजिए सुनिए ड्रीम गर्ल टू का ये गीत। आवाज आयुष्मान खुराना की। इस फिल्म के सितारे थे आयुष्मान खुराना, जिसमें उन्होंने ड्रीम गर्ल की भूमिका निभाई थी।
1: तेरे इश्क में दिल बंजारा ढूंढे है अपनी मंजिल।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई फिल्मों से। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जबलपुर का ये विविध भारती केंद्र है। आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में बता दें, अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 12:05 पर यादों की महफिल और दोपहर 1 बजे सुरीला सफर तय कीजिएगा। दोपहर 2:30 पर सदाबहार नगमे सुनिए और सखी सहेलियों से मुलाकात कीजिए दोपहर 3 बजे। शाम 4 बजे खुलेगा पिटारा। आज है गुरुवार तो सुनिएगा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। फौजी भाई अपनी पसंद के गाने सुनते हैं जयमाला में। समय होता है शाम 7 बजे से। चित्रलोक में नए फिल्मी गाने सुनिएगा रात 8:15 पर। ये सभी कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी जबलपुर का ये विविध भारती केंद्र है। 12 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत के तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन के विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यविट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। अमरीकी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान श्री रूबियो ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमरीका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा हुई। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि समुद्री सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
2: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। आपको करना है थोड़ा सा इंतजार, हम अभी हाजिर होते हैं लेकर यादों की।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर हम हाजिर हैं लेकर कार्यक्रम यादों की महफिल। और इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने आज सबसे पहला जो गाना शामिल किया वो 100 डेज फिल्म से था। एसपी बाला सुब्रमण्यम के साथ लता मंगेशकर की आवाज़, दिलीप ताहिर ने इसे लिखा था, राम लक्ष्मण का मचलता संगीत। और मेरे ख्याल से आपने ये गाना सुना और आप जान ही गए होंगे कि आज यादों की महफिल में वो गाने शामिल हो रहे हैं जिनमें गायक आवाज़ है एसपी बालासुब्रमण्यम की। जी हाँ, आज उनका जन्मदिन है तो हम उनको उनके गीतों के जरिए याद करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले गाने की ओर।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम में

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सागर फिल्म का ये गाना आपने सुना। साथियों, एसपी बालासुब्रमण्यम की गायकी का एक अलग ही अंदाज रहा है। हर भाव के गीतों को कितनी सहजता से समेट लेते थे। अब ये गीत ही सुनिए ना। गीत संगीत बोल आवाज सब कुछ कमाल।

दिल को छू लेने वाले सच्चे बोल, जावेद अख्तर के सुरीला संगीत, राहुल देव बर्मन का गर्दिश फिल्म में इस गाने में आवाज एसपी बालसुब्रमण्यम की। चलिए यादों की महफिल कार्यक्रम के अगले गाने की ओर बढ़ते हैं।

एसपी बाला सुब्रमण्यम के साथ अलका याग्निक की आवाज़ में आपने मझधार फिल्म का गाना सुना। यादों की महफिल कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए कुछ बेमिसाल गाने। और अब बारी है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ों वाले उस गाने की जिसकी फिल्म का नाम है पत्थर के फूल।

लिंकिंग रोड, कभी वार्डन रोड, टंकन रोड, लैमिंग

हाँ तो भाई, पत्थर के फूल फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ों में, और यही गाना बना आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर में आप सभी का स्वागत। तो साथियों, आज का टेक्स्ट, आज की इबारत आप तक पहुंच चुकी है और आप जान भी चुके हैं कि आज के टेक्स्ट में क्या है खास। तो चलिए हम आपको वो टेक्स्ट, वो इबारत पढ़कर सुना देते हैं। आज का टेक्स्ट है, आज भी जब पुराने गीत रेडियो पर गूंजते हैं तब श्वेत श्याम यादें आंखों में रंग भरती हैं। ऐसे में कोई खास सिर्फ याद नहीं आता, वो फिर से जी उठता है। वो भोली सी सूरत, गहरी आंखों वाली छबीली सुजाता ने भावनाओं का एक पूरा मौसम खुद में समेट रखा था। जाने कब वो बंदिनी बनकर छलिया, अनाड़ी, सौदागर, महाराजा सरस्वती चंद्र को छोड़कर सावन के महीने में कन्हैया की बांसुरी के रंग में अपनी चुनरिया रंग बैठी। कहाँ तक सुनाऊं साहेब, इस छोटी सी गुड़िया की तो लंबी कहानी है, लेकिन आप खानदान की राधा से पेइंग गेस्ट का वादा तो सुनिए जरा। एक घर बनाऊंगा

तेरे घर के सामने। तो ये तो थी आज की इबारत, और आप सभी जान चुके हैं कि आज इसमें क्या है खास और आज दिन कौन सा है, इसलिए हमने ये इबारत जो है वो इस तरह से आप तक पहुंचाई है। तो बहरहाल इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं शिफाली कपूर। वेरी गुड आफ्टरनून। साथियों, आज है 4 जून का दिन और आज जन्मदिन है अभिनेत्री नूतन का, तो ये इबारत उन्हीं के लिए है। वैसे आपको बता दें कि नूतन सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी साथियों, बल्कि भारतीय सिनेमा की गरिमा और शालीनता की मिसाल थी। वो उन गीतों की रूह भी थी जो रेडियो से निकलकर दिलों में बस गए। उन पर फिल्माए गीतों को सुनकर यूं लगता है जैसे पुराने दौर का एक दरवाज़ा फिर से खुल गया है। इनकी फिल्में बीता हुआ वक्त नहीं साथियों, यादों की जीवित धरोहर हैं। अभिनेत्री नूतन जी को लेकर ढेर सारे कमेंट्स हमारे सामने हैं इस समय, और बहरहाल हमारे साथी क्या लिख रहे हैं। हाँ देखिए, हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुरीला सफ़र के इस सुनहरे सफ़र में आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ, आज के गाने अवश्य यादगार होंगे। जी हाँ बिल्कुल, और आप सबका साथ इस कार्यक्रम को और भी खूबसूरत बनाएगा। तो वहीं हमारे एक दूसरे साथी ने क्या लिखा है कि 1 माह 5 दिन हो चुके हैं कार्यक्रम सुरीला सफ़र में, आप आज आई हैं शायद पहली बार। अरे वाह क्या बात है, इन्होंने दिन महीना सब कुछ याद रखा। बहरहाल आज हम आ गए आपके साथ। और एक कमेंट में हमारे साथी ने लिखा है कि ये है सुरीली सफ़र की सही इबादत, इबारत नूतन जी के जन्मदिन पर उनके ही गानों पर परफेक्ट इबारत। वैसे भी हमेशा से ही आपने सही इबारत दी है और तहे दिल से शुक्रिया किया है, तो शुक्रिया आप सभी का भी हमारे इस कार्यक्रम के साथ दिल से जुड़ने के लिए। तो दूसरे साथी लिख पड़े हैं कि आज गद्यांश को पढ़कर सुखद आश्चर्य हुआ, वाकई में हम जो सोच रहे थे वही यहाँ शब्द निरूपित हुआ, यानी एक अनन्य लाजवाब हुस्न मलिका पूर्णतः अभिजात अभिनेत्री नूतन जी की कहानी को सुंदर तरीके से शब्दों में पिरोया गया है। कई दिन बाद शायद ये प्रयोग हुआ है। इन्होंने ढेर सारा धन्यवाद दिया है और लिखा है कि आज बेहतरीन गीतों की माला सजाई जाएगी। गानों का सिलसिला शुरू हो उससे पहले कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज गुजरे ज़माने की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री नूतन जी की जन्म जयंती है, लिहाजा छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी है उन्हीं की फिल्मों के गीत हैं। जी हाँ बिल्कुल। आगे लिखा है कि नूतन के सौंदर्य को मिस इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वो इस पुरस्कार को पाने वाली पहली महिला थी, ऐसी जानकारी इन्होंने दी है। तो दूसरे साथी क्या लिखते हैं कि कार्यक्रम में फिर से शामिल होने वाले इस गद्यमयी इबारत में एक छोटी सी गुड़िया के मन की गुदगुदी भरी बड़ी सी कहानी का चित्रण बंदिनी, सुचाता, छलिया, अनाड़ी, महाराजा आदि के माध्यम से भली भांति उकेरा गया है, और इस दृष्टिकोण से गुड़िया की कहानी जो वादे तक आती है तो हर हृदय को स्पर्श करने में पूरी तरह समर्थ है। और फिर तो भाई गीतों का सिलसिला शुरू करना ही पड़ेगा। और साथियों, चूंकि आज के टेक्स्ट में जिक्र है एक छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी का, तो भाई आज के सुरीला सफर की कहानी का आगाज भी इसी गाने के साथ होना चाहिए। क्या कहते हैं आप, इस गाने को सुनकर बताइएगा क्या राय है आपकी।

तो भाई, सीमा फिल्म के इस गाने के साथ कार्यक्रम सुरीला सफर का आगाज हो गया है। और हमारे साथी ने भी लिखा है कि बहुत ही साफ सुथरे गीत से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। तो और दूसरे साथी लिख रहे हैं कि फिल्म सीमा का ये गीत मेरी लिस्ट का, यानी उनकी लिस्ट का पहला गीत बच गया। तो आप सब भी अपनी अपनी लिस्ट में गाने टिक करते चलिएगा कि कौन कौन सा गाना हमारी लिस्ट के साथ मेल कर रहा है। वैसे आप गाने लिख कर भेजिए हमें, हो सकता है कि आप वाला गाना बज ही जाए। वैसे एक साथी ने लिखा है कि इस गाने में सरोद का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। फिल्म सीमा लता जी शंकर जयकिशन का संगीत, जी हाँ। और आगे एक साथी लिखते हैं कि नमस्कार किया है, लिखते हैं अगर आज की इबारत को देखा जाए तो लगता है कि आज तो गाने बहुत ही सुंदर और सुनने को मिलेंगे, आज तो बहुत आनंद आएगा। और दूसरे साथी ने लिख दिया है कि नूतन ने बिना ज्यादा बोले सिर्फ अपनी आंखों और चेहरे के भावों से भावनाओं को व्यक्त किया। फिल्म सुजाता 1959 और बंदिनी 1963 जैसी फिल्मों में उनका संवेदनशील अभिनय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।

0: 생각해.
1: यकीनन साथी साथियों, उनकी सादगी में एक अनोखा आकर्षण था जो बिना किसी दिखावे के सीधे दिल को छू जाता था। और उनकी खूबसूरती केवल चेहरे तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनके व्यक्तित्व, विनम्रता और संस्कारों में भी झलकती थी। जैसा कि हमारे एक साथी ने उनकी आंखों के लिए लिखा है कि अपनी आंखों और चेहरे के भावों से भावनाएं व्यक्त करती थीं, तो यकीनन उनकी आंखें भावनाओं की ऐसी भाषा बोलती थीं जिसे शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। प्रतिभा, सौम्यता और आत्मविश्वास का जो सुंदर संगम अभिनेत्री नूतन में था, वो उन्हें अपने दौर की सबसे विशिष्ट अभिनेत्रियों में शामिल करता है। एक और कमेंट आया है हमारे पास कि ऐ मेरे हमसफर, रोक अपनी नज़र, ये दिल है बड़ा बेअसर, बचपन के दिन भी क्या दिन थे उड़ते फिरते, ऐसा गाना लिखा है। इन्होंने बहुत सारे गाने लिख भेजे हैं और लिखा है कि युग युग से गीत मिलन के गाते हैं, गाते रहेंगे। यानी इन्होंने नूतन जी के बहुत सारे गानों को यहाँ तक भेज दिया है। और एक साथी ने लिखा है कि मैं तो यही कहूँगी कि ब्लैक एंड वाइट का जो दौर था वो बहुत ही सुंदर था। एक श्वेत शाम दौर की फिल्मों में जो सादगी, आँखों की भाषा और ठहराव था, वो आज के शोर शराबे में कहीं खो सा गया है। उस दौर की भोली सी सूरत और गहरी आंखें बिन कुछ कहे भी सब कुछ कह जाती थीं। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। वैसे आप बताइएगा, आप सब साथी, कि आपको ब्लैक एंड वाइट फिल्मों में ज्यादा अच्छा लगता है फिल्में देखना या रंगीन? और नूतन जी की कौन सी फिल्म है जो आपके दिल के बेहद करीब है? एक कमेंट में हमारे साथी ने लिखा है, ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा के स्वर्णिम युग में नूतन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन और प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक थीं। उनकी सादगी, प्राकृतिक अभिनय और सशक्त किरदारों ने उन्हें उस दौर के दर्शकों के दिलों की धड़कन बना दिया था। वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थीं, बल्कि उन्होंने अपनी आवाज़ और आँखों के भावों से हर किरदार में जान डाल दी। उन्होंने बिना किसी लाउड मेकअप या ड्रामे के केवल अपने संजीदा अभिनय से ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के पर्दे पर अपनी एक अमित छाप छोड़ी। बिल्कुल सही बात है। और उदाहरण है उनकी क्लासिक फिल्मों में उनका क्लास, अभिनय, बंदिनी, सुजाता, तमाम फिल्में हैं साथियों। ढेर सारी कमेंट्स मेरा शामिल करने का इरादा है गीतों के साथ। बहरहाल अगला गीत प्ले हो उससे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ढेर सारे कमेंट्स ले लूँ। उन्होंने मेरे साथी लिखते हैं एक कि इन्होंने लिखा है कि अभिनेत्री नूतन हिंदी सिनेमा की सबसे प्रतिभाशाली और सम्मानित अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। अपनी सहज अभिनय शैली, प्रभावशाली आँखों की अभिव्यक्ति और भावनाओं को जीवंत रूप से पर्दे पर प्रस्तुत करने की उनकी अद्भुत क्षमता के कारण उन्हें दर्शकों के दिलों में विशेष उन्होंने स्थान बनाया। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि मधुर गीत से आगाज हुआ आज के इस कार्यक्रम का। तो एक दूसरे हमारी एक साथी हैं लिख रही हैं कि तब मैं बहुत छोटी थी, नूतन की फिल्म लगी थी तेरे घर के सामने। मेरे पापा नूतन जी के अभिनय वाली कोई भी फिल्म लगी हो तो हम सबको जरूर देखने जाते थे। उन्हीं दिनों में नूतन की सरस्वती चंद्र, खानदान और दुल्हन एक रात की देखी थी। उस समय नूतन के अभिनय में क्या खासियत है ये नहीं पता था, मगर जब थोड़े बड़े हुए तो सुजाता और बंदिनी देखने के बाद जाना कि अभिनेत्री नूतन में क्या खास है। धीर गंभीर चेहरे के पीछे भावप्रवण अभिनय, मैंने लगभग नूतन के अभिनय की सारी फिल्में देखी हैं और मेरे पापा की तरह वो मेरी भी पसंदीदा अभिनेत्रियों में शुमार हैं। शायद ही कोई होगा ऐसा साथियों जिसे अभिनेत्री नूतन पसंद ना हो और उनका अभिनय पसंद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सहज अभिनय बहुत कम देखने को मिलता है। तो वहीं एक और कमेंट में लिखते हैं साथी कि नूतन जी भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री थीं जिन्होंने शादी और करने और माँ बनने के बाद भी बतौर लीड एक्ट्रेस बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्में दीं। अपनी सजल आंखों और स्वाभाविक अभिनय के लिए मशहूर नूतन थीं। जिस लड़की को रूप रंग के लिए ताने मिले, उसी नूतन ने 1952 में महज 16 साल की उम्र में मिस इंडिया, मिस मसूरी का खिताब जीतकर सबको चौंका दिया था। तो चलिए, कमेंट बहुत सारे हैं, गाना बजने के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसा कि आप सबने कहा है कि नूतन जी गाती भी थीं, हमारे बहुत सारे कमेंट्स में मुझे पढ़ने को मिला है, तो जी हाँ, वो गाती भी थीं। तो जब छोटी सी गुड़िया की कहानी का आगाज़ हुआ है तो देखें वो गुड़िया आगे क्या कहती है।

तो ये वही फिल्म थी, वही गाना था जिसका आपको इंतजार था। छबीली फिल्म का गाना था और आवाज अभिनेत्री नूतन की थी। जैसा कि हमने आपसे पूछा था कि आपको अभिनेत्री नूतन की कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है, आपके दिल के करीब है, तो हमारी एक साथी लिख रही हैं कि उनकी किसी एक फिल्म को चुनना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिल्म सौदागर में उनका अभिनय मेरे दिल को छू गया। तो वहीं दूसरी सखी ने भी लिखा है कि नूतन की सौदागर मुझे बहुत अच्छी लगी, एक बेबस बेवा की शक्ति रूप का शानदार प्रदर्शन है। सच में साथियों, उनकी हर फिल्म में उनका क्लास अभिनय हम सभी के दिलों में आज भी बसा है। एक साथी ने लिखा है कि नूतन जी मेरे जन्म से पहले की अदाकारा हैं, परंतु उनकी कई पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्में मैंने दूरदर्शन पर, ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन पर देखी हैं और उनकी नई फिल्में सिनेमा हॉल में भी देखी हैं। वे सदाबहार अदाकारा हैं। एक साथी ने लिखा है कि बिमल रॉय की फिल्म बंदिनी भारतीय सिनेमा की एक मील का पत्थर है और आगे लिखा है कि इस फिल्म में नूतन द्वारा निभाया गया कल्याणी का किरदार हिंदी सिनेमा के इतिहास में अभिनेत्रियों द्वारा दिए गए सर्वश्रेष्ठ और सबसे सशक्त अभिनय में से एक माना जाता है। कल्याणी का चरित्र एक ऐसी शांत महिला का है जिसके भीतर जुनून और वेदना का ज्वालामुखी उबल रहा है। उन्होंने बिना किसी लाउड ड्रामे का अभिनय बहुत ही कोमलता और गरिमा के साथ इस भूमिका को जिया। उनकी संवाद के बजाय अपनी आंखों से उन्होंने सूक्ष्म के भावों से अपनी पीड़ा और असमंजस को पर्दे पर उतारा। वो प्यार, त्याग और अपराध बोध के द्वंद्व को केवल एक नजर से बयां कर देती थी। फिल्म के क्लाइमेक्स में जिस तरह अपने प्यार, अपनी जिंदगी त्याग कर अपने पुराने प्यार की तरफ लौटती हैं, क्या कोई सिने प्रेमी उनके इस किरदार और को अदाकारी को भूल सकता है? कोई नहीं भूल सकता साथियों, कोई भी नहीं। और इतने भावों को अपनी आंखों से बयां करना कोई आसान काम नहीं है। तो एक साथी ने लिखा है कि नूतन की फिल्मों के गानों, विशेष रूप से लता मंगेशकर जी द्वारा गाए में उनका जो लिप सिंक होता है इतना सटीक और स्वाभाविक होता था कि वे गीत सीधे उनके किरदार का हिस्सा लगते थे।

तो दूसरे साथी लिखते हैं कि उनकी सारी फिल्में, नूतन जी की सारी फिल्में सुपरहिट रही हैं। सुनील दत्त के साथ उनकी फिल्म खानदान बचपन में दो आना टिकट दर पर देखी थी, पारिवारिक फिल्म सपरिवार देखी थी। नूतन जी की फिल्मों से जुड़ी आपकी कोई याद हो तो जरूर साझा कीजिए साथियों। और हाँ, अपनी लिस्ट के गाने टिक करना मत भूलिएगा और हमें बताना मत भूलिएगा कि आपके कौन कौन से गाने मेल खा रहे हैं। एक कमेंट आया है कि नूतन महज एक अभिनेत्री नहीं थीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के कैनवास पर उकेरी गई एक ऐसी जीवंत कविता थीं जो बिना किसी शोर के सीधे दिलों को छू लेती हैं। चेहरे पर सादगी, अभिनय में सहजता और कैमरे के सामने हमेशा ईमानदारी रहने वाली नूतन की अभिनय शैली, संवाद अदायगी और उनकी भाव भंगिमाओं में दर्शक बन जाते हैं। नूतन अपने किरदार में इतनी गहराई से उतर जाती थी कि सिनेमा घर से बाहर निकलने के बहुत बाद भी उनकी हर हरकत, हाव भाव, नज़र और संवाद मन में बसे रहते हैं। उनकी आंखें शब्दों से अधिक कह जाती हैं। नूतन आज भी उस पहली बारिश की महक की तरह हमारे दिलों में महकती हैं, जिनकी यादें वक्त के साथ कभी धुंधली नहीं होती। बहुत अच्छी बातें आपने बहुत अच्छे शब्दों को पिरो कर लिखी हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा है कि मैंने भी आज की इबारत से एक पैराग्राफ बनाया है और पुराने रेडियो गीतों की मधुर धुनें जब श्वेत श्याम यादों को फिर से जीवंत कर देती हैं तब मन अनायास ही उन सुनहरे पलों में खो जाता है। कभी सुजाता की मासूमियत दिल को छूती है तो कभी बंदनी की भावनाएं मन को बांध लेती हैं। अनाड़ी, छलिया, सौदागर और सरस्वती चंद्र जैसी फिल्मों के किरदार आज भी यादों में वैसे ही बसे हैं जैसे सावन में कन्हैया की बांसुरी की मीठी तान। वाह, क्या बात है। आगे लिखा है, चुनरिया के रंग, राधा का प्रेम, छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी और एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने जैसे गीत पुराने दौर की मोहब्बत और अपनापन फिर से महसूस करा देते हैं। तो वहीं दूसरे साथी ने भेजा है कि आज की इबारत में एक नूतन प्रयोग किया गया है जिसमें अभिनेत्री नूतन जी की फिल्मों को जोड़कर इबारत बनाई गई है। आज छैल छबीली अभिनेत्री नूतन जी की फिल्मों और उनके शानदार अभिनय और बढ़िया गीतों से सुरीले सफर को सजाया गया है। अपनी आंखों से अभिनय को जीवंत करने में माहिर नूतन जी ने एक अपनी अलग ही पहचान बनाई थी। श्वेत श्याम फिल्मों में बेहतरीन अभिनय किया और ढलती उम्र में भी माँ की भूमिका में भी अपने बेहतरीन अभिनय से वो स्थान बरकरार रखा जो वो शुरुआती दौर में था। ऐसी महान अभिनेत्री नूतन जी को विनम्र नमन। एक कमेंट आया है कि नूतन जी हिंदी सिनेमा की सबसे संजीदा और सहज अभिनेत्रियों में जानी जाती हैं। उनकी आंखें ही संवाद बोलती थीं। फिल्म बंदनी में कल्याणी की खामोशी हो या सुजाता में अछूत लड़की की पीड़ा या फिर तुलसी तेरे आंगन की में सौतन की जटिल भावनाएं, उनकी आंखें ही बोल देती थीं। सत्यजीत रे जी ने कहा था कि नूतन की आंखों में ही स्क्रिप्ट लिखी होती है। नूतन जी ने अपने हर किरदार को जिया है। उन्होंने आदर्श नायिका की परिभाषा बदली और उनके किरदार कमजोर नहीं बल्कि हालातों से लड़ने वाले ज्यादा रहे। आज उनके जन्मदिन पर उन्हें सादर नमन। और जैसे कि बात बंदनी की चल ही रही है तो जब बात चले बंदनी फिल्म के जिक्र आए तो उस फिल्म का ये गाना ना बजे ऐसा तो हो नहीं सकता।

हाँ तो साथियों, ये गाना ना बजे ऐसा तो हो ही नहीं सकता जब बंदनी फिल्म का जिक्र हो, और आज भी ये गाना सुनो तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए देखें हमारे साथी लोग क्या कहते हैं। वैसे जब बहुत सारे साथियों ने उनकी मुस्कान और आंखों के बारे में लिखा है, तो सच में साथियों, नूतन जी की मुस्कान में मासूमियत थी, उनकी अदाकारी में गहराई थी, सादगी उनका आभूषण थी और प्रतिभा उनकी असली पहचान थी। और वो सिर्फ पर्दे का सितारा नहीं थी, बल्कि वो हैं भारतीय सिनेमा की अमर विरासत। चलिए देखते हैं हमारे साथी क्या लिख रहे हैं कि बंदनी सौदागर, मेरी जंग कर्मा, मैं तुलसी तेरे आंगन की और सुजाता मिलन और बहुत सारी फिल्में हैं जो हमारी पसंद की हैं। आगे दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन जी की बंदनी, अनाड़ी और सौदागर तीनों फिल्मों में उनका काम बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन काम लाजवाब है। उनकी मुस्कुराहट दिल को मोह लेती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। तो दूसरे साथी लिख रहे हैं फिल्म सीमा, बंदनी, सुजाता, सौदागर, मैं तुलसी तेरे आंगन की यादगार फिल्म है। वैसे बचपन में दिल्ली का ठग देखने में भी बहुत अच्छी लगती थी उसके एक गाने के लिए। वो गाना कौन सा है जरा ये तो बता दीजिएगा। और दूसरे साथी लिखते हैं कि मैं नूतन जी के सब फिल्में तो मैंने देखी नहीं है, मुझे नूतन जी अभिनीत बंदनी और सौदागर फिल्म में उनका अभिनय बहुत अच्छा लगा। तो वहीं वैसे दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन जी की 1973 की सौदागर फिल्म बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है, जो नरेंद्र नाथ मित्रा की बंगाली कहानी रस पर आधारित है। ये फिल्म कल्ट क्लासिक साबित हुई। रविंद्र जैन का जादुई संगीत बेहद शानदार, गीत है तेरा मेरा साथ रहे में भी शामिल हो। इंतजार कीजिए ना। एक कमेंट में लिखते हैं कि नूतन जी उन दुर्लभ अभिनेत्रियों में से थीं जिन्होंने ये साबित किया कि एक महान कलाकार को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चिल्लाने या तेज संवादों की आवश्यकता नहीं होती। सीमा, सुजाता और तेरे घर के सामने जैसी फिल्मों में उन्होंने जो रेंज दिखाई वो आश्चर्यजनक थी। बिल्कुल करेक्ट आपने लिखा है ये बात। और दूसरे साथी लिखते हैं कि नूतन जी बहुत सुंदर अभिनय करती थीं, उनकी कुछ फिल्में जो हमें पसंद हैं, सरस्वती चंद्र, बंदिनी, सुजाता, सीमा वगैरह वगैरह। एक कमेंट में सुजाता फिल्म के लिए लिखा है कि ये फिल्म समाज में फैली छुआछूत और जातिवाद जैसी गंभीर रूढ़ियों पर चोट करती है। नूतन ने इसमें एक अछूत लड़की सुजाता की मुख्य भूमिका निभाई थी। विशेषतः नूतन के अभिनय की सादगी और उनके द्वारा झेले गए सामाजिक दर्द को दर्शकों ने बेहद करीब से महसूस किया। समीक्षकों के अनुसार इस फिल्म ने नूतन को एक गंभीर और संजीदा अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। और दूसरे साथी ने लिखा है कि आज का सुरीला सफर संजीदा अभिनेत्री नूतन जी के जन्मदिन पर उन्हीं को समर्पित है। ये जानकर अच्छा लगा, शोभना समर्थ की बेटी ने अपने अभिनय से माँ का नाम ही नहीं ऊंचा किया। उन्होंने जिन भी फिल्मों में अभिनय किया, एक आदर्श पत्नी, बहन, प्रेमिका, माँ के रूप में जो स्थान पाया वो किसी अभिनेत्री को आज तक नहीं मिला। बंदनी फिल्म के लिए लिखा है कि 1963 की बंदनी बिमल रॉय के निर्देशन में बनी इस फिल्म को भारतीय सिनेमा के मील का पत्थर माना जाता है। इसमें उनके सशक्त अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था।

एक साथी ने अंग्रेजी में कमेंट हमें लिख भेजा है, नमस्कार करते हुए, गुड आफ्टरनून करते हुए कि सुरीला सफ़र के लिए कि टुडेज द टेक्स्ट इज़ नाइस एंड इंडिकेट्स मैनी इंटरेस्टिंग सॉन्ग्स दैट विल बी द कंपेनियन ऑफ लिसनर्स इन सुरीला सफ़र फ्रॉम वंदिनी छलिया सुजाता सौदागर अनाड़ी सरस्वती चंद्र खानदान पेइंग गेस्ट टू तेरे घर के सामने ओनली नूतन जी एंड नूतन जी एक्सीलेंट स्पॉन्टेनियस ब्यूटिफुल एक्ट्रेस ऑल द बेस्ट।

0: एक कमेंट में लिखते हैं कि आज के सुरीला सफर की हम सफर बन रही हैं अपने जमाने के दिग्गज अभिनेत्री और गायिका नूतन, जिनका आज जन्मदिन है, उन्हें मैं पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के सारे गीत उन्हीं की फिल्मों से होंगे और उनके नाम की इबारत में बड़ी खूबसूरती के साथ शामिल किए गए। नूतन हिंदी सिनेमा की एक दिग्गज और बहुमुखी कलाकार थी, जिन्होंने अपनी सादगी, सशक्त अभिनय और अनूठी शैली से दर्शकों का दिल जीता। और लिखा है आगे दूसरे साथी ने कि आज सुरीले सफर में होंगी वो बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत नूतन जी, जितनी हमारे बीच की सामान्य सी लड़की वहीं बेहद स्मार्ट नायिका छलिया अनाड़ी में, एक से बढ़कर एक गीत सुनने को मिलेंगे। बहुत ही खास होगा आप सभी के साथ नूतन जी की बातें और खानदान का वो खूबसूरत गीत तुम्हें मेरी मंजिल फूल तुम्हें भेजा है, ढेर सारे गाने इन्होंने लिखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और अब जो बातें चल रही हैं और इसमें जिक्र आ चुका है फिल्म सुजाता का, जो कि सभी साथियों ने लिखा है, तो फिल्म सुजाता का वो गीत जिसका आप सबको है इंतजार, और मुझे है कि ये गाना निश्चित रूप से आप सभी की लिस्ट में जरूर होगा। बताइएगा जरा कि इस गाने में इनके साथ कौन है।
1: mm-hmm.

सुजाता फिल्म का ये गाना जलते हैं जिसके लिए। इस गाने को जितनी बार चाहो रेडियो पर सुनो या पर्दे पर देखो बहुत कम लगता है। कितना सहज है ये गाना और अभिनेता अभिनेत्री कितनी सहज अभिनय इसमें इन दोनों कर बैठे हैं। जैसा कि हमने पूछा था आपसे कि इस गाने में अभिनेता कौन है, तो हमारे सभी साथियों ने इसका बिल्कुल सटीक आंसर दिया। साथियों ने लिखा है कि सुनील दत्त टेलीफोन पर यह गाना उन पर फिल्माया गया है और इस गाने में नूतन भी टेलीफोन पर ही हैं जो सुनील दत्त के दिल की बातें सुन रही हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है कि फिल्म खानदान का तुम ही मेरी मंदिर तुम ही मेरी पूजा ये गाना जो है बहुत से संगीत कार्यक्रमों में गाया है मैंने और एक प्रतियोगिता में इस गाने के लिए पुरस्कार भी जीता है। वाह भाई क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। तो आगे एक हमारी सखी लिखती हैं कि बंदिनी सुजाता और सीमा आगे लिखा है कि नूतन जी की किसी एक फिल्म को चुनना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैंने मेरी सबसे ज़्यादातर तीन फिल्मों का अलग अलग फिल्मों के बारे में जो इन्होंने लिखा है ये फिल्में इन्हें बहुत पसंद है। एक कमेंट है जिन्होंने लिखा है कि मैंने रेडियो थोड़ा देर से चालू किया और जैसे ही चालू किया मोरा गोरा रंग गाना आया, मन खुशी से झूम उठा। मुझे लगा शायद ये गाना बच चुका है। मैं जब छोटी थी दूरदर्शन पर सुजाता पिक्चर देखी, हर पिक्चर देखकर मन रो देता था। हमेशा अपने ऊपर होने वाले अन्याय के लिए चुपचाप सहती रहती नूतन जी। वैसे तो हमारी मम्मी के ज़माने की हीरोइन थी लेकिन जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जो सीधी और शांत सहेलियाँ रहती थीं उनको हम सब कहते थे ये नूतन है और बाकी सब तनुजा। तो बताइएगा जरा कि नूतन जी और तनुजा जी में रिश्ता क्या है। एक साथी ने लिखा है कि फिल्म सुजाता का गाना हमने सुना, सुनील दत्त साहब टेलीफोन पर नूतन जी को अपने दिल की बात कह रहे हैं, आवाज़ तलत महमूद साहब की है। और एक ने लिखा है कि फिल्म सुजाता में सुनील दत्त जी हैं और बहुत अच्छा फिल्म अंकन है ये। दूसरे साथी लिखते हैं कि श्वेत श्याम फिल्मों का दौर भारतीय सिनेमा का स्वर्णिम अध्याय था जहां अभिनेत्री नूतन ने अपने स्वाभाविक अभिनय से दर्शकों के दिलों में एक खास स्थान बनाया। इन्हीं स्मृतियों में सुजाता का भोला चेहरा गहरी आँखें और मासूम अदाएँ जीवंत होती हैं। कहीं वो बंदिनी है कहीं अनाड़ी की नायिका तो कहीं प्रेम और विरह के गीतों में डूबी एक संवेदनशील स्त्री। उनकी फिल्मों में के अनेक गीतों को के साथ प्रेम प्रतीक्षा तथा सपनों से भरे इस अमर श्वेत श्याम गीत को आज भी जब रेडियो पर सुनते हैं एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, तब श्वेत श्याम दौर की फिल्में और गाने सुनहरी यादें बनकर मन को छू जाते हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि आज की भारत में शब्द ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उस शख्सियत की फिल्मों से गीत ढूंढना है जिनका नाम नूतन है। आज उनका जन्म स्मृति दिन है, उस छबीली अभिनेत्री को विनम्र नमन करते हैं। उनके द्वारा निभाए गए हर किरदार में नूतनता भरी होती थी क्योंकि नूतन एक अभिनेत्री ही नहीं भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति थी। हर कोई एक कार्य की सीमा होती है लेकिन उनके द्वारा निभाए गए किरदारों की कोई सीमा नहीं होती, चाहे वो कन्हैया अनाड़ी या छलिया राज कपूर के साथ हो या सौदागर अमिताभ बच्चन के साथ हो या धर्मेंद्र के साथ अनेक रात की बनकर चुनरिया रंग ली हो या हैंडीकैप सुनील दत्त की पत्नी राधा बनकर उनकी सेवा करते हुए खानदान का नाम रोशन किया हो या पेइंग गेस्ट देवानंद को तेरे घर के सामने घर बनाने और दुनिया बसाने की हामी भरती हो, उस छोटी सी गुड़िया की कहानी का सुनने का इंतजार रहेगा। और इन्होंने अपना उनको विनम्र नमन भेजा है। तो चलिए जब अनाड़ी फिल्म का भी जिक्र आ चुका है राज कपूर जी के साथ, तो अब हम अनाड़ी फिल्म के गाने की ओर बढ़ते हैं। आपको ये बताना है कि ये गाना जैसे ही शुरू होता है तो नायिका

तेरा जाना, दिल के अरमानों का लुट जाना, अनाड़ी फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म आया गया नूतन जी पर। जैसा कि हमने पूछा था कि इस गाने में जैसे ही शुरुआत होती है तो नायिका कौन सा वाद्य बजा रही हैं, तो हमारे सभी साथी लिखते हैं कि पियानो बजा रही हैं अभिनेत्री, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना। और हमने ये भी पूछा था कि नूतन जी और तनुजा जी में आपस में क्या रिश्ता है, तो उसको लेकर भी बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आए हैं। उससे पहले हम नूतन जी की फिल्मों से लेकर एक याद साझा की है हमारे एक साथी ने कि एक घर बनाऊंगा जी, मैं बताना चाहूंगा कि शादी से पहले मैंने होने वाली धर्म अपनी धर्म पत्नी के घर के सामने तो घर नहीं बनाया, लेकिन एक बड़ा घर बनाया उनके घर के सामने वाली सड़क पर, और अजमेर की उसी कॉलोनी में फिर ब्याह कर अपनी धर्म पत्नी को उसी घर में स्वागत किया। एक ये प्यारी सी याद इनकी बड़ी ही मीठी सी रही, बहुत अच्छी लगी। और वहीं जहाँ पर हमने पूछा था कि नूतन जी और तनुजा जी का रिश्ता, तो लिखते हैं साथी कि नूतन और तनुजा आपस में सगी बहनें हैं, लेकिन दोनों का फेस बिल्कुल नहीं मिलता। तो दूसरे साथी ने लिखा है कि नूतन की छोटी बहन है तनुजा, दोनों शोभना समर्थ जी की बेटियां हैं जो स्वयं अपने दौर में नायिका रही हैं। फिल्म सुजाता के लिए लिखते हैं कि ये सदाबहार गीत जलते हैं जिसके लिए तलत महमूद की मखमली आवाज़ में गाए गए, मजरू सुल्तानपुरी के सबसे खूबसूरत रोमांटिक गीतों में से एक है। एसडी बर्मन के संगीत और सुनील दत्त के फ़ोन पर अभिनय से मधुर बनाया है इसे। और एक साथी ने कुछ अपनी यादें साझा की हैं कि नूतन बुआ जी की तो सभी फिल्में देखी हैं, पर अब आप लोग कहेंगे कि इसकी बुआ कैसी, तो बताती हूँ। जब हम ठाणे में थे और बाबा पिताजी के दोस्त पर्सनल सेक्रेटरी थे नूतन बुआ जी के, तब वो मुमरा में रहा करती थी। बाबा को बालू चाचा ने एक बार नूतन बुआ जी के घर में ले गए थे, तो वो बाबा की वो अनमोल याद मिली जो बहुत कम लोगों को मिलती है। तब नूतन जी ने खाना खुद बनाया और इन दोनों को

खिलाया, बहुत सिंपल सा। और नूतन बुआ मराठी में बहुत सुंदर बातचीत करते हुए खुद को परोसा गेट तक छोड़ने आई और मराठी में कहा, ये तरहा भाऊ कधी कधी वेल मिलाला तर बालू दादा सोबत। बाबा नतमस्तक हो गए कि इतनी बड़ी हीरोइन खुद खाना बनाती है, परोसती है, ऊपर से गेट तक आती है, भाव कह के ऐसी हीरोइन कहीं नहीं मिलेगी। बहुत यादगार बात है। नूतन जी के लिए कुछ और हमारे पास कमेंट्स हैं। लिखते हैं कि नूतन हिंदी फिल्म जगत की एक नामचीन अदाकारा रही हैं, उनके अभिनय का लोहा हर किसी ने माना है। गूगल ने हिंदी सिनेमा की इस दिग्गज अभिनेत्री को उनके 81वें जन्मदिन पर एक विशेष गूगल डूडल के माध्यम से याद किया था। उनकी बेजोड़ अभिनय क्षमता को श्रद्धांजलि देते हुए डूडल में उनके निभाए गए सबसे प्रतिष्ठित किरदारों के भावों को दर्शाया गया। नूतन की बहुमुखी प्रतिभा को केवल एक चित्र में समेटना मुश्किल था, इसलिए डूडल में उनके चेहरे के 4 अलग अलग भावों को चित्रित किया गया था। ये भाव बंदिनी की संघर्षरत कल्याणी, सुजाता की व्यथित और सीमा की एक उपद्रवी अनाथ लड़की के रूप में उनके उत्कृष्ट अभिनय को दर्शाते हैं। नूतन की एक विशिष्ट अभिनय शैली थी जिसमें वे चेहरे की न्यूनतम भाव भंगिमाओं और आवाज के मॉड्यूलेशन से गहरा भाव प्रवण अभिनय किया करती थी। बिल्कुल। और इस गाने में भी जो अब आप सुनेंगे, उनका जो आंखों का और जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो भी कुछ कम तो नहीं है। अब आपको ये बताना है कि इस गाने में उनके नायक कौन है, और हमारे मुझे ऐसा लगता है कि ये गाने का भी इंतज़ार आप सबको है। वैसे आप सब अपनी अपनी लिस्ट के गाने नोट कर रहे हैं ना, हम तक भेजिए ज़रूर कि आपके अब तक कितने गाने टिक हो चुके हैं।

सौदागर फिल्म का ये गाना था और हमारे सभी साथियों ने लिखा कि इस गाने में नायक थे अमिताभ बच्चन। एक साथी लिखते हैं कि रविंद्र जैन जी का जादुई संगीत, तो वहीं दूसरे साथी ने लिखा कि वह बेहतरीन मधुर और भावपूर्ण गीत। बेचारी का इस गाने के बाद अमिताभ द्वारा तलाक देना दर्शकों को झकझोर गया था। दूसरे साथी ने लिखा है कि विविध भारती के लिए भी हम यही कह रहे हैं कि तेरा मेरा साथ रहे, दिन हो के रात सदा बना रहे ये साथ। तो दूसरे साथी ने लिखा कि भाई मेरा तो पांचवा गीत हीरो अमिताभ बच्चन रहे एक फिल्म नूतन जी के साथ, इनका पांचवा गीत शामिल हुआ। और दूसरे साथी ने लिखा कि फिल्म अनाड़ी नूतन पियानो बजा रही हैं, मेरा वाला गाना आ गया। और दूसरे साथी ने लिखा है कि वो पियानो बजा रही हैं, वैसे गाने में बांसुरी का भी खूबसूरत प्रयोग किया गया है, अनाड़ी तेरा जाना हाई पिच पर विशेष गायकी। तो दूसरे साथी ने लिखा कि मेरी लिस्ट का तीसरा गीत भी शामिल हो चुका है। और एक साथी लिखते हैं कि गुड आफ्टरनून, आज प्रोग्राम सुनने के लिए बहुत लेट हो गई, मेरी तबीयत कुछ ख़राब है और ये अभी हॉस्पिटल से आई हैं, तो जैसे ही आपकी आवाज़ सुनी प्रोग्राम नूतन जी पर है उनके जन्मदिन पर उन्हें नमन करते हैं और उनके बारे में क्या कहें, उनकी फिल्मों में से कोई एक फिल्म चुननी बहुत मुश्किल है, मुझे तो उनकी सारी फिल्में बहुत पसंद हैं, उनकी बंदनी सीमा ये दोनों फिल्में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और अब वक्त हो चला है कि आज के इस कार्यक्रम का आखिरी मोस्ट अवेटेड सॉन्ग आप सबकी नजर।

0: बने।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि आज महान अभिनेत्री न्यूटन जी को श्रद्धांजलि स्वरूप सुरीला सफर में सम्मान दिया जा रहा है। बेहद पसंद आया ये आपका जेस्चर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

आप सभी एक दूसरे को बधाई देते हुए हमारे एक साथी लिखते हैं कि अनेक साथियों के कमेंट शामिल हुए, उन सभी को बधाई और इन्हें प्रस्तुति अच्छी लगी। दूसरे साथी ने लिखा, शानदार लाजवाब सफर रहा आपके साथ, गति में और संगीत में कार्यक्रम का धन्यवाद, प्रश्नों ने बांधे रखा। तो अब साथियों वक्त हो चला है कि आपसे ले लें इजाजत। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, विविध भारती के इस कार्यक्रम सुरीला सफर को सुरीला और खूबसूरत बनाने के लिए। मैं मिलूंगी आपसे कुछ देर बाद, फिलहाल आप जुड़े रहिए, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

ये प्रसारण हो रहा है आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत अनपढ़ फिल्म से हमने लिया है, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा, संगीत मदन मोहन का।

कार्यक्रम का अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने गाया है, साहिल लुधियानवी की शब्द रचना संगीत जयदेव का। इस गीत को हमने लिया हम दोनों फिल्म से।

हम दोनों फिल्में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले को। गीत लिखा था साहिल लुधियानवी ने, संगीत जयदेव का था। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। हम कुछ और फिल्मी नगमे आपको सुनवाएंगे आज दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश, सुनना ना भूलें।

0: मीडिया वेव 188.32 मीटर्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दोपहर के 2:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। 5 दिन की भारत यात्रा पर आई रोड्रिगेज के साथ विदेश, अर्थव्यवस्था और विज्ञान मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी है। इस बातचीत में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, फार्मास्यूटिकल और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। भारतीय सार्वजनिक उपक्रम पहले से ही वेनेजुएला के ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी शाम को दमन में करीब 3,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें स्वास्थ्य, पर्यटन और हवाई संपर्क से जुड़ी योजनाएँ शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार को पश्चिम बंगाल जाएंगे और रुकी हुई रेल परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। वे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबान सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर रायसेन जिले की प्रेमा मेहरा ने अपनी कहानी साझा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि
1: मैं सन 2017 से ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी। आजीविका मिशन से जुड़ने से पहले मेरे घर की परिस्थिति बहुत ही बेकार थी, मगर आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद मैंने अपनी बचत जमा करना सीखा। इसके अलावा ग्रामीण आजीविका मिशन ने मुझे भी काम दिया। मैंने CRP का काम करा। इसके अलावा मैं बैंक सखी का काम भी करती थी और आज मैं प्रधान NGO में बाड़ी ब्लॉक में आजीविका सहायक के रूप में कार्य कर रही हूँ। मेरी मासिक आय 18,000 रुपये है और मैं खुश होकर कह सकती हूँ कि मैं एक लखपति दीदी हूँ।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल कर लिया है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक पहली बार EV से यात्रा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के संदेश को अमल में लाते हुए वे अब भोपाल में नियमित रूप से इलेक्ट्रिक वाहन से ही चलेंगे। उन्होंने कहा कि EV से वायु प्रदूषण नहीं होता, रख रखाव सस्ता है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ भविष्य की दिशा में एक अहम कदम है। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के पंजीयन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया है। 3,800 करोड़ रुपए का यह पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। प्रदेश में अब तक 68 लाख से अधिक अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं और लगभग 98% ड्रोन सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। भोपाल के बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वाग्देवी भोजपाल विश्वविद्यालय करने की तैयारी एक कदम और आगे बढ़ गई है। कल विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अब यह राज्यपाल मंगूभाई पटेल के पास भेज दिया गया है। हालांकि कार्य परिषद सदस्य डॉक्टर ताहिरा अब्बासी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह नाम स्वतंत्रता सेनानी बरकतुल्ला भोपाली की स्मृति से जुड़ा है और इसे बदला जाना उचित नहीं है। नाम परिवर्तन

के लिए अभी विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित कराना और राज्यपाल की मंजूरी लेना जरूरी होगा। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां तेज हो गई हैं। आज सुबह भोपाल, रायसेन, सीहोर और नर्मदापुरम में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 39 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि नीमच, श्योपुर, मुरैना, टीकमगढ़ और छतरपुर में ओलावृष्टि की चेतावनी भी है। वहीं कल रतलाम 42 डिग्री के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। मानसून इस बार सामान्य से देरी से यानी 20 जून के बाद प्रदेश में दाखिल हो सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच के ग्राम खातीखेड़ा में आयोजित जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में कलेक्टर ने ग्रामीणों से रूबरू होकर समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को मुख्य आयोजन गैरिसन ग्राउंड ग्वारीघाट स्थित आयुर्वेदिक कॉलेज मैदान पर किया जाएगा। शिवपुरी में इफको कंपनी की डीएपी रैक के माध्यम से 1370 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध हुई है, जिसका ई विकास प्रणाली से वितरण किया जाएगा। आगरमालवा में कल 2 नवीन वाहनों को पुलिस के बेड़े में शामिल किया गया। इस मौके पर एसपी दिलीप कुमार सोनी ने कहा कि इससे जिले में नियमित गश्त, विशेष अभियान एवं आपात स्थितियों में पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत होगी। झाबुआ में जलगंगा संवर्धन अभियान के दूसरे चरण में जल स्रोत सेवा समागम के तहत प्रस्फुटन ग्राम भोयरा में सुरक्षित जल समृद्ध कल विषय पर जल चौपाल का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
3: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है शॉर्ट सर्किट से। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी छुट्टी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जाँच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरल में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरल और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरल से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
4: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
5: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये

बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 23,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। विविध भारती पर हम लेकर हाजिर हैं गुजरे जमाने के कुछ नायाब, कुछ अनमोल, सदाबहार नगमे।

मिलन फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अब आपको सुनवाते हैं नौशाद की तर्ज पर शकील बदायूनी के बोल, लता मंगेशकर की आवाज़, फिल्म का नाम शबाब।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये रातें, ये मौसम।

आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वर दिल्ली का ठग फिल्म के इस गाने में आप सुन रहे थे। SH बिहारी के बोलों को सुरों में ढाला था संगीतकार रवि ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। साथियों, इन सदाबहार नगमों की सुंदरता, इनका सौंदर्य, इनका हुस्न कल भी तरोताज़ा था, खूबसूरत था, आज भी है और हमेशा रहेगा। चलिए अब आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश की ओर बढ़ा जाएं। शंकर जयकिशन की तर्ज पर शैलेंद्र की रचना है, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वर। क्या कहता है कन्हैया फिल्म का ये गाना, चलिए सुनते हैं साथ साथ।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। और ममता जी क्या बात है, आप थोड़ी बुझी बुझी सी, थोड़ी सी खामोश सी, थोड़ी सी नाराज सी नजर आ रही है।
1: अब कहाँ नाराज तो बिल्कुल थी नहीं पहले भी, लेकिन जो बुझा बुझा चेहरा आपको लगा और आपके हाथों का स्पर्श मिला तो उदासी तो मेरी चली गई वैसे ही। और जिंदगी में क्या होता है कि थोड़ा गम थोड़ी खुशी सबको मिलती है, कई बार हम यूं ही बेवजह चुपचाप बैठ जाते हैं तो लोग उसको उदासी समझते हैं। तो ऐसे ही कुछ आपके साथ हुआ, तो आपने जब स्पर्श किया और हाथ मिलाया मुझसे और कहा कि क्या बात है, क्यों थोड़ी सी उदास लग रही, बस मैं मुस्कुरा उठी
2: और वो छू मंतर हो गया सारा दर्द। क्योंकि देखिए ना, हर किसी के जीवन में थोड़ी ना थोड़ी परेशानी होती है, और हम ऐसे है ना कि अगर हमारे मन से थोड़ा भी अलग हुआ ना तो हम भी परेशान हो उठते हैं। भले ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशानियां होती है, पर हम उसे बहुत ज्यादा मान भी लेते हैं कि अरे ऐसे क्यों हो गया मेरे साथ में।
1: बिल्कुल,
2: तो हर किसी के साथ ऐसा होता है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ तो होता ही है कि थोड़ी सी तबीयत नासाज हो गई तो परेशान हो जाते हैं,
1: किसी ने कुछ कह दिया
2: किया तो नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में हमारी जो घर की दादी माँ, नानी माँ या फिर पिताजी माँ, जिनसे हमारा स्पर्श कम होते जाता, उनका हाथ में हाथ थाम लिया और बस उनको एक झप्पी दे दी, प्यार भैया गले से लगा लिया, तो वे खुश हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। तो जो उदास बैठा है उसके पास जाकर एक जादू की झप्पी दे दे और प्यार से उसके कंधे पर उसके सिर पर हाथ रखे कि चलो सब ठीक हो जाएगा। भले ही आपको कारण पता हो ना हो, लेकिन इतने से कोई बहुत

0: बड़ा दुख या अवसाद होता है तो दूर हो जाता है। और कई बार ये घटनाएं भी इससे घटित होती हैं कि लोग दुनिया अपनी ज़िंदगी से अपने हालात से बहुत परेशान हाल होते हैं और वो कोई बड़ा कदम आत्महत्या जैसे कर रहे हों तो भी वो वक्त टल जाता है। और ये कहा जाता है कि आत्महत्या का बस कुछ लम्हा होता है, वो लम्हा अगर कुछ सेकंड टल गया तो वो टल गया, फिर उसके बाद मन ठीक हो जाता है। तो इसलिए जब भी कोई उदास चेहरा दिखाई पड़े तो बस उसके सिर पर हाथ रखें, एक स्पर्श से किसी की उदासी, किसी की नाराजगी, किसी का दुख दूर हो
1: दूर हो
0: जाता
1: सकता
0: है।
1: है। और साथ में आज हम कहानी पद्मश्री की इस सेगमेंट के अंतर्गत दुलारी देवी, जो मधुबनी पेंटिंग के लिए जानी जाती है, उन्होंने मधुबनी पेंटिंग इस क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है, तो उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। और साथ ही मुझे कुछ कहना है, तो इसमें गर्मी की छुट्टियों में आम खाने का आनंद, यानी
0: बिल्कुल।
1: बचपन याद आ गया, नॉस्टैल्जिया हो गया ना।
0: मतलब आम के बाग में जाकर वो ढेला जो होता था, पत्थर कंकड़, उससे फेंका और आम जो टूटता था और उस आम को लेने की पकड़ने की होड़ होती थी। कई लोग झुंड होता था बच्चों का,
1: ओ
0: तो वो झुंड दौड़ता था कि हम लेंगे हम लेंगे। और उसमें जो आनंद था वो तो जो इकट्ठा आम मिल जाए, और अब जो आम मैंगो शेक बना के पीने का आनंद है, या फिर पेटी में जो आम आता है जिसे आप खोलते हैं, वो आनंद कहाँ है।
1: वो जो आनंद था उसकी तुलना ही नहीं हो सकती, भले उसने पंछी ने भी अगर उसमें थोड़ा
0: तोता
1: सा
0: खासतौर से
1: हाँ
0: खा ले
1: खा लिया तो भी हम उसे धोखे खा लेते
0: तो
1: थे,
0: कहा जाता है कि तोते ने अगर जूठा किया है तो वो
1: और भी
0: मीठा
1: मीठा
0: और मीठा होगा,
1: होगा।
0: और वो देसी आम, तरह तरह के आम।
1: हाँ
0: तो हम अपने श्रोताओं से जानना चाहते हैं कि वो आम खाने का क्या सुख था वो बचपन वाला, और साथ में किस तरह के आम आपने खाए हैं, कौन कौन सी प्रजाति होती है आम की,
1: आपके
0: वो भी
1: क्षेत्र में कौन सी प्रजातियां होती हैं
0: लिख
1: एक,
0: भेजें।
1: हाँ, और साथ ही उपयोगी टिप्स, यानी आम खा लिया, बहुत सारा आम खा लिया और व्यायाम नहीं किया तो वजन तो बढ़ ही जाएगा, तो वजन
0: बिल्कुल
1: कैसे घटाए इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। और बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर कमेंट्स लिखना शुरू भी कर दिया है, तो आप कितना आम खाते हैं और वजन घटाने के लिए क्या करते हैं, इस बारे में हमें लिखकर
0: विविध
1: बताइए।
0: भारती के फेसबुक पेज पर जाकर टिप्पणी करें और कोई अपना अनुभव भी साझा कर सकते हैं
1: हाँ
0: आम खाने से जुड़ा हुआ। और ये जो हमने विषय दिया है, बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श, कि आज मोबाइल का ज़माना है तो वो टाइम ही नहीं है लोगों के पास, पता ही नहीं चलता कि कमरे में बैठा हुआ कोई रो रहा है। लोग अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर में, अपने काम में बिजी रहते हैं, बहुत देर बाद पता चलता है। तो ये जो ऐसा कोई अनुभव है, वाक्या है, तो आप ज़रूर साझा करें। और हम अब साझा करते हैं ये गीत।

0: तो ये गाना हमारी सखियां और सखा सुन रहे थे, और अब आप मोबाइल के स्क्रीन से बाहर लौट आइए, क्योंकि अभी भी तो हम बात कर रहे थे ना मोबाइल के स्क्रीन से बाहर आना, लेकिन अगर आप बाहर आ गई तो
1: श्रोताओं के कमेंट्स कैसे
0: पढ़ेंगे, ये बात तो है। तो ठीक है, मोबाइल के स्क्रीन को साथ में रखिए, लेकिन अभी हम पद्मश्री दुलारी देवी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें।
1: जी, मधुबनी जिले के रांटी गांव की रहने वाली दुलारी देवी ने कभी स्कूल की सीढ़ियां तक नहीं चढ़ी। 25 साल पहले उन्हें पद्मश्री अवार्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आज पूरा देश उन्हें पद्मश्री दुलारी देवी के नाम से जानता है। और ममता जी, इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। जिस तरह वे अपने कैनवास को अलग अलग रंगों से रंगीन बनाती है, ठीक उसी तरह उन्होंने अपनी मेहनत से अपने जीवन में सफलता के रंग भरे। दुलारी देवी कहती है कि मैंने जीवन में बहुत गरीबी देखी है, मुझे पेंटिंग बनाना पसंद है, और आज इसी के बदौलत उन्हें इज्जत और सम्मान मिल रहा है।
0: और आज जब हम कहीं किसी शॉप में कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़ों की शॉपिंग खासतौर से, तो मधुबनी पेंटिंग ढूंढते हैं कि मधुबनी पेंटिंग वाली डिज़ाइन का कुर्ता हमें मिल जाए, ड्रेस मिल जाए, तो वो पहन लें, और फिर मधुबनी पेंटिंग खरीद कर ले आते हैं, अपनी दीवार को सजाते हैं। तो मधुबनी पेंटिंग कितनी ज़्यादा मशहूर है और कितनी उसकी अहमियत है, तो दुलारी देवी ने मधुबनी में रहते हुए मधुबनी पेंटिंग को बढ़ावा दिया और उसमें आगे बढ़ी, पद्मश्री से सम्मानित हुई। दुलारी देवी की ज़िंदगी की शुरुआत बहुत नीचे तबके से हुई और एक आम लड़की की तरह गरीब परिवार में हुई। उनके परिवार में शिक्षा को लेकर बहुत कम जागरूकता थी और आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी। वो कभी स्कूल नहीं गए इस वजह से। उनका परिवार मजदूरी करके जीवन बिताता था। दुलारी देवी बचपन से ही माँ के साथ काम पर जाती और घर में भाई बहनों की देखभाल करती थी, और उनके पिता मछुआरे थे।
1: देखिए,
0: तो वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें हुई उन्हें, इस कारण दुलारी देवी मायके वापस आ गई थी।
1: और मायके वापस आने के बाद उन्होंने मिथिला पेंटिंग की प्रख्यात कलाकार कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करना शुरू कर दिया।
0: जी, कितनी अजीब बात है ना कि कितने छोटे काम करती थी और उसके बाद और कहाँ तक पहुंची।
1: और आगे चलकर यहीं से उन्होंने मधुबनी पेंटिंग बनाना भी सीखा। दुलारी देवी ने तकरीबन 25 साल तक कर्पूरी देवी के घर पर काम किया। दोनों मिथिला आर्ट्स आर्टिस्ट कर्पूरी देवी और महासुंदरी देवी को पेंटिंग बनाते देख दुलारी देवी को भी मैथिली पेंटिंग सीखने की चाहत हुई। और दुलारी देवी को मिथिला पेंटिंग का शौक तो था ही, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे रंग, कागज़ और कपड़े खरीद पाती। इसी दौरान उनके लगन को देखते हुए कर्पूरी देवी ने उनकी मदद की और पेंटिंग की बारीकियाँ उन्हें सिखाई। और 1983 में प्रख्यात पेंटर गौरी मिश्रा ने महिलाओं को मिथिला पेंटिंग सिखाने और उनके काम को प्रमोट करने के लिए एक संस्था बनाई, और कर्पूरी देवी की मदद से दुलारी देवी को वहाँ पर सीखने का मौका भी मिला।
0: और उनकी पहली पेंटिंग सिर्फ 5 रुपए में बिकी थी। सोचिए, 5 रुपए, आज के जमाने में उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है, उस समय भी इतनी 5 रुपए की बहुत ज्यादा कीमत नहीं थी। इस संस्था से जुड़ने के बाद उनकी कुछ पेंटिंग बिकने लगी। चूंकि बिहार का मधुबनी जिला मिथिला पेंटिंग के लिए पूरे विश्व में मशहूर है, इसलिए कई विदेशी लोग यहाँ के कलाकारों से मिलने और पेंटिंग खरीदने आते रहते हैं। पेंटिंग से जुड़ी अपनी पहली कमाई बारे में वो बात करते हुए कहती हैं कि जापान से आए कुछ मेहमानों ने उनसे पेंटिंग वाले 7 पोस्टकार्ड्स खरीदे थे और एक कार्ड की कीमत 5 रुपए थी।
1: और जो फॉरेनर होते हैं, विदेशी लोग होते हैं, इन कलाओं को बहुत महत्व देते हैं, और स्थानीय लोगों से जब चीज़ें खरीदते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, और उन्हें पैसा भी मिला होगा उससे। और गौरी मिश्रा की संस्था से जुड़कर उन्होंने 16 साल तक काम किया। वहीं अपने सबसे महंगी पेंटिंग के बारे में बात करते हुए कहती है कि मैंने अपनी एक पेंटिंग 3 लाख रुपये में बेची थी, जिसे बिहार

0: कलाकार ने खरीदा था, आज भी वो पेंटिंग पटना के बिहार म्यूजियम में लगी हुई है।
1: क्या बात है।
0: और दुलारी देवी को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, लेकिन कर्पूरी देवी ने उन्हें मधुबनी पेंटिंग के साथ साथ खुद का नाम लिखना भी सिखाया। कला के प्रति अपनी रुचि और मेहनत के दम पर दुलारी देवी ने आगे चलकर कई सारे अवार्ड जीते और दुलारी देवी के पेंटिंग को इग्नू के लिए मैथिली में तैयार पाठ्यक्रम के होम पेज के लिए भी चुना गया था। कितनी कितनी गौरव की बात है।
1: बिल्कुल। और आज भी वो सुबह 4 बजे उठकर पेंटिंग बनाने का काम करती हैं और कहती हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया काम हमेशा अच्छा होता है, इसलिए वो जल्दी उठकर पेंटिंग बनाती हैं आज भी। साथ ही वो कोशिश करती हैं कि अपनी कला के माध्यम से लोक कथा और संस्कृति से लोगों को जोड़ सकें।
0: और पिछले 8 सालों से वे मिथिला आर्ट इंस्टीट्यूट में पेंटिंग सिखाने का काम भी कर रही है। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए उन्हें राज्य सरकार से भी मिथिला अस्मिता का सम्मान मिल चुका है।
1: और
0: पद्मश्री से नवाजे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने बताया कि जब दाई जी यानी महासुंदरी देवी को पद्मश्री मिला था, तब मैंने पहली बार इस विशेष सम्मान के बारे में सुना था। आज अगर मेरी गुरु जीवित होती तो मुझे इस मिले सम्मान को देखकर बेहद खुश होती। तो सचमुच कितनी खुशी होती है ना ऐसी बात सुन के।
1: बिल्कुल। और प्रेरणा की स्रोत है। तो अब एक गाना सुन लेते हैं और फिर बातें करते हैं।

0: तो सोनाली जी, ये गाना हमने सखियों और सखाओं को सुनाया, और बात कर रहे थे शुरुआत में स्पर्श की, कि एक जरा से स्पर्श से आपका मन कितना हल्का हो जाता है। कई बार बहुत बड़ा हादसा टल जाता है सिर्फ स्पर्श से। तो पहले जो दादी नानी के आंचल का स्पर्श होता था, वो एक वटवृक्ष की तरह था, कि
1: सचमुच
0: जैसे हम तपती धूप से निकल कर कहीं पेड़ की छाँव में बैठ जाए, इतना सुकून मिलता था माँ और दादी नानी के आंचल तले, है ना। लेकिन अब वो सब खत्म होता जा रहा है, वो जैसे समय ही खत्म हो गया, वक्त ही नहीं है। अब परिवार में जितने सदस्य हैं सब लोग वर्किंग होते हैं अमूमन, और फटाफट तैयार होकर बाहर जाने की हड़बड़ी होती है, होड़ होती है, तो कहाँ वक्त रह गया है। लेकिन इसी में, इसी भागदौड़ की जिंदगी में थोड़ा सा समय निकालें, एक साथ परिवार के साथ बैठें, थोड़ा टच थेरेपी का इस्तेमाल करें,
1: और
0: है
1: हम
0: ना।
1: लोग है ना, हम लोग भारतीय, खासकर हम लोग ना बस हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ते चरण स्पर्श में भी ना हम लोग ऐसे पैर को छूते नहीं है, बस जमीन में ऐसा झुक गए और जमीन में बस ऐसे आप घुटने तक ही कर
0: अब तो
1: दिया।
0: घुटने तक,
1: हाँ,
0: हाँ
1: बस
0: बिल्कुल।
1: इतना करते हैं, पर जब हम किसी को छूते हैं ना तो उसको भी बहुत खुशी मिलती है, और हमें जो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उस स्पर्श मिलता है उसकी कोई तुलना ही नहीं है। जैसे स्नेह का सबसे सुंदर जो है ना, स्नेह सबसे सुंदर और सहज रूप होता है स्नेहिल स्पर्श। ये स्पर्श कभी माँ की उंगली पकड़ कर चलने में महसूस होता है, कभी पिता के कंधे पर हाथ रखकर मिली हिम्मत में मिलता है, कभी दादा दादी के आशीर्वाद में, तो कभी मित्रों के आत्मीय आलिंगन में। ये स्पर्श शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है ममता जी, और इसमें प्रेम की भाषा होती है,
0: बिल्कुल।
1: विश्वास का संदेश होता है और सुरक्षा का आश्वासन होता है।
0: और इन स्पर्श में ऐसी जादुई शक्ति होती है जो मन की व्याकुलता को शांत कर देती है। बच्चा या बड़े शायद उन शब्दों को भूल जाएं जो उन्हें सुनाए गए थे, लेकिन प्रेम से भरा वो स्पर्श जीवन भर उनकी स्मृतियों में अंकित होता है। वो स्पर्श दो दोस्तों का भी होता है, माता पिता का होता है, पति पत्नी का होता है, भाई बहन का होता है, कि आप जब गले लग जाते हैं तो जैसे प्रेम की धारा प्रस्फुटित हो जाती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद रोता हुआ शांत हो जाता है। जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति, और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी। और ये प्राचीन भारतीय वैदिक परंपरा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान में भी ये बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव शरीर में ऊर्जा प्रवाहित होती है, और वो केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। सोनाली, आप ये देखिए ना कि जब कोई कहीं जब घर छोड़ता है, बाहर जा रहा होता है, तो आप क्या करते हैं, गले लगते हैं, तो उसका क्या मतलब है कि आप प्रेम का इजहार कर रहे हैं, और वो जो अंतिम मुलाकात होती है
1: जी
0: एक दूसरे से बिछड़ने की, वो आपके जहन में बस जाती है। या आप हाथ पकड़ के सिर पर हाथ रख देते हैं, जैसे कोई दुखद घटना घटित हो जाती है तो कहीं जाते हैं और उसके पीठ थपथपा देते हैं, या बच्चे को पीठ थपथपा के कह देते हैं कि देखो तुम तो विजेता होकर लौटोगे। तो ये बातें याद रह जाती है, और इसमें बहुत शक्ति होती है।
1: पर समय के साथ साथ ये सब हम चीजें भूलने भी लग गए। एक हमारे साथी ने लिखा है, ममता जी, बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे जाता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
0: बिल्कुल सही बात है। जो परिवार कभी एक साथ बैठकर सभी भोजन किया करते थे, अलग अलग शहरों और देशों में अब बट गया है। दूरी केवल भौगोलिक नहीं होती है, वो भावनात्मक भी होने लगी है। फोन और वीडियो कॉल से बातचीत तो हो जाती है, लेकिन माँ के हाथों की वो जो ममता, पिता के कंधे का वो जो सहारा, और अपनों की निकटता का वो अनुभव कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा। वो थकान थक के लौटे स्कूल कॉलेज से तो माँ के कंधे पे सिर टिका लिया, भाई से भाई के गले लग गए, तो जैसे थकान कहीं दूर हो
1: छूमंतर हो
0: जाती
1: जाती
0: है।
1: थी, है ना।
0: लेकिन अब वो समय कहाँ है, और अब समय एक
1: गीत
0: गाना
1: सुने,
0: सुनवाने का।
1: सुनते हैं गीत।

0: प्यार आंचल में बांधा जा सकता है क्या
1: सचमुच, उसे
0: स्पर्श के माध्यम से,
1: उसे समेट कर रखा जा सकता है और बहुत दिनों तक सहेज कर भी रखा जा सकता है। ममता जी, एक हमारे
0: इंदीबर ने लिखा था ये गाना और आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज से, आनंद आश्रम फिल्म का गीत था।
1: और एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी कि हमारी तीन सासू माएं, तीनों देवरानी जेठानी की उम्र 80 के ऊपर है और ये चाहती है कि बहुएं हमारे पास बैठे, बातें करें और अपना समय दें। हम सभी कोशिश तो करते हैं पर उनकी इच्छाएं पूरी तरह से पूरी नहीं कर पाते क्योंकि हमारी अपनी निजी जिम्मेदारियां भी हैं, वो हमारा प्यार स्नेह समय और स्पर्श ही चाहती है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो अब हम एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, फिर और सखियों और सखाओं के कमेंट्स शामिल करते हैं।

0: दोस्तों विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली, और श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां सोनाली जी यहाँ आ चुकी हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। देखिए, एक श्रोता ने लिखा है कि बढ़ती उम्र में भी एक आत्मीय मुस्कान, कंधे पर रखा विश्वास भरा हाथ या हालचाल पूछने वाला अपनापन मन को नई ऊर्जा दे देता है। इसलिए जीवन की व्यस्तताओं के बीच हमें अपने प्रियजनों के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि स्नेहिल स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है।
1: एक सखी ने लिखा है कि दुनिया भर में माँ अमृतानंदमय इसलिए मशहूर है कि वे अपने से मिलने वालों को गले लगाती है। डॉक्टर इसे स्पर्श थेरेपी कहते हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग, जरा सा स्नेह स्पर्श उनके मन की जिजीविषा को दोगुना कर एक नई ऊर्जा से भर देता है। मौका खुशी का हो या दुख का, दिल से किया हुआ आपका प्रेमिल स्पर्श किसी चमत्कार से कम न होगा। अगर आपस के कुछ मतभेद होंगे तो वे भी सुधरेंगे और रिश्तों में मजबूती देने का सुखद और सकारात्मक माहौल बनेगा।
0: और एक कह रहे हैं कि ये विषय आधुनिक समाज में बुजुर्गों के अकेलेपन, बिखरते संयुक्त परिवारों और मानवीय संवेदनाओं में आ रही कमी को दर्शाता है। स्नेहिल स्पर्श केवल शारीरिक स्पर्श नहीं बल्कि ये अपनों का प्यार, सम्मान, परवाह और मानसिक संबल है। समस्या का मूल मानव जीवन में बचपन और जवानी जिस चकाचौंध और सामाजिक सक्रियता में बीतती है, बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते ही वो सब बदलने लगता है।
1: बहुत सही बात इन्होंने कही। और एक हमारे साथी ने लिखा है कि बढ़ती उम्र के साथ पीछे छूटता स्नेहिल स्पर्श। हाँ, मुझे भी ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि जब हमारे बच्चे छोटे छोटे होते थे तो हम हर पल उन्हें प्यार दुलार देते थे, उनके सुबह उठने से लेकर रात के बुलाने तक। लेकिन बड़े होने पर हम उस तरह से देखभाल नहीं कर सकते क्योंकि वे कुछ काम अपने हाथों से करने लगते हैं, परंतु प्यार तो हम आज भी बचपन जैसा ही करते हैं पर जताते नहीं हैं।
0: और फिर यही इसी वजह से बच्चे भी सीखते हैं, क्योंकि जब आप बचपन में उन्हें दुलराते थे, गोद में लेके टहलाते थे, या फिर जब बड़े हो गए तो भी आप गले से लगाते थे, अपने छाती से चिपकाते थे, बड़े होने पर वो दूरी आपने मेंटेन कर ली, तो बच्चों को वो बचपन वाली बात तो याद नहीं रहती, वो बड़े होने के बाद याद रहती है। तो बच्चे भी वही सीख रहे हैं। तो इसलिए जो आपके घर में जो माहौल होता है कि अगर पति पत्नी आपस में एक दूसरे से दूरी मेंटेन रखते हैं, या सास बहू के बीच एक दीवार खड़ी है, ननद भाभी के बीच, भाई बहन के बीच एक दीवार खड़ी है, तो बच्चे भी वही सीखते हैं। फिर बच्चे भी वो नहीं कर पाते हैं जो आप उम्मीद करते हैं जिसकी।
1: और एक साथी ने लिखा है कि जब कोई माँ अपने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखती है तो बच्चा खुद ब खुद शांत हो जाता है। जब कोई प्रियजन के कंधे पर हाथ रखता है तो उसे मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। यही है स्पर्श की शक्ति, और इसी सिद्धांत पर आधारित है स्पर्श चिकित्सा। स्पर्श चिकित्सा यानी टच थेरेपी कोई आधुनिक आविष्कार नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय और वैदिक परम्परा का हिस्सा रही है। आज विज्ञान भी यही बात मानी जा रही है कि स्पर्श से मानव जीवन में ऊर्जा प्रभावित होती है। ये केवल मानसिक और शारीरिक पोषण से भी राहत दे सकती है। स्पर्श थेरेपी का जादू इस बात का प्रमाण है कि प्रकृति ने हमारे हाथों में ही इलाज की शक्ति दी है।

0: व्यस्त दिनचर्या में अपनों को गले लगाना है, छोटी सी मालिश देना आपके जीवन को सेहतमंद और खुशहाल बना सकता है।
1: क्या बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। अमूमन क्या होता है कि कुछ व्यस्तता के कारण, कुछ कुछ टकराव के और कुछ ईगो के कारण भी हम छोड़ते हैं। घर में जब कई बार तकरार होती है, जहाँ पे 10-4 बर्तन होते हैं तो खटखट की आवाज होती है, टकराहट होती है, तो ऐसे रिश्तों में भी टकराव होते हैं। तो आजकल क्या होता है कि सबके सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट ईगो का रूप ले लेता है, अहम का, तो वहाँ पे टकराव ज़्यादा होते हैं। अहम छोड़कर अगर एक स्पर्श से कह दिया जाए कि हाँ छोड़ो, जाने दो, हो गया, जो बीत गई सो बात गई, तो बस इतने में झगड़ा खत्म हो जाता है। लेकिन 2-3 लोग जब घर में होते हैं तो अपने अपने ईगो को लेके बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि अरे हाथ बढ़ाते हैं, हमने तो अभी फिल्मों में ये सीन भी दिखाया जाता है कि हाथ बढ़ लिया और फिर पीछे ले लिया। तो ऐसे ही घरों में भी होता है कि आपका मन करता है कि हम जाए अपने बच्चे को गले लगाएं, लेकिन अरे उसने तो पलट के जवाब दे दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे,
0: हम नहीं बोलेंगे, तो वो पहले शुरुआत करें, हम क्यों करें।
1: तो ऐसे में टकराव और बढ़ता है और दूरी और बढ़ती जाती है।
0: एक साथी ने लिखा है ममता जी कि मेरे विचार से माता पिता को अपने बच्चों को स्नेह स्पर्श से वंचित नहीं रखना चाहिए। हम अभी भी अपने बेटे बेटियों को उनके किसी भी अचीवमेंट पर स्नेहिल स्पर्श भी करते हैं और प्यार की झप्पी भी देते हैं, चाहे बेटे अभी पढ़ रहे हैं, बेटियां जॉब में हैं। हाँ, मेरे से ज्यादा मेरी धर्म पत्नी इस मामले में 2 कदम आगे हैं।
1: क्या बात है भाई,
0: महिलाएं हर क्षेत्र में आगे
1: जी। तो वैसे भी ये कहा जाता है, महिलाओं के हिस्से में ये जोड़ दिया जाता है कि सहनशीलता आपके हिस्से में है, सहनशील बनो। तो ये दोनों तरफ होना चाहिए। अब जमाना बदल चुका है कि अब सिर्फ सहनशीलता महिलाओं के हिस्से में नहीं, पुरुषों को भी उतना ही सहनशील होना चाहिए।
0: और जैसे आपने कहा ईगो की बात है, तो उस ईगो को झाड़ दीजिए। जैसे हम घर में झाड़ू लगाते हैं, वैसे ही हमारे ऊपर से झाड़ू फेरा के उस ईगो को फेंक दीजिए, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना, उसकी मिठास ही कुछ और ही होती है और अपने अपने ही होते हैं। बस ये अहंकार को हमें आड़े नहीं आने देना चाहिए।
1: बिल्कुल। और अपने रिश्तों को छोड़कर कई बार बाहर प्यार जब तलाशा जाने लगता है तो स्थिति और बिगड़ जाती है। तो इसलिए ये जो स्पर्श वाली चिकित्सा है, इसको मेंटेन रखें। एक श्रोता ने एक अनुभव साझा किया है, लिखा है कि वैसे स्पर्श बहुत फायदेमंद होता है, खासकर बुजुर्गों की सेवा और बच्चों, जानवर वगैरह। एक बार पिताजी की बुरी हालत थी, उनकी निरंतर सेवा कर स्पर्श ध्यान द्वारा भी जल्दी ठीक हो गए थे। और अन्य ध्यान आप करते हैं जिसमें जिससे मन शांत होता है, ये स्पर्श के बहुत अच्छा होता है। स्पर्श से बच्चों का दिमाग और उनका स्पर्श हमेशा फायदेमंद होता है। मतलब ये कहना चाहते हैं, बच्चों के साथ अगर आप उन्हें टच करके, छू कर बात करते हैं तो ये बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि ये बीच में एक दौर आया था जहाँ पर एक दूरी मेंटेन कर दी गई थी, वो था कोरोना समय कि छूना नहीं है, कितनी विपरीत और विषम स्थिति थी। तो ये घर में तो ठीक है, अपनों को छू कर बात करना अच्छी बात है, लेकिन कई लोगों की आदत इतनी ज्यादा होती है टच करके बात करने की, बाहर अजनबियों से टच करके बात करते हैं, तो वहां पे हालत, स्थिति बिगड़ भी सकती है, इसका भी ध्यान रखे आप।
0: बस हमें संतुलन बनाए रखना है उस स्पर्श में भी, कि कहाँ जरूरी है और कहाँ नहीं है।
1: बिल्कुल।
0: कहाँ हद से ज्यादा नहीं आगे बढ़ना है और कहाँ हमें गले लगाना।
1: खासतौर से अगर कोई लड़की चली जा रही है और कोई लड़का आकर उसे छू कर बात करे कि हाँ एक्सक्यूज मी मुझे कुछ कहना, तो निश्चित रूप से थप्पड़ पड़ जाएगा। और इस समय अब गाना सुनवा दे,
0: सुनते हैं गीत।

0: तो सोनाली जी, मुझे लगा कि आम खाने की तैयारी में लग गई आप।
1: आम अभी पढ़ना है ममता जी
0: आम आम
1: आज।
0: बहुत खास है कहने
1: आम
0: को,
1: आज
0: आम
1: खास हो गए।
0: बिल्कुल, क्योंकि आम जब आम की बहार आती है गर्मी के मौसम में तो वो खास हो जाता है। फिर सबसे पहला सवाल ये होता है कि आम है कि नहीं खाने में,
1: हाँ
0: फिर नाश्ते में, खाने में, दोनों टाइप, मतलब लंच डिनर सब जगह आम शामिल हो जाता है। और उसको कभी आम का रस बना के पूड़ी के साथ, और आम का
1: कभी
0: रस
1: मैंगो
0: पराठे के
1: शेक बना
0: साथ, मैंगो
1: के।
0: शेक बना के, कभी काट के। तो आप बताइए आप को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, मतलब काट के?
1: मुझे तो वैसे ही पसंद है ममता जी, बस मैं काट के खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ना जो आम रस होता है ना वो थोड़ा पचने में भारी होता है, क्योंकि हमने उसे बनाया फिर ऐसा लगा कि अरे ये तो थोड़ा सा फीका लग रहा है, उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल
0: शक्कर
1: दो।
0: डाल दी।
1: फिर
0: हाँ
1: माँ बोलेगी कि भाई वो थोड़ा गरिष्ठ होता है उसमें थोड़ा दूध डाल दो, फिर उसमें इलायची डाल दो, ऐसे करते करते करते फिर
0: ज्यादा
1: उसमें
0: हो
1: थोड़ी
0: जाता।
1: बादाम की कतरन डाल दो, ऐसे करते करते वो थोड़ा भारी हो जाता है। और फिर है ना खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, एक कटोरी से समाधान नहीं होता था, ऐसा लगे और थोड़ा सा ले ले। फिर खाने में दूसरे भी आइटम होते, सब्जी भी है, दाल चावल है, रोटी है, और भी है, सलाद है, पापड़ है, फिर वो बहुत भारी हो जाता है। तो मैंने अभी शुरू कर दिया है कि बस दो तीन फाक खा लो।
0: बस
1: हाँ
0: मतलब एक आम जैसे
1: हाँ
0: तैसे,
1: हाँ खा
0: उससे
1: लिया।
0: ज्यादा नहीं खाना
1: और
0: है
1: फिर अगर
0: तो
1: जब
0: ये।
1: आम जी भर के खाना है तो फिर थोड़ा सा खाने को कम कर दो, कि जैसे रात में थोड़ा सा हल्का सा कुछ लिया, और उसके साथ में फिर अगर मैंगो शेक लिया है या फिर घर में बनी हुई मैंगो की आइसक्रीम ली है, तो फिर हम इस तरह से अगर करें ना तो फिर आम का भी आनंद ले सकते हैं और हमारी सेहत का भी ध्यान
0: अच्छा,
1: रख
0: तो
1: सकते।
0: मतलब सत्तू के पराठे के साथ और पूरी के साथ आम का रस नहीं खा सकते?
1: खा सकते हैं ना, बिल्कुल
0: हाँ,
1: खा सकते हैं।
0: लेकिन हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो इनके शौकीन हो गए, क्योंकि
1: हाँ
0: अमूमन ये कहा जाता है अरे क्या बना है, आम का रस और पूड़ी,
1: पूरी।
0: तो ये तो बहुत, और साथ में आलू की भुजिया।
1: हाँ
0: तो हमारे श्रोता बता सकते हैं कि कौन कौन लोग अभी इन दिनों में कितनी बार आम का रस पूड़ी खा चुके
1: और
0: हैं।
1: लोग बुलाते भी हैं, चलो हमारे घर आज आमरस पूरी का आयोजन है तो आप आइए खाने के लिए, उसके साथ में सूखी आलू की सब्जी भी रख देते हैं, तो
0: बिल्कुल।
1: बहुत बहुत आनंद आता है सब खाने में।
0: तो हमारे कौन से श्रोता हैं जिन्होंने बाग में जाकर आम तोड़ कर खाया है, और कौन कौन से आम? हमारे कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमने तो ये देसी आम बहुत सारे खाए हैं, और तोता परी एक ने लिखा है, चौसा, लंगड़ा, ये आम हमने खाए हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमने तो रत्नागिरी आम खाया है बहुत सारा, इधर महाराष्ट्र में और कोंकण साइड में
1: जी
0: खास तौर से। ये अल्फांसो जो आम होता है, हापुस आम, ये बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन जो लोग लंगड़ा और चौसा खा चुके हैं उन्हें इनमें स्वाद नहीं आता है।

0: काम है वो भी खाते हैं। एक हमारे साथी ने लिखा है, ममता जी हमारी तो गर्मियों की छुट्टियां नहीं होती तो क्या हम आम खाने का आनंद ना उठाएं? वैसे तो आम खाने का आनंद उठाएंगे, आम का नाम सुनते ही हरे पीले रसीले आम आंखों के आगे घूमने लगते हैं। मार्केट जाओ तो हर तरफ आम ही आम दिखते हैं, घर घर में आम के चर्चे, किसने कितने बॉक्स आम के मंगवाया। पर मेरा तो कुछ खास ही अनुभव रहता है, घर का बगीचा है, आम का पेड़ है, सच मानिए एक आम का पेड़ ही कितने सारे आम दे देता है कि आपने जान पहचान के लोगों को खिलाने के बाद भी काफी सारा आम रह जाता है, बिल्कुल शुद्ध बिना रसायन वाला आम। आम के अचार बनाए, आम रस बनाए, मिल्क शेक, आम लस्सी, स्मूदी, सब कुछ, और गर्मियों का आनंद आम के साथ ले रही हूं।
1: बिल्कुल। और यहाँ आम के बगीचे से याद आया कि हमने भी बचपन में आम का बगीचा, बड़े बड़े बाग देखे हैं
0: जी
1: और वहाँ पेड़ से तोड़कर आम खाए हैं और गिरे हुए आम बटोरे हैं। भले ही खाए नहीं लेकिन वो अजीब सा शौक होता था। तो वो जो पिता और दादा के लगाए हुए बाग हैं
0: जी
1: उनको बढ़ाने के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने के लिए आपको नए नए आम के पेड़ भी लगाना चाहिए। वो चाहे कलमी आम हो, लंगड़ा चौसा या
0: जी
1: रत्नागिरी, जो भी आम लगाया जाता है वो सीख कर आपको आम के पेड़ जरूर लगाने चाहिए। और बड़ा आसान होता है, कई कई कुछ आम तो गुठलियों से ही
0: अपने आप उग
1: पनप
0: जाते
1: जाते हैं, उग जाते हैं।
0: हैं।
1: जैसे यहाँ विविध भारती के परिसर में भी
0: हाँ
1: हमने कुछ गुठलियों से आम
0: हम
1: लगाए
0: लगाए
1: हैं
0: हैं
1: और वो बड़ा पेड़ हो गया, तो हमें देखकर बड़ा अच्छा लगता है। एक श्रोता ने लिखा है कि गर्मियों में आम खाने का आनंद, आहा, बस पूछिए मत। एक दो हो तो कुछ बात भी बने, मगर इतनी वैरायटी के आम की पूछो मत। जहाँ गए वहीं खा लिया, यदि नहीं गए तो अपना लंगड़ा आम तो है ही है, फिर दशहरी का क्या कहना। हापुस, वाह वाह, ये तो इधर मिलता ही नहीं है, जबकि दक्षिण का तोता परी, अरे यही तो दक्षिण भारत से इधर सबसे पहले आता है। मगर हापुस, जी हाँ, सब खाया जाता है और जी भर के खाया जाता है, अब रोग भी लगाए तो कैसे भाई, स्वाद का मामला है। और भी बहुत सारा इन्होंने लिखा है, तो इनकी बात से हमें याद आ गया कि गाँव में बाल्टी में आम भिगो दिया जाता था
0: हाँ,
1: और लोग बाल्टी, पूरी की पूरी बाल्टी आम खा
0: और वो
1: लेते थे।
0: छोटे छोटे जो चूसने वाले आम थे ममता
1: हाँ
0: जी, वो
1: हाँ
0: आते
1: और
0: थे।
1: आप तो कह रही कि एक आम दो
0: अब
1: फाक वो
0: ओ ममता जी, वो जमाने में तो
1: तो
0: 10 आम भी खा लो तो कुछ नहीं होता था, पर
1: उसमें,
0: अब एक आम भी खाया तो भारीपन लगता है ना।
1: और उसमें केमिकल नहीं होता था कोई
0: हाँ,
1: भी,
0: केमिकल नहीं
1: कोई
0: होते
1: दवा
0: थे।
1: मिला के नहीं, वो सीधे देसी
0: और
1: आम
0: खेलते
1: मिलता
0: कितने
1: था।
0: थे ममता जी हम उस वक्त, कि आम खाए और फिर खेलने चले गए, दिन भर वो बाल्टी में भिगोए हुए आम, आते जाते 20 भी खा लिए, 25 भी खा लिए तो पता नहीं चलता था। अभी तो एक आम खाते खाते परेशान हो जाते। एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी, कि गर्मियों की चिलचिलाती धूप में जब फ्रिज से निकला हुआ ठंडा ठंडा आम खाने को मिलता है तो मन और तन दोनों तृप्त हो जाते हैं। पारिवारिक जुड़ाव, आम खाने का असली मजा अकेले नहीं बल्कि परिवार के साथ बैठकर हाथ सरो सरो कर आम निकाल कर खाना और रस निकालना, परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। और बहुत सारी किस्में हैं भारत में आम की, जैसे दशहरी, लंगड़ा, चौसा, हाफुस, केसर, हर किसी को पसंद होते हैं। और इसके व्यंजन भी, जैसे आम रस है, मैंगो शेक है, आइसक्रीम और अचार भी थालियों की शान बढ़ाते हैं।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि जब हम गांव जाते थे तो पेड़ से आम टूट के आते थे, तो पहले उसे अनाज की भूसी में रखा जाता था, जब पक जाते थे तो उसे निकाला जाता था और बड़ी बड़ी बाल्टी में मिट्टी के नाद में उसे पानी में डाल दिया जाता था और फिर उसे बाल्टी में ही रखकर खाते थे। तब होड़ लगता था कि किसके सामने गुठलियों की ढेर ज्यादा होती है। इन गर्मियों में आम के चलते हमें बचपन में फोड़े फुंसी आम के रस से चेहरे पर भी कई तरह के दाग निशान हो जाते थे,
0: हाँ, ये होठों के यहाँ पे।
1: और आम का पना भी बनता था।
0: हाँ
1: और साथ में गांव में तो आम के, आम को भून कर आग में उसका रस निकाल कर उससे बाल भी धोए जाते थे।
0: ओहो,
1: तो ये कितने तरह के आम के, कितने तरह के गुण, और आम के अचार की तो बात ही निराली
0: और
1: है।
0: आम की जो रोटी भी बनाते थे, वो आम का
1: हाँ,
0: रस बच गया तो उसको थाली में थोड़ा सा
1: आम
0: घी लगा
1: पापड़।
0: के, आम पापड़ उसमें डाल के, और उसको सूखा दिया, वो साल भर खाते थे।
1: अमावट भी कहा
0: जी
1: जाता है
0: जी
1: जिसे। तो और बोलिए।
0: एक साथी ने लिखा है कि भाई आम जो है सब साथ में बैठकर खाते हैं, और आम बैगन फली खाएं, परिवार के साथ बैठकर खाएं, आम खाने का मज़ा ना अलग होता है। सब बैठकर आम के छिलकों को चूसने लगते हैं, आम की तारीफें कहना और क्या कहना, तुमने उसको ज़्यादा आम दे दिया, मुझे नहीं दिया, इसका तो मज़ा ही कुछ अलग होता था। आज भी आता है, आज आम का जो स्वाद होता है ना, मैं कहूँगी सारे दिन की थकान मिटाने में सक्षम होता है। इसलिए गर्मी में आम नहीं खाया तो क्या खाया, और वो भी परिवार के साथ कर बैठ कर खाया तो उसका आनंद दुगना हो गया।
1: और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन की गर्मी गर्मी की छुट्टियों की बात याद आती है तो सबसे पहले नानी का गांव याद आता है। नानी के गांव के उन देसी आमों की बात ही कुछ और थी। बाजार में मिलने वाले हाइब्रिड या बड़े बड़े आमों में वो स्वाद कहाँ जो उन छोटे रेशेदार आमों में होता था।

0: वजन कैसे कम करना है इस बारे में हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं सुबह 5 बजे विविध भारती पर जागो, सुबह हो गई सुनते प्राणायाम व्यायाम कर लेता हूँ, फिर हमें राह प्यार के तक दोपहर तक बाजार बैंक से जुड़े काम निपटा लेता हूँ, सखी सहनी सुनने के बाद आराम कर लेता हूँ,
1: क्या बात
0: शाम
1: है।
0: को इवनिंग वॉक करने जाता हूँ जिसके कारण दोपहर का खाना भी आसानी से पच जाता है, और जब आपका पेट साफ सुथरा रहेगा तो कोई बीमारी नहीं आएगी, चलने के कारण आपके हाथ पैर में दर्द भी शिकायत नहीं होगी, ये मेरा निजी अनुभव है। वही एक साथी कहते कि मैं और मेरी श्रीमती सुबह 4 बजे योग, शाम 6 बजे 5 किलोमीटर जाकर वापस घर पैदल आते हैं, रात का भोजन सिर्फ दाल और मूंग की दाल और 2 रोटी लेते हैं, दिन में संतुलित आहार दलिया दूध हरी सब्जी पालक लौकी करेला ग्वारफली 2 रोटी पर्याप्त और 1 कटोरी आम का रस, हर 1 घंटे 1 गिलास पानी। क्या बात है।
1: बिल्कुल। दरअसल होता क्या है कि अगर नियमित रूप से व्यायाम करते रहें और जितनी कैलोरी ले रहे हैं
0: जी
1: उतना आप शारीरिक श्रम करते रहें तो वजन बढ़ेगा नहीं। व्यायाम शरीर शरीर की अतिरिक्त कैलोरी जलाने में सहायता करता है, इसलिए रोजाना कम से कम 30 से 45 मिनट तेज चाल से पैदल चलना चाहिए। इसके अलावा योगा, साइकिलिंग, तैराकी और नृत्य भी अच्छे विकल्प हैं।
0: और सबसे जरूरी बात है ममता जी, नींद पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे ना भोजन छोड़ने लगते हैं कि कुछ लोग ये खाना बंद कर देते हैं वो खाना बंद कर देते हैं और उसके बाद में अचानक से खाना शुरू कर देते हैं, उससे भी हमारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही तनाव कम करें, जो लोग तनाव लेते हैं तो उन्हें भी उनका भी वजन बढ़ता है, और मीठे और जंक फूड पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, वे पिज्जा बर्गर चिप्स केक और मिठाइयों में कैलोरी ज्यादा होती है, तो पूरी तरह से छोड़ना जरूरी नहीं लेकिन इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए, और घर के बने भोजन को, पौष्टिक भोजन को हमें प्राथमिकता देना
1: मतलब
0: चाहिए।
1: आम के रस में शक्कर नहीं मिलाना चाहिए, आपने जैसे बताया था।
0: हाँ, आम के रस में शक्कर बिल्कुल नहीं मिलाना है,
1: बिल्कुल
0: उसे
1: मीठी चीज में शक्कर मिला के ना खाएं।
0: अब कुछ लोग चाय में भी इतनी सारी शक्कर डाल के पीते हैं, तो जहां तक हो सके अगर मिठाई खाना है तो चाय फीकी पी सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: वही हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि ये जो वजन घटाने की गति तेज करने के लिए सप्ताह में कम से कम 150 मिनट मध्यम स्तर पर कार्डियो, जैसे तेज चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, मांसपेशियों के निर्माण के लिए कार्डियो के साथ वेट ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करने से भी शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे आराम करते समय कैलोरी बर्न होती है।
1: और साथ में पानी ज़्यादा पीते रहना चाहिए, ये जो गर्मी का मौसम है इसमें तो खास ख्याल रखना चाहिए। और हमें अभी ख्याल रखना चाहिए कि एक गाना सुनवा दें, प्रोग्राम का आखिरी गाना
0: सुन।

0: छोटी बहन फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर और सुबीर सेन की आवाजें थी। और अब सोनाली जी घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि हम कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं यूनुस खान बोल रहा हूँ। स्टूडियो नंबर एक वो स्टूडियो है जहाँ हम अपने फोन इन कार्यक्रमों के लिए आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग करते हैं। आप जानते हैं कि हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 0222867 0288, यानी 2867 0288, और 0224002466 2, यानी 400-2462। सोमवार को दिन में 11 बजे से रिकॉर्डिंग होती है। देश भर के श्रोता फोन करते हैं और कई श्रोता इस बात से निराश होते हैं कि उनका फोन नहीं लगता। दरअसल फोन लाइंस की अपनी सीमाएं हैं ना। देश के कोने कोने से जब हजारों लाखों श्रोता एक साथ कॉल करते हैं तो कुछ खुशनसीब श्रोताओं का कॉल लग जाता है और उनकी हमसे बात हो जाती है। बस ये है कि आप कोशिश करते रहिए। और हाँ, जहाँ से फोन कर रहे हो वहाँ शोर नहीं होना चाहिए। नेटवर्क अच्छा हो तो आपकी रिकॉर्डिंग अच्छे से होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार,
1: मैं वी पूनम नायडू बोल रही हूँ, प्रेम झील धनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से।
0: क्या बात है, कैसी हैं आप?
1: बहुत ही अच्छे हैं, मजेदार गर्मी का मजा लेते हुए हम आपको कॉल कर रहे हैं सर जी।
0: गर्मी का मजा, ये बड़ा तंज है ये।
1: हर मौसम का अपना मजा है सर जी। यदि अपन बारिश में फिर ये गर्मी धूप ढूंढेंगे तो फिर प्राप्त नहीं हो पाएगा ना।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन इस साल की गर्मियां कहर हैं, आपको ऐसा नहीं लगता?
1: नहीं सर जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सभी मौसम के आदी हैं और हमें हर मौसम में अपने उनका मजा लेना बहुत अच्छा लगता है।
0: बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: हाँ, फिल्म का नाम है हम आपके है कौन।
0: अच्छा,
1: उस फिल्म में लता मंगेशकर SP बाल सुब्रमण्यम का गाया हुआ गीत है सर जी, उस गीत को प्ले कीजिएगा
0: जी।
1: गीत के बोल मैं थोड़ा गुनगुना के बता दूं क्या सर जी?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जदा होकर तुम्हें दूर जाना है, कुछ पल की जुदाई फिर लौट आना है। ये वाला गीत सर जी।
0: क्या बात है। अच्छा, आपने बताया कि आपका नाम पूनम नायडू है और आप बस्तर से हैं, तो बस्तर में कब से हैं आप या यहीं पैदा हुई हैं?
1: नहीं, हम यहीं पर पैदा हुए हैं सर जी। जब MP था, मेरे पापा का जॉब यहाँ आंध्रा से यहाँ हो गया तो हम लोग यहीं पे बस गए, मम्मी पापा, और हमारी पैदाइश जो है यहीं पे हुई MP में। बाद में डिवाइड हुआ ना छत्तीसगढ़ और MP।
0: अच्छा, तो आपको तेलुगु आती है?
1: हाँ, तेलुगु पूरा बोलते, घर में तो हमारी मातृभाषा है ना सर जी।
0: तो बताइए तेलुगु में इस बात को कैसे बोलेंगे कि सुनिए अपनी फरमाइश पर ये गाना। अरे बाप रे बाप। नहीं, इसको थोड़ा छोटा बोलिए। वेरवंडी वीरू मी नचिंदी पाटा, सुनिए अपनी पसंद पर ये गाना। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो, फरमाइश।
1: राकेश यादव बोल रहा हूँ, सासनी के टलीगढ़ से।
0: राकेश जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया, ठीक है।
0: क्या काम करते हैं?
1: दुकान करते हैं मोबाइल की। टाइम बहुत सुनता हूँ मैं, काफी दिनों से सुन रहा हूँ। जब हमारे जब ऐसा वो रेडियो था
0: जी,
1: बहुत काफी समय पहले से रेडियो भारती सुन रहे हैं।
0: अच्छा, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है।
1: आशा पिक्चर का ही गाना सुनना चाहते हैं, शीशा हो या दिलो आखिर टूट जाता है।
0: क्या बात है, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो नमस्ते सर, जगदीश चौहान पेंटर मुखर्जी नगर इंदौर से बोल रहा हूँ सर।
0: जी जी जगदीश जी कैसे हैं?
1: बस बढ़िया सर।
0: बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मुझे वो सुमन कल्याणपुर जी और मुकेश जी की आवाज में मेरा प्यार भी तू है, बहार भी तू है, रूही नजारों में।
0: साथी फिल्म का गाना मजरू सुल्तानपुरी के
1: जी जी
0: बोल नौशाद की तर्ज। सुमन जी हमारे बीच
1: जी
0: नहीं
1: सर
0: रही और एक तरह से आप इस गाने के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं।
1: जी सर
0: जी चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: हम अपने एमपी सागर से विक्रम सिंह और चालू राजा।
0: विक्रम सिंह, सागर में कौन से इलाके से बोल रहे?
1: सागर इलाके मैंने तहसील बंडा, हमारा ग्राम छोटा सा गांव पड़ता है क्वायला।
0: बंडा तो समझ में आ गया हो, पर गांव का नाम समझ में नहीं आओ।
1: क्वायला क्वायला।
0: अच्छा बताओ, क्या कर रहे हैं
1: जी
0: आज?
1: सर, अब बैठे हैं सर, छोटी सी किराने की दुकान है भी।
0: अच्छा, और गर्मी अर्मी कैसी पड़ रही?
1: गर्मी तो सर बहुत है अभी, अब तो थोड़ी राहत मिल चुकी है।
0: काय बारिश हो गई का?
1: जी बारिश हो गई 2 दिन तकों में।
0: अच्छा, कितनी बारिश हुई? बहुत सारी हुई या थोड़ी सी हुई?
1: थोड़ी सी भाई है सर, ज्यादा तो नहीं भाई है।
0: हाँ,
1: हाँ
0: अबे तो नौ तपा चल रहे कि खत्म
1: जी
0: हो गए?
1: जी सर, बिल्कुल 3 दिन बाकी हो सर लगा उतरने को।
0: तनक बाकी है, 3 दिन बाद तो फिर
1: जी
0: बारिश आ जाए है, फिर मौज हो जाए है। काय?
1: जी सर,
0: अच्छा कौन सा गाना सुनने हैं जे बताओ।
1: हमको सुना है पगला कहीं का।
0: है पगला कहीं का? को है पगला?
1: पगला कहीं का फिल्म का नाम है पगला कहीं का, और बोल है वो मन्ना डे की आवाज में है, मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा।
0: ए ददारे, किसी ने किसी की भैंस को डंडा मार दो का? का होगा हमें तो बताओ,
1: जी आपसे बात करके
0: मजा आ गया हमसे बात करके, हमें सो ही मजा आ गया आपसे
1: बहुत
0: बात करके।
1: आनंद आया सर।
0: सच्ची हमें भी बहुत ही आनंद आ गया, हमें जितने
1: जी
0: भी अपने श्रोता हरन है ना, सबसे बात करके बहुत ही मजा आता है।
1: आपका बिल्कुल सर, बुंदेलखंड जैसा बटका है बिल्कुल आपका।
0: बुंदेलखंडी आए अपन शुद्ध वाले। हाओ, तो चलो बातों का सिलसिला कर रहे खत्म, और आपको सुना रहे आपकी फरमाइश को जे गाना।
2: क्यों मारा क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों क्यों मेरे

सुन्नत नाचे जब मैं दिल का बजाऊं, मैं दिल का बजाऊं। एक तारा मेरे भैंस को डंडा।

हर घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है। हर घर का ये स्टेशन है और झंडी प्यारी प्यारी है। हम सब तो रेल के डिब्बे हैं, वो अपनी इंजन गाड़ी है, वो गुस्सा जब भी करती है तो बन जाती है, तो बन जाती है। अंगारा मेरी भैंस को डंडा।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो, मैं
0: हाँ जी, कौन?
1: ज्योति प्रजापति बोल रही हूँ, सीतापुर
0: ज्योति जी कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: जिला धार मध्य प्रदेश से। जी
0: अच्छा, बताइए क्या हालचाल है पीतमपुर के?
1: बढ़िया है, गर्मी पड़ रही है। जी
0: गर्मी पड़ रही है, सब जगह गर्मी पड़ रही है और बहुत जोरदार पड़ रही है कि नहीं?
1: जी बहुत
0: अब
1: ज्यादा।
0: हमें ये बताइए कि इस साल गर्मी से बचने के क्या उपाय किए आपने?
1: गर्मी के से बचने के लिए बाहर जाए तो तावील लेके जाएं, छाता लेके जाएं, पानी
0: हाँ,
1: अपने साथ लेके जाएं
0: बहुत सही,
1: और
0: बिल्कुल
1: ज्यादा से ज्यादा धूप में कहीं ना निकले। गाना
0: सही बात है। अच्छा बताइए, आज किस गाने की फरमाइश है?
1: फिल्म का नाम है सूरज, तुमसे इतना प्यार है।
0: क्या बात है, चलिए बातें करते हैं पूरी और आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार।
0: अच्छा बताइए, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: अनिल नाइक बोरोली मुंबई से बात कर रहा हूँ।
0: जी बोलिए बोलिए, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया हूँ।
0: क्या सुनना चाहते हैं आज?
1: पैसा फिल्म का गाना सुनना चाहते। पैसा
0: गाने के बोल बताइए।
1: जिन्हें ना जाए इन लोग पर वो कहाँ है।
0: क्या बात है, साहिर लुधियानवी के बोल, शानदार गाना, SD बर्मन का संगीत। जी कुछ कहना चाहते हैं इस गाने के बारे में?
1: बहुत बढ़िया गाना है
0: जी।
1: कितना भी सुने तो मन भरता नहीं है।
0: बिल्कुल, कितना भी सुने इस गाने को मन नहीं भरता।
1: और मोहम्मद रफी की आवाज में तो क्या गर्व था।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने की फरमाइश के लिए। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी सर, मैं दुलगोविंद मिश्रा, उड़ीसा से, डिस्ट्रिक्ट झारसुगड़ा। हमारा गांव का नाम सुल्हाई है।
0: अच्छा, बताइए कैसे हैं आप?
1: जी सर, बहुत बढ़िया है। एक साल के बाद आपसे बात हो रहा है। मैंने डेली हर सोमवार को हम फोन लगाता है, लेकिन आपका नंबर नहीं लगता है सर, बिजी
0: जी,
1: बिजी बताता है।
0: देश भर के श्रोता फोन कर रहे होते हैं तो इस वजह से मुश्किल होती है फोन लगने में।
1: आप बोलते हैं कि महीना में एक बार लगाने के लिए, मैं तो हर सोमवार को लगाता हूँ, लेकिन मेरा नंबर एक साल हो गया, कभी नहीं लगा सर।
0: तो आज लगा है, ये बहुत खुशी की बात है।
1: बहुत खुशी बात है, मेरे को बहुत खुश लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं तो ये सोच रहा था कि उड़ीसा का नंबर नहीं लगता है, क्या सोच रहा था मैं।
0: नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देश के कोने कोने से लोगों के फोन आते हैं और सबके नंबर बारी बारी से लगते हैं। इतने लोग लगा रहे होते हैं कि फोन लाइन की भी अपनी सीमाएं हैं।
1: जी
0: बताइए क्या हालचाल है आपके इलाके के, उड़ीसा के?
1: जी हाल चाल तो सिर्फ गर्मी के लिए तो बहुत, हर आदमी परेशान है, बहुत गर्मी हो रहा है। ये 3 दिन से थोड़ा सा, मैंने बारिश हो रहा था, थोड़ा सा राहत मिला है।
0: जी, बारिश होने से वाकई राहत मिल गई है। देश के अलग अलग हिस्सों से बारिश की खबरें हमें मिल रही हैं।
1: जी जी
0: कौन कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं विविध भारती के आपको?
1: जी और हमको तो ज्यादा हेलो फरमाइश, और जो आप जो सुनाते हैं, जो मैंने संदेश टू सोल्जर, वो वाला
0: हाँ
1: फनकार जो सुनाते हैं वो वाला, और अभी जो नया एक तो जो शुरुआत किए हैं, 1 बजे जो सुनता हूँ वो अच्छा लगता है।
0: अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया इन कार्यक्रमों को पसंद करने के लिए। बताइए कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: जी दोस्ती फिल्म का राही मनवा, दुख क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना है, सुनते हैं ये गाना।
2: दुख हो या सुख, जब सदा संग रहे ना को, फिर दुख को अपनाइए।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश यूनिस साहब, कैसे हैं आप?
0: जी। मैं अच्छा हूँ।
1: मैं तो आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि पूछे मैं नहीं। आप तो मैं कितने आपके इंटरव्यू सुने, कितने आपके शब्दों में बोले तो मजा आ गया। क्या बात है!
0: मजा आ गया। क्या बात है, कौन बोल रही हैं आप?
1: मैं आशा बोल रही हूँ बेंगलुरु से, और मैं आपकी बड़ी फैन हूँ। आपके बड़े मतलब सारे प्रोग्राम मैं सुनती हूँ, और मैं 3 हफ्ते 5 हफ्ते से ट्राई कर रही हूँ आपका। जब सुनती हूँ लोग बात कर रहे, बड़ी जलन होती थी।
0: अरे
1: हेलो, आज
0: बाप
1: मैं
0: रे,
1: भी बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है। देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना?
1: यस। पहले बात तो मैं कहना चाहूंगी कि आपके पुराने प्रोग्राम में मैंने समझा, आपने एक राइटर से बात की थी, तब वो राइटर ने आपसे कहा था, आपसे या किसी और से, यूनिस खान से बात करने से ऐसा लगता है जैसे मैं किसी अपने देवर से बात करूँ।
0: ओहो, क्या
1: वो
0: बात
1: राइटर ने ऐसे बोला था कि मेरे मतलब जहन में है,
0: है।
1: वैसे
0: जी
1: ही मैं, आप भी मेरे जहन में हो।
0: जी
1: आप लोगों से तो मेरा ऐसा रिश्ता है कि पूछो मत। सारा दिन मैं सुनती रहती हूँ, सारे प्रोग्राम सुनती रहती हूँ,
0: जी
1: लोग मेरे से तंग आ गए कितना बजाओगी करके।
0: अच्छा, विविध
1: हाँ
0: भारती का साथ इसी तरह से बना रहा है आपके साथ, है ना?
1: हाँ मैं बस जिंदगी भर अंत तक सुनती रहूँ, ये उनका यही लक्ष्य है बस।
0: क्या बात है।

0: विविध भारती शुरू हो जाता है न्यूज से लेके, और जब तक हो सके तब, और रात को भी जब भी टाइम मिले तब।
1: अच्छा, क्या
0: हाँ
1: बात है,
0: जी।
1: क्या बात है। तो आज कौन सा गाना चुन रखा है आपने?
0: मैंने राम तेरी गंगा मैली का, सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए, तुम्हारे पथ पर जो भी आए, उन्होंने ऐसे नियम बनाए के प्राण जाए पर वचन न जाए।
1: क्या बात है भाई, इतने सारे बोल भी याद हैं आपको।
0: अरे अरे, मेरे को तो कुछ कुछ गानों के पूरे पूरे बोले आते, पूरा गाना सुना सकती
1: वाह वाह वाह,
0: हूँ।
1: ये जानकर बहुत अच्छा लगा। मतलब वो जो
0: और
1: आप
0: सब
1: कहती है
0: कुछ।
1: ना कि
0: हाँ
1: मैं
0: जी,
1: हमेशा कहता हूँ, क्या बात है।
0: क्या बात है, थैंक यू।
1: जी
0: बचपन
1: शुक्रिया।
0: से आप बिलीव नहीं करो, आई एम 57 नाउ, और मैं कम से कम 5-6 साल से विविध भारती सुन रही हूँ।
1: ये लंबा सफर तय किया आपने विविध
0: हाँ
1: भारती
0: बस
1: सुनते हुए।
0: बस सब सब आप लोग पुराने गाने सब, मतलब जो चीजें कहीं नहीं बचती वो विविध भारती पे बचती।
1: क्या बात है जी, शुक्रिया, ये जान के बहुत अच्छा लगा।
0: मैं आपसे बात करके गदगद हो गई हूँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया मेरा आपसे बात करके, आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
1: शुक्रिया, हम ये दुआ करेंगे कि आगे भी आपका फोन लगे और बातें हों। बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर बातों का सिलसिला यहीं करते हैं खत्म, और आपको सुनवाते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ भैया जी, नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार
1: जी। हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। एकदम
0: जी जी बताइए,
1: बढ़िया है भैया।
0: क्या करते हैं आप?
1: हमारा मूल काम खेती बाड़ी का है भैया।
0: अच्छा।
1: हाँ जी, और अभी तो फिलहाल गर्मी में आराम करना ज्यादा होता है, और बरसात जैसे लगेगा धान की बुआई करेंगे।
0: और छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा, मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ के इलाके में गर्मियों के मौसम में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत लुभाती हैं, जैसे कि आम?
1: आम और अमरूद तो इधर बहुत मिलता है भैया। मतलब आम तो बाहर से ही आते हैं,
0: जी जी जी बिल्कुल।
1: लेकिन जो अमरूद वगैरह होते हैं वो प्रायः घर में अमरूद है, पपीता हो गया, बेर का पेड़ हो गया, ये मतलब बहुतायत सबके घर में मिल जाते हैं।
0: सही है, सही है। अच्छा बताइए कि इस साल क्या गर्मियां बीते कई सालों की तुलना में ज्यादा पड़ी?
1: बिल्कुल ज्यादा पड़ा है भैया, 44 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया है, और कई इसके कारण होंगे भैया। सबसे ज्यादा तो यही अपन जो देखते हैं, पर्यावरण में हस्तक्षेप करना, और हम मानव समाज के लिए बेहद जरूरी है कि हम प्रकृति से निकटतम प्रेम करें और वो सामंजस्य बना के रखें।
0: बहुत प्यारी बात कही आपने। अब मुझे ये बताइए कौन से गाने की फरमाइश है?
1: फिल्म है राजा और रंग के, गीत के बोल है ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, ये प्यारा सा गीत सुनना है।
0: बहुत ही बढ़िया, सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से। हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 2867-0288, दूसरा है 400-24662। अंग्रेजी में बता दें 2867-0288 और 4002-4662। मुंबई का एसटीडी कोड 022 है। रिकॉर्डिंग सोमवार को दिन में 11 बजे से होती है। जिन श्रोताओं के कॉल्स आज शामिल हो गए वो कृपया दो महीने तक हमें फोन ना करें ताकि नए श्रोताओं को हम मौका दे सकें। और हाँ, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए जब आप बातें करें तो अपने इलाके के बारे में कुछ बताएं, कुछ दिलचस्प बातें करें, कुछ गाने सुनाएं, तो इस कार्यक्रम को हम अच्छी तरह से सजा सकते हैं। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले और इस कार्यक्रम को विविध भारती की ओर से प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश। विविध भारती की फोन इन सर्विस के इस प्रोग्राम का पिटारा आज के लिए हुआ पूरा। पिटारा हर रोज पेश होता है, रोजाना सुनिए पिटारा।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। माना कि बहुत हैं आप हसीन, दिल को ठुकराया करते हैं, लेकिन हम भी दिलवाले दुश्मन को गले लगाया करते हैं। सामिन, हम में से बहुत लोग अपना जलवा बरकरार रखते हैं, और रखना भी चाहिए। इस जलवे को बरकरार रखिए बरखुरदार। फना निजामी कानपुरी फरमाते हैं, वो आंख क्या जो आरिज़ो रुख पर ठहर न जाए, वो आंख क्या जो आरिज़ो रुख पर ठहर न जाए, वो जलवा क्या जो दीदा हो दिल में उतर न जाए, वो जलवा क्या जो दीदा हो दिल में उतर न जाए।

शायरी में जलवा शब्द ज्यादातर हुस्न और इश्क से जुड़ा है। हालांकि शब्द अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किए जाते हैं और अर्थ भी जुदा होते हैं, लेकिन हुस्न के जलवे तो मशहूर हैं। अमीर मिनाई फरमाते हैं, इलाही क्या कयामत है वो जब लेते हैं अंगड़ाई, इलाही क्या कयामत है वो जब लेते हैं अंगड़ाई, मेरे जख्मों के सब टांके अचानक टूट जाते हैं।

हुस्न का जलवा तो अच्छे अच्छों को घायल कर देता है। खुदा जाने आज उसका कैसा जलवा होगा। हुस्न होगा, नजाकत होगा और जमा होगा। वहीं जलील मानिकपुरी कहते हैं, मेरी आंखों से मेरी यार का जलवा देखो, चश्म मजनू से बाहरे रुख ए लैला देखो। मेरी आंखों से मेरे यार का जलवा देखो, चश्म मजनू से बाहरे रुख ए लैला देखो।

इस अंतराल के बाद आप सभी का स्वागत है। हम न समझे तेरी नजरों का तकाजा क्या है, कभी पर्दा कभी जलवा ये तमाशा क्या है। सामिन, इश्क करने वालों के लिए अपनी महबूबा के हुस्न का जलवा बिल्कुल दवा जैसा होता है। तभी तो अकबर इलाहाबादी कहते हैं कि किस किस अदा से तूने जलवा दिखा के मारा, किस किस अदा से तूने जलवा दिखा के मारा, आजाद हो चुके थे तूने बंधा बना के मारा।

कभी कभी प्रेमी जितने बेकरार होते हैं अपने महबूब का जलवा देखने के लिए, उतना ही जलवा दिखाने वाला भी बेताब होता है। हाँ, तभी तो ज़ौक साहब फरमाते हैं, इश्क का ज़ौक के नज़ारा मुफ्त में बदनाम है, इश्क का ज़ौक के नज़ारा मुफ्त में बदनाम है, हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए।

जलवा था, जलवा है, जलवा रहेगा, लेकिन एक दिलजला आशिक खुदा से यही कहता है, कोई तो जलवा खुदा के वास्ते दीदार के काबिल दिखाई दे, कोई तो जलवा खुदा के वास्ते दीदार के काबिल दिखाई दे, संग दिल तो मिल चुके हैं हजारों, कोई अहले दिल तो दिखाई दे, कोई अहले दिल तो

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने नए

सभी सुनने वालों को प्रीति मिश्रा का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं यादों की बारात फिल्म से। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आर डी बर्मन, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की।

अभी आपने मोहम्मद रफी और आशा भोसले को फिल्म यादों की बारात में सुना। अब सुनिए रफाकत अली खां को फिल्म आवारापन में। तर्ज बनाई है प्रीतम ने, बोल लिखे हैं सैयद कादरी ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। अब आपको सुनवा रहे हैं RD बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, स्वर किशोर कुमार और लता मंगेशकर के फिल्म का नाम हीरा पन्ना।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
3: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
2: विचारा
4: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
3: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
4: पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
3: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
5: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
4: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
3: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
4: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
6: जहर ये नाम है फिल्म का जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। सैयद कादरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है अनु मलिक ने, आवाज श्रेया घोषाल की।

ये थी श्रेया घोषाल फिल्म जहर में। अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी के युगल स्वर में तीसरी मंजिल फिल्म का गीत। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार आर डी बर्मन।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी को तीसरी मंजिल फिल्म में सुना। तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष गाने आप सुनेंगे समाचारों के बाद यानी 6:05 से। 6 बजने को है, अभी सुनते हैं दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय

0: ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: श्री टंडन ने कहा कि दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची थी। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसक के युग का अंत किया है और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एकजुट हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार 2 गुना करने को मंजूरी दे दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये 2 गुने से भी अधिक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत केवल एक नए वाहन की शुरुआत नहीं है बल्कि भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी। इससे देश को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की है और गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता के मामले में विश्व के शीर्ष उत्पादकों में से एक बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इस योजना की सफलता का मुख्य कारण यह है कि देश के नागरिकों ने यह समझ लिया है कि वे अपनी छतों पर बिजली खुद पैदा कर सकते हैं और बिजली बिल 0 हो सकता है। इसके अलावा श्री जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक में सरकारी भवनों के छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की भी समीक्षा की। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी एरोन ताई और कैंग खाई रिंग को कड़े मुकाबले में हराया, लेकिन पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी कड़े संघर्ष के बावजूद पराजित हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: तराने नए पुराने कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए विवाह फिल्म का गीत, आवाजें उदित नारायण और श्रेया घोषाल की, गीत संगीत रविंद्र जैन का।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: लीजिए सुनिए हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत निर्देशन में गुलजार का लिखा गीत आवाज।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिल धड़कने दो। अब सुनिए इस फिल्म का गीत। धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने, गीतकार हैं जावेद अख्तर, आवाजें यशिता शर्मा, शंकर महादेवन और मनीष कुमार की।

ये है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश अरिजीत सिंह की आवाज में, गीतकार इरशाद कामिल, संगीतकार ए आर रहमान, फिल्म का नाम अतरंगी रे।

0: अरिजीत सिंह के गाए इस गीत के साथ ही तराने नए पुराने कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है।
1: तराने नए

अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:35 पर भजनों पर आधारित कार्यक्रम होगा संध्या रंजन। 7 बजे फौजी भाई सुनेंगे जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिले कार्यक्रम में निर्देशक इकबाल अली से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग प्रसारित किया जाएगा। रात 8 बजे हवा महल में राजकुमार दाग की लिखी झलकी सुनिएगा।

रूटीन केस। रात 9:30 पर आज के वनकार कार्यक्रम अभिनेत्री नूतन पर केंद्रित होगा। 10 छाया गीत और रात 10:30 पर कार्यक्रम ढलती जाए रात प्रसारित किया जाएगा। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल के मुख्य कार्यक्रमों पर।

जागो सुबह हो गई। ये कार्यक्रम आप सुनते हैं रोजाना सुबह 5 बजे। संगीत सरिता, ये कार्यक्रम भी आप रोजाना सुनते हैं सुबह और शाम 6:45 पर। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सिने जग संगीत में तबले का दौर। कलाकार होंगे तबला वादक रविंद्र खासनीस। कल इसकी 5वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। पुराने फिल्मी गाने आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुबह 7 बजे। हम है राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुनिएगा सुबह 7:30 पर।

चित्रलोक कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे सुबह 8:30 पर और रात 8:15 पर। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनते हैं सुबह 9:30 पर और रात 9:30 पर। कल ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री सोनम कपूर पर। 11 बजे लेकर आएंगे कार्यक्रम रंग तरंग।

यादों की महफिल सजेगी दिन में 12:05 पर। आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर आएंगे दिन में 1 बजे। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुनते हैं दोपहर 2:30 पर। दिन में 3 बजे बहने सुनेंगी हेलो सहेली कार्यक्रम। शाम 4 बजे पिटारा में नेहा शर्मा से गीतों भरी कहानी सुनिएगा नजरिया। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम आप रोजाना सुनते हैं शाम 5:30 पर। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत गुलदस्ता कार्यक्रम होगा। रात 8 बजे हवा महल में लेखक और निर्देशक गिरेंद्र प्रसाद की लिखी झलकी सुनवाई जाएगी जरा सी आंख लग गई। रात 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत और रात 10:30 पर कार्यक्रम ढलती जाए रात।

अभी आप आज के शेष और कल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। अब सुनिए कार्यक्रम संध्या रंजन।

मंगेशकर को सुना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था, बोल पंडित नरेंद्र शर्मा के। अब सुनिए अंकुश फिल्म का गीत, तर्ज बनाई है कुलदीप सिंह ने, बोल लिखे हैं अभिलाष ने, आवाजें पुष्पा पगधरे और सुषमा श्रेष्ठ की।

श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। प्रस्तुत है इस श्रृंखला की चौथी

0: कथक नृत्य पेश किया जाता है, तो फिल्मों में भी उसका आना बिल्कुल स्वाभाविक था। और उसी तरह वो फिल्मों में कई गीतों में नृत्य का आविष्कार लिया गया है
1: जी,
0: जो मतलब नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, कथक नृत्य
1: जी,
0: उसका आविष्कार फिल्मों में शुरुआती दौर में बहुत अच्छा था। तबला और नृत्य का वैसे तो बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि तबले के बोल और घुंघरू के बोल बिल्कुल एक से होने के वजह से तबला और उसके साथ में वो नृत्य, तो वो सारे परण वगैरह जो चलते हैं फिल्मों में जो लिए गए हैं
1: जी,
0: तो वो काफ़ी हद तक मतलब लोगों ने पसंद किया उसको। और वो जो हमारे भारत की उज्जवल शैली है नृत्य की
1: जी,
0: तो उसका आविष्कार तो लोगों ने हमेशा देखना पसंद किया है उसको। एक उदाहरण के तौर पर जो कथक के जो प्रोग्राम होते हैं
1: जी,
0: जिसमें कार्यक्रम में तो कथक का तो पूरा मतलब जैसे तबला सोलो, तो तबला सोलो में जैसे पूरा हम तबले का एक किसी एक ताल में
1: जी,
0: उसका पेशकार, कायदा, रेला, परण वगैरह सब सब कुछ उसमें होता है। तो वैसे ही नृत्य का जब स्वतंत्र कार्यक्रम होता है तो उसमें सब आता है, लेकिन फिल्मों में उसमें से कुछ हिस्सा दिखाया जाता है और जो छोटा सा होता है लेकिन हमेशा के लिए याद रहे इस तरह का वो होता है
1: जी, जी, जी।
0: बहुत उच्च कोटि का आविष्कार जिसे हम लोग कह सकते हैं।
1: और बहुत तो, से नृत्य गीत हैं फिल्मों में।
0: बिल्कुल है,
1: जो अनायास ही याद आ रहा है वो मधुबन
0: में
1: राधिका नाचे रे, ये जो कोहिनूर फिल्म का गीत है
0: जी हाँ, इसमें तो तराना भी लिया गया है
1: जी जी,
0: तो तराना भी नृत्य में भी करते हैं तराना।
1: तो ये गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं
0: जी।

कोहिनूर फिल्म का ये गीत हमने सुना मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, और संगीतकार नौशाद साहब ने कितनी खूबसूरती से तीन ताल का इसमें प्रयोग किया है। रविंद्र जी, फिल्म संगीत में तबले का दौर, इस विषय

0: पर हम बात कर रहे हैं और तबले की बात हो और मूर्धन्य कलाकार पंडित सामता प्रसाद जी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
1: बिल्कुल, पंडित सामता प्रसाद जी ने फिल्मों में जो योगदान दिया है वो हमेशा के लिए लोग उसको याद करते रहेंगे। आरडी बर्मन जो है
0: जी,
1: संगीतकार आरडी बर्मन, सामता प्रसाद जी को अपने गुरु स्थान पर मानते थे
0: जी।
1: मेरे ख्याल से पंडित सामता प्रसाद जी का जो गाना है नाचे मन मोरा मगन तिगदा दिगी दिगी, सचिन दा का संगीत दिया हुआ ये जी, गीत जी। जो है तो ये गाना जो है वो अपने आप में बेमिसाल है, क्योंकि उसमें जो है ना वो पंडित सामता प्रसाद जी की खासियत है कि वो तिगदा दिगी दिगी तो वो दिगी दिगी बजा के धिन ये उन्होंने उसमें रेला का भी जो आविष्कार किया है।
0: सचिन देव बर्मन की जिस संगीत रचना की बात हो रही है उसकी एक झलक सुनकर आगे बढ़ते हैं रविंद्र जी।
1: बिल्कुल।

0: किनारा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं, जो राग भैरवी पर आधारित है और इसमें अद्धा तीन ताल का उपयोग हुआ है। संगीतकार राहुल देव बर्मन। इसी के साथ फिल्म संगीत में तबले का दौर श्रृंखला की ये कड़ी अब संपन्न हो रही है।
1: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। अभी आपने सुनी इस श्रृंखला की चौथी कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीष

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को प्रीति मिश्रा का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं नया दौर फिल्म के गीत से, आवाज मोहम्मद रफी और बलबीर की, संगीत ओपी नैयर का, बोल साहिर लुधियानवी के।

0: अब सुनिए सेना पर आधारित गीत, स्वर गीत संगीत कैलाश खेर का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है।

0: स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: अभी आपने सेना पर आधारित गीत सुना, स्वर गीत संगीत कैलाश खेर का था। अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में कभी कभी फिल्म का गीत। साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है खयाम ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: लीजिए सुनिए परदेश फिल्म का गीत कुमार सानू की आवाज में। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने। फिल्म का नाम है परदेश।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: अभी आपने शक्ति फिल्म में लता मंगेशकर को सुना। आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। अब समय है एक छोटे से अंतराल का और वापस आते हैं अपने कार्यक्रम जयमाला में।

जयमाला कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी फौजी साथियों का स्वागत है। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म इम्तिहान में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लीजिए सुनिए सिलसिला फिल्म में लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों को। हसन कमल ने इस गीत को लिखा है और संगीत से सजाया है शिव हरि ने।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात कर ऊर्जा, व्यापार और निवेश पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कल गुजरात और दमन दौरे पर 21,500 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विश्व सिकल सेल दिवस के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग को जनजातीय क्षेत्रों में उन्मूलन गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए और इंदौर में 6 जून को भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम का होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से मुलाकात की। बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना रहा, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक भंडार मौजूद है। इसके अलावा खनन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग में भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन क्षेत्र का दौरा करेंगे। सूरत में वे सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और 200 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा श्री मोदी शाम को दमन में करीब 3,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिनमें स्वास्थ्य, पर्यटन और हवाई संपर्क से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण विमान ईंधन ATF की कीमतों में आई असामान्य बढ़ोतरी का बोझ यात्रियों पर न पड़े, इसके लिए केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता देने का फैसला किया है। वहीं पेट्रोलियम मंत्रालय ने भी आश्वस्त किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार मौजूद है और कालाबाजारी रोकने के लिए निगरानी जारी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी।
1: I will request all the citizens.
2: मैं सभी नागरिकों से अपील करती हूं कि वे ऊर्जा की बचत करें और उसका सोच समझकर उपयोग करें। सरकार पेट्रोल, डीजल और LPG के पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, इसलिए घबराहट में इनकी जरूरत से अधिक खरीदारी या बुकिंग ना करें। साथ ही लोगों से अनुरोध है कि वे PNG, इंडक्शन स्टोव और इलेक्ट्रिक कुकटॉप जैसे वैकल्पिक ईंधनों और साधनों का भी उपयोग करें।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत किया और इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने वाली संस्था के रूप में कार्य कर रही है। सत्र में भाग लेने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि सभी नेता एक मजबूत और अधिक समृद्ध पूर्वोत्तर के निर्माण के अपने संकल्प में एकजुट हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज स्वास्थ्य और आयुष विभाग को 19 जून के विश्व सिकलसेल दिवस के मद्देनजर उन्मूलन गतिविधियां तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में स्क्रीनिंग, दवा वितरण और जागरूकता कार्यक्रमों की विशेष निगरानी जरूरी है। राज्यपाल ने प्रत्येक मंगलवार को आंगनवाड़ी केंद्रों में माताओं और बच्चों को सिकल सेल के कारण, लक्षण और उपचार की जानकारी देने के लिए भी कहा है। इंदौर में 6 जून को भारत लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन व्यापार एवं निवेश फोरम 2026 का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में होने वाले इस फोरम में लैटिन अमेरिका देशों के 15 देशों के राजदूत और 350 से अधिक उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे। फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और IT क्षेत्र में निवेश और व्यापार के अवसरों पर भी चर्चा होगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल कर लिया है। कल उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक पहली बार EV से यात्रा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन बचत के संदेश को अमल में लाते हुए वे अब भोपाल में नियमित रूप से इलेक्ट्रिक वाहन से ही चलेंगे। उन्होंने कहा कि EV से वायु प्रदूषण नहीं होता, रखरखाव सस्ता है और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ भविष्य की दिशा में एक अहम कदम है। केंद्र सरकार ने प्रदेश के निमाड़ अंचल को बड़ी सौगात देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 347B के उन्नयन और चौड़ीकरण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 4,415 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे बैतूल, खंडवा, खरगोन और बड़वानी जिलों में सड़क की स्थिति सुधरेगी। खरगोन के लिए 16 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड बाईपास भी बनेगा। जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ने स्थानांतरण नीति 2026-27 के तहत स्वैच्छिक स्थानांतरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इच्छुक कर्मचारी 3 से 8 जून तक EHRMS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और अधिकतम 15 कार्यालयों का चयन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने के मौके पर बैतूल जिले की शुभ्रा खाड़े ने अपनी प्रेरक कहानी साझा की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि
4: मैं 7 साल से आजीविका मिशन में जुड़ी हूँ। वर्तमान में मैं बैंक सखी का कार्य कर रही हूँ। फिर मेरी आर्थिक स्थिति खराब थी, अब आजीविका मिशन में जुड़ने के कारण मैंने जो जनरल स्टोर की दुकान खोली है उससे मुझे अच्छी इनकम हो जाती है, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक है।
0: मध्य प्रदेश में पहली बार नगरीय निकायों और पंचायतों की मतदाता सूची पुनरीक्षण में मतदाताओं को नाम जोड़ने, कटवाने और संशोधन के लिए ऑनलाइन सुविधा दी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक 8,317 आवेदकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। अंतिम फोटोयुक्त मतदाता सूची 18 जून को प्रकाशित की जाएगी। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के पंजीयन पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया है। 3,800 करोड़ रुपये का यह पूरा खर्च अब राज्य सरकार उठाएगी। प्रदेश में अब तक 68 लाख से अधिक अधिकार अभिलेख तैयार किए जा चुके हैं और लगभग 98% ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। उज्जैन की 12वीं कक्षा की छात्रा दीक्षा कुशवाहा ने मात्र 22 मिनट में चने की दाल के 12 दानों पर 12 ज्योतिर्लिंगों की पेंटिंग बनाकर वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पर अपना नाम दर्ज कराया है। 8 मिलीमीटर आकार की इन दालों पर सूक्ष्म कला का यह कमाल दीक्षा ने महज 1 साल की मेहनत से हासिल किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इस उपलब्धि पर दीक्षा को बधाई दी है। भोपाल के रविन्द्र भवन में आज शाम मशहूर शायर और पद्मश्री प्राप्त बशीर बद्र को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के इस याद बशीर बद्र कार्यक्रम में कई बड़े शायर, गायक और फिल्म निर्माता बशीर बद्र की विरासत पर अपने विचार रख रहे हैं। थोड़ी देर में अखिल भारतीय मुशायरा शुरू होगा जिसमें देशभर के नामचीन शायर अपना कलाम पेश करेंगे। प्री मानसून बारिश और आंधी तूफान को देखते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने सभी मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। कंपनी के प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में उपभोक्ता कॉल सेंटर नंबर 1912 पर संपर्क कर सकते हैं। कंपनी ने उपभोक्ताओं को भी सावधान किया है कि मानसून में हवा में नमी के कारण करंट लगने का खतरा बढ़ जाता है और घर में मजबूत अर्थिंग का होना जरूरी है। अब रुक करते हैं मौसम की खबर का। प्रदेश में मानसून से पहले ही प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। बीते 24 घंटों में 29 जिलों में आंधी बारिश और कुछ जगह ओले भी गिरे हैं। श्योपुर में सबसे अधिक 1.25 इंच बारिश दर्ज की गई और कई इलाकों में जलभराव हो गया। राजधानी भोपाल में रात भर बारिश का दौर चला है और सुबह भी बूंदाबांदी होती रही। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के 20 जून के बाद प्रदेश में दाखिल होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने आज नीमच के ग्राम खेमला में निर्माणाधीन ग्रीनको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कार्यों का निरीक्षण किया। बैतूल में विद्युत संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए संपर्क अभियान के तहत खंडारा में शिविर का आयोजन किया जाएगा। खंडवा शासकीय ITI में आयोजित युवा संगम रोजगार मेले में 265 युवाओं का विभिन्न कंपनियों के लिए चयन किया गया। नर्मदापुरम जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत पचमढ़ी के छावनी झील पर सफाई और जल संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी के द्वारा आज किरण बाल गृह कटनी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगरमालवा जिले के सुसनेर में 5 से 21 जून तक विशेष अभियान चलाया जाएगा और अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम के तहत राजगढ़ के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में BCom इन बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड इंश्योरेंस में ऑनलाइन प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में।
1: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।
0: आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फिल्म निर्देशक इकबाल अली से। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
1: दिल के लिए दिल का कोई पैगाम तो बता।
0: आज सुनिए पहला भाग।
1: कल के लिए अपना कोई प्रोग्राम तो बता।
0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ इकबाल अली साहब हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अलग अलग तरह के काम किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इनसे दिलचस्प बातचीत का सिलसिला। बहुत बहुत स्वागत इकबाल अली साहब।
2: शुक्रिया, धन्यवाद।
0: आपका ताल्लुक तो फाइटर्स की फैमिली से रहा है ना?
2: जी जी।
0: जरा मुझे इस बारे में बताइए।
2: देखिए, ये उन दिनों की बात है, 80 और 90 के दशक की, जब ही मशहूर फाइट मास्टर अजीम भाई का नाम तो सुना होगा आपने।
0: बिल्कुल,
2: बहुत फेमस थे। उनके सहायक थे मेरे अंकल मंसूर अली, उस दौर के काफी चर्चित फाइटर थे और बहुत दिलेर थे। और उस दौर में सब ज्यादातर घोड़सवारी वगैरह और इसके ऊपर फिल्में ज्यादा बनती थी, तो वो बहुत अच्छे राइटर थे, मतलब बहुत अच्छे घोड़सवार थे।
0: बिल्कुल, और ये बहुत मुश्किल काम है घोड़सवारी फिल्मों में शूटिंग के दौरान।

0: जरिया नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, एंट्री नहीं थी वहाँ जाने की। तो जब सेठी साहब से मिले तो बहुत मतलब वो इमोशनल हो गए। तो सेठी साहब ने उनसे कहा कि भाई आप तो बहुत अच्छे घुड़सवार हो, फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते हो। तो उन्होंने कहा सर अगर आपकी सब कृपा हो जाए तो बिल्कुल ये सब करूंगा। सेठी साहब के वजह से ही इंडस्ट्री में उनकी एंट्री हुई हकीकत में
1: जी
0: देखा जाए तो। उसके बाद में उन्होंने अजीम भाई के साथ में काम किया, क्योंकि अजीम भाई घोड़े के स्पेशल थे, मतलब घोड़े वगैरह का जो सीन होता था, डाकू वगैरह की जो फिल्में होती थी पहले, तो वही सब चलता था ना। तो उसके जो स्पेशलिस्ट फाइट मास्टर थे वो अजीम खान थे। अब अजीम भाई ने इनको अपना सहायक रख लिया और ये स्टंट बहुत करते थे, बहुत दिलेर थे सब। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको बताना चाहता हूँ,
1: जरूर
0: मेरे खुद की नजरों के सामने का वाकया है।
1: जी
0: मेरे अंकल के साथ, मंसूर अली के साथ, अक्सर शूटिंगों पे जाया आया करता था। मुझे बड़ा शौक था तो मैं जाता था। तो ये घोड़बंदर की बात है, यहीं मुंबई में घोड़बंदर है। घोड़बंदर में फिल्म गंगा की सौगंध, सुल्तान अहमद साहब उसको डायरेक्ट कर रहे थे। तो गंगा की सौगंध का क्लाइमेक्स शूट हो रहा था, अमित जी भी थे और स्वर्गीय अमजद खान साहब। तो साहब एक सीन था चार्टर प्लेन वाला, यानी अमजद खान साहब जो है चार्टर प्लेन में रहते हैं और अमित जी जो है नीचे घोड़ा दौड़ा रहे हैं। और बहुत ही करीबी मामला उस फिल्म में आप देखिएगा, बहुत ही
1: जी
0: करीबी
1: जी जी
0: मामला
1: जी
0: है। अब उस टाइम तो साहब इतनी हिफाजत वगैरह होती नहीं थी जैसा आजकल है कि आदमी मतलब अगर कुछ स्टैंड वगैरह करता है तो कुछ सिक्योरिटी मिल जाती है। उस टाइम तो इतना कुछ था नहीं, तो ये तो बिंदास करते थे अपने कॉन्फिडेंस से, अपने भरोसे से और दिलेरी से। तो साहब इन्होंने इतना खतरनाक वो सीन किया, अमजद खान साहब इतना इम्प्रेस हुए, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे नज़रों की बात है। अमजद खान साहब ने इनको गले से लगा लिया, गले से लगा के साहब इनको उस टाइम अमजद खान साहब ने 1,000 रुपया इनको इनाम दिया।
1: जी
0: देखिए सवाल पैसे का नहीं है, सवाल बख्शीश का है। उन्होंने बख्शीश दी और उन्होंने कहा कि वाकई में आप बहुत अच्छे घुड़सवार हैं, मतलब उन्होंने काफ़ी तारीफ की। तो वहां से फिर मेरा जो था मतलब रुझान और बढ़ गया। पहले तो मैं सोचता था मैं करूँ क्या, मुझे इस फील्ड में तो आना है लेकिन मैं एक्टिंग में आऊँ या मैं एक्शन में आऊँ या मैं किस में आऊँ, मतलब मैं थोड़ा कन्फ्यूज था। लेकिन जब मैं जाने आने लगा हमारे अंकल के साथ, तो मैं देखता था कि जो निर्देशक है, जो डायरेक्टर है, वही फिल्म का मेन होता है। वो कट बोलता है तो कट हो जाता है, वो रिटेक बोलता है तो रिटेक हो जाता है। उसके इशारों के ऊपर, उसके उंगलियों के ऊपर और उसके बोलचाल के ऊपर आर्टिस्ट जो है अपना काम करता है,
1: यस
0: पूरा डिपार्टमेंट उसके इशारों पर नाचता है। तो मैंने बोला नहीं, ये काम सही है, ये करना चाहिए। तो मैं वहां पर आकर्षित हुआ, उस तरफ मैंने अपना फोकस किया। बस ये देखिए कि कहते हैं ना कि जो ईश्वर को, अल्लाह को जो मंजूर है वही होता है। एक वाकया ऐसा हो गया,
1: जी
0: एक फिल्म बन रही थी ब्रिज सदाना साहब की। ब्रिज सदाना साहब काफी बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर रह चुके हैं,
1: बिल्कुल
0: विक्टोरिया लंबर 203 और बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं उन्होंने, कमल सदाना के पिताजी। ब्रिज सदाना साहब जो है वो एक फिल्म बना रहे थे, बॉम्बे 405 माइल्स फिल्म का नाम था।
1: मशहूर नाम है ये
0: बहुत
1: फिल्म
0: हाँ,
1: का।
0: फिल्म अच्छी भी अच्छी चली भी थी वो। उस फिल्म के अंदर विनोद खन्ना साहब थे, शत्रुघ्न सिन्हा साहब थे, अमजद खान साहब, प्राण साहब, जीना तमान वगैरह उसमें थी। तो उस फिल्म का क्लाइमेक्स जो है वो महाकाली, यहाँ पर मुंबई के अंदर महाकाली गुफा है, वहां पर उसका क्लाइमेक्स फिल्माया जा रहा था। उस टाइम मैं नहीं था वहां पर मौजूद, वरना मैं हमेशा अपने अंकल के सेट पे, जब मुंबई में शूटिंग होती थी तो मैं हमेशा रहता था, लेकिन उस टाइम मैं नहीं था। शूट हो रहा था और कुछ ब्लास्टिंग का सीन था। सेट्टी साहब, रोहित सेट्टी के पिता, आप फाइट मास्टर थे उसके, सेट्टी साहब से कुछ टाइमिंग मिस हो गई, उनको जंप मारना था और उसके बाद सेट्टी साहब को ऑर्डर देना था कि ब्लास्ट करो। और पेट्रोल ब्लास्ट था, क्योंकि पेट्रोल ब्लास्ट तो आप जानते हैं कि पेट्रोल की बहुत बड़ी थैली वगैरह रखी जाती है और वो बहुत खतरनाक ब्लास्ट होता है, उसकी चपेट में अगर कोई आदमी आ जाए तो टोटल लॉस, बचता ही नहीं है। सर ऐसा था कि उनको जंप मारना था और यहाँ से इनको ऑर्डर देना था,
1: जी जी
0: लेकिन वो थोड़ा सा टाइमिंग मिस हो गई।
1: ओ हो
0: उन्होंने जैसे ही किया, इन्होंने इन्हें ऑर्डर दे दिया सेट्टी साहब ने, फिर क्या, आग की चपेट में आ गए
1: जी
0: और 100% जल गए। वहां से बहुत बड़ा धक्का लगा हमको और कुछ दिनों के बाद, 2-4 10 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। काफी इंडस्ट्री ने शोक प्रकट किया, लेकिन सर हमारा तो मतलब सब कुछ चला गया और ये समझ लो कि मेरा वक्त थम सा गया। अब हमारे परिवार को फिल्म लाइन से नफरत होने लगी, भाई
1: जी जी
0: उनका एक जवान चला गया, अब मैं संघर्ष करूं तो कैसा करूं। लेकिन मुझे तो मतलब एक नशा था फिल्म लाइन का और मैं तो मतलब निर्देशक ही बनना चाहता था,
1: जी जी
0: तो मैं चोरी चोरी छुपे छुपे जो है फिल्म लाइन में जाना लगा। लेकिन मेरे अंकल का नाम था और मैं उनके साथ जाता था तो मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान थी और लोग मुझे जो है इज्जत की नज़र से देखते थे। इसके बाद में सर ऐसा हुआ कि मुझे काम मिलने लगा, काम ये मिलने लगा कि प्रोडक्शन में मैं लग गया। अब जो मुझे काम सीखना है, जो मिलेगा वो करूँगा।
1: बिल्कुल
0: तो मैं प्रोडक्शन के अंदर, मैंने कई फिल्में जो है वो प्रोडक्शन में, असिस्टेंट प्रोडक्शन और प्रोडक्शन मैनेजर में मैंने की।
1: हाँ
0: एक्चुअली मेरा फिल्म दुनिया से काफी पुराना संबंध है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पिता बहुत पहले, मतलब तकरीबन 35-40 साल पहले, 50 साल पहले बोल सकते हैं आप, क्योंकि हम लोगों का घोड़ों का कारोबार था, तो घोड़े वगैरह भी फिल्मों में देते।

0: थे, वो चीज मेरे दिमाग में थी। मैंने बड़ी बड़ी फिल्में की, मैंने उफ ये मोहब्बत विपिन हांडा जी, जिसमें ट्विंकल खन्ना, अभिषेक कपूर, गट्टू जी जो काइपो 6 के बाद में जो है निर्देशन किया था और काफ़ी अच्छे इंसान हैं, अनुपम खेर जी थे। अच्छा देखिए सर, इसके पीछे भी एक मैं आपको छोटा सा बताना चाहता हूँ कि पहलाज नहलानी जी के साथ में मैंने आके फिल्म की थी।
1: अरे वो तो बहुत बड़ी फिल्म थी।
0: हाँ, पहलाज जी बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं पहलाज जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी बदौलत मुझे फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी काम मिला। पहला जी जो थे, उन्होंने कहीं से पहला जी को नंबर मिला, पहला जी ने मुझे बुलाया, पहला जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मैं आके फिल्म बना रहा हूँ गोविंदा को लेके, चीची को लेके। पहला जी बोले, नहीं इकबाल, तू बंदा अच्छा है, तू एक काम कर, प्रोडक्शन में आ जा। तो मतलब सर, इससे बड़ी बात क्या है। मैं उनके साथ में प्रोडक्शन में लग गया कुछ दिन के लिए। बलवंत जी प्रोडक्शन मैनेजर थे, मैं उनके साथ में कुछ दिन लगा। एक बड़े काम का बंदर, उस गाने के अंदर जो मेरे से हो सका वो मैंने उसमें किया। उसमें एक हादसा हो गया था सर,
1: जी
0: शायद वो हादसे की वजह से पहला जी के दिल में मेरे लिए कुछ जगह बन गई हो। हादसा ये हुआ था कि हम लोग जूहू चौपाटी के ऊपर गाना कर रहे थे, बड़े काम का बंदर। उसके अंदर आपने देखा होगा, रस्सी पे एक लड़की चलती है, नट नट वगैरह बोलते हैं ना,
1: बिल्कुल
0: खेल तमाशा करते हैं, तो गाने के अंदर ऐसा बताया है। तो वो लड़की चल रही थी और भाई फुल गर्मी का मौसम था, तो अचानक वो लड़की थी वो बेचारी गिर गई। अब गिरी तो सर के बल सर बेहोश हो गई। वहां गोविंदा साहब थे, चिंकी पांडे थे, प्रहलाद जी थे और तरुण डांस मास्टर थे, सब चौंक गए एकदम। मैंने उठाया, क्योंकि उसको मैं लाया था ना, मेरी जवाबदारी थी। उठा के उसको थोड़ा सा पानी वानी पिलाया तो सब घबरा गए कि अब क्या होगा, क्योंकि सेट के ऊपर ऐसा हो गया है। भाई दो बातें हैं, एक तो इंसान तकलीफ हुई है, दूसरी अगर शूटिंग नहीं होगी तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। दोनों बातें हैं ना। मैं उसको तुरंत उठा के हॉस्पिटल ले गया नज़दीक के। बोला, सर मुझे सिर्फ एक आधा घंटा दीजिए, आप आधे घंटे तक आप अपना जो काम है दूसरा कुछ कर लीजिए। और मैं जाके उसका मतलब फटाफट जो भी ट्रीटमेंट होता था वो करवाया, तो इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर ने दिया और कुछ किया, तो वो थोड़ा ठीक हो गई। भाई मैं तो फिल्मी आदमी हूँ, मुझे पता है कि अगर ये काम नहीं होगा तो नेचुरली नुकसान हो जाएगा। वो उनसे आग्रह किया वो लड़की से कि बेटा तू अभी ठीक है? तो उन्होंने बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। तो आप खाली एक शॉट, क्योंकि वो मास्टर शॉट था, अगर वो शॉट नहीं देते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। तो मैंने बोला, एक मास्टर शॉट है, आप अगर दे सकते हो तो दे दीजिए, इससे जो है प्रोड्यूसर का मतलब नुकसान होने से बच जाएगा। और हम लोग फिल्मी हैं, हम लोग जो है मतलब काम करने वाले हैं, टेक्नीशियन हैं, हमारा फर्ज है प्रोड्यूसर की हेल्प करना। तो उन्होंने सर वो शॉट दिया, वो शॉट ओके हो गया। इतने खुश हुए प्रहलाद जी कि मुझे गले लगा लिया, मुझे गले लगा के समंदर के किनारे मेरे कंधे पे हाथ रख के चले गए। पैकअप बोल दिया तरुण जी ने और हम चले गए। मुझे 10,000 रुपये निकाल के प्रहलाद जी ने मेरे हाथ में रख दिया। बोला, सर ये किस बात का? बोले, ये आपका, आपने आज बहुत अच्छा काम किया। मैं बोला, सर नहीं, ये पैसे का तो सही हकदार मैं नहीं हूँ, इस पैसे के सही हकदार वो बच्ची है कि पैसा उसको मिलना चाहिए। बोले, आप अपने हाथ से दो, मुझे इसमें शामिल मत करो। देखिए पहला जी का भी बड़कपन देखिए। मैंने फिर वो बच्ची को जाके मैंने वो पैसा उसको दे दिया। मैंने बोला, ये रखो आप, अगर आपको कोई और कुछ तकलीफ है तो बताइएगा। वैसे तो वो नॉर्मल थी। खैर ये हुआ तो प्रहलाद जी के दिल में शायद मेरे लिए कुछ जगह बन गई। अब मैं उफ ये मोहब्बत पे आ जाता हूँ फिर से। विपिन हांडा जी उफ ये मोहब्बत बना रहे थे, डब्लू राव जी कैमरामैन थे, खुदा गवाह वगैरह बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की डब्लू राव जी ने। विपिन हांडा जी की ऑफिस नहीं थी, तो उन्होंने होटल के अंदर अपनी ऑफिस बनाई हुई थी। मुझे वहां बुलाया प्रहलाद जी के जरिए, प्रहलाद जी ने उनको नंबर दिया। प्रहलाद जी ने बोला, एक ही बंदा है इकबाल, वो सब कुछ कर देगा और उसको बहुत शौक है, और वो लड़का ऐसा है कि मतलब आपका प्रोडक्शन भी संभाल लेगा, आपका सब कुछ कर लेगा। उन्होंने मुझे बुलाया सर, तो वहाँ डब्लू राव भी थे। अब डब्लू राव इतने बड़े कैमरामैन, मैं फर्स्ट टाइम उनसे मेरी मुलाकात हुई, रूबरू हुआ मैं। तो डब्लू राव जी ने, काफ़ी अच्छे इंसान है, उसमें ट्विंकल खन्ना, अभिषेक
1: जी
0: कपूर
1: जी
0: और अनुपम खेर ये आर्टिस्ट थे। वो फिल्म मैंने पूरी की, कंप्लीट की, उनके साथ में मैं जुड़ा रहा। पर मेरा तो मकसद था डायरेक्टर बनने का, तो मैं तो मतलब अपना जो डायरेक्टर जो करता था, जो डायरेक्शन देता था, जो बोलता था, मैं बस उसको ही फॉलो करता रहता था। तो सर ऐसा मैं सीखता गया, मैंने बहुत सी फिल्में की।

0: फिल्म निर्देशक इकबाल अली से बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। एक तमन्ना जीवन की। इनसे बातचीत की आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। अंगना में बाबा द्वारे पे माँ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले।
1: कैसे आए गौरी हम तोहरे घर माँ।
0: प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

आज के हवा महल कार्यक्रम में प्रस्तुत है झलकी रूटीन केस, लेखक राजकुमार दाग, निर्देशक दीनानाथ।

0: चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी
1: इतना पानी
0: हरा समुंदर गोपी चंदर बोल मेरी मछली कितना पानी
2: अबे तानसेन की औलाद बंद कर रे आगरण तुम्हें मालूम है कि मैं बीमार हूँ बिस्तर पर पड़ा हूँ फिर भी तुमने घर सिर पर उठा रखा है अरे जाकर पढ़ते क्यों नहीं जाओ अपना स्कूल का काम करो
0: एक बटे दो दो बटे चार छोटी छोटी बातों में बढ़ गया धंधा एक बटे दो दो बटे चार
2: अबे ये स्कूल का काम है ये पढ़ाई है क्या हो गया है दुनिया को अबे ओ बदतमीज तो बंद करो ये शोर वरना मार मार के हड्डी पतली एक कर दूंगा
0: मोहब्बत
2: कहाँ तक आ गई है तुम मुझे जान से ही मार डालना चाहते हो क्या जमाना आ गया है कैसी फिल्में आ गई है और मैं कहता हूँ बंद करो ये हंगामा वरना अगर मैं सचमुच ही मर गया तो क्या करोगे क्या कहोगे दुनिया से क्या कौन
3: डॉक्टर साहब को लाई हूँ जी
2: डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब जल्दी आइए और कोई ऐसा टीका निकालिए जिससे या इन्हें खामोश कर दीजिए या मुझे बेहोश कर दीजिए
4: रूटीन केस है
2: डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए और इनका कुछ कीजिए वरना मैं पागल हो जाऊंगा
5: मुझे भूख लगी है
1: मुझे कलर मम चाहिए स्कूल के लिए
4: रूटीन केस है
1: पैर चाहिए
5: मुझे पाल चाहिए
2: रूटीन केस है सिर चाहिए सिर डॉक्टर साहब अभी कुछ देर पहले ये मुझे जान से मार देने की धमकी दे रहे थे ये मेरी औलाद नहीं है ये मेरे दुश्मन है दुश्मन
3: जा तुम अंदर जाओ चलो चलो तुम भी जाओ डॉक्टर साहब इसी तरह की बातें और हरकतें ये कई दिन से कर रहे हैं कभी मुझे कोसते हैं कभी बच्चों पर बरसते हैं समझ में नहीं आता कि इन्हें क्या हो गया है डॉक्टर साहब
4: इट इज अ रूटीन केस
2: क्या रूटीन केस लगा रखी है तुम डॉक्टर हो या होकर एक ही बात बोलते चले जा रहे हो और तुम्हारा दवाइयों का बैग भी नहीं है तुम्हारे पास जबकि मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है
4: रूटीन केस है आपके घर में आईना है मेरा मतलब है मुंह देखने का शीशा
3: जी हाँ है
4: जो बड़े से बड़ा हो वो लाइए
3: अच्छा
2: आईना शीशा मेरा दर्द से सिर फटा जा रहा है
3: आईना लीजिए डॉक्टर साहब
4: लाइए लाइए मिस्टर कस्तूरीलाल इस आईने को अपने दोनों हाथों से अपने सामने पकड़िए
2: पकड़ लिया
4: इस आईने में आपको क्या दिखाई दे रहा है
2: क्या दिखाई दे रहा है अरे आईना मेरे सामने होगा तो मैं ही दिखाई दूंगा और कि तुम दिखाई दोगे
4: करेक्ट अब आईने में अपने आप को देखो और उंगली के इशारे से समझाते हुए 5 बार बोलो मुझे सिर दर्द नहीं है मुझे सिर दर्द नहीं है मुझे सिर दर्द नहीं है एंड सो ऑन
2: मैं पूछता हूँ तुम डॉक्टर हो या मरारी मैं
4: बोलो
2: बोलता हूँ
3: बोलिए ना बोलिए
2: बोलता हूँ मुझे सिर दर्द नहीं है मुझे सिर दर्द नहीं है मुझे सिर दर्द नहीं है मुझे सिर दर्द नहीं है मुझे सिर दर्द नहीं है
4: सिर दर्द गया
2: पहले से कम है
4: इट इज ऑलवेज द केस
2: इन्हें कहां से उठा लाई सावित्री तुम
4: मैं बताता हूं मैं एक साइकेट्रिस्ट हूं मानसिक रोगों का डॉक्टर और यहां आने के बाद मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि यहां बीमारी का असल कारण क्या है
2: यकीनन आपका मतलब है बच्चे जो जो मुझे जान से मार देने पर उतारू हैं
4: जी नहीं आपके बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हैं बल्कि बहुत मासूम बहुत ही प्यारे हाँ आपकी ये परेशानी कि वो आपकी जान के दुश्मन हैं फकत आपकी कल्पना है सिर्फ आपका तसव्वुर
2: कल्पना तसव्वुर
4: जी हाँ जस्ट दैट और उसका इलाज है
2: इसका इलाज
4: है अपने मन को समझाना
2: यानी
4: आप अपने मन को समझाइए कि आपको जो फिक्र और परेशानी है असलियत में ऐसा कुछ नहीं है और जो है वो महज कल्पना है
2: कल्पना
4: इमेजिनेशन ऐसा करने से आप हमेशा खुश रहेंगे आपकी हर मुसीबत खत्म हो जाएगी और आपके बच्चों का ये शोर मधुर संगीत में बदल जाएगा
2: ऐसा
4: जी हाँ मनोविज्ञान इसी का तो नाम है। जी हाँ। अब बताइए, अब आप बताइए, अभी कुछ देर पहले आपके सर में दर्द था, मैंने आपका मनोवैज्ञानिक इलाज किया, क्या अब आपको सिर दर्द है?
2: अरे
4: है, बोलिए।
2: वाकई डॉक्टर साहब, मुझे तो बिल्कुल सिर दर्द नहीं है, और सच तो यह है कि मैं बिल्कुल भूल ही गया हूँ कि मुझे सिर दर्द था।
4: बस यही मन की साइंस है। दरअसल आदमी कल्पना कर लेता है कि उस पर मुसीबतें टूट रही हैं, और इस तरह वो खुद को परेशान कर लेता है। अच्छा। जबकि उसे इन पर हंस देना चाहिए, नजरअंदाज कर देना चाहिए। इंसान की कल्पना ही
2: कौन
6: बाऊजी, बिजली का बिल लाया हूं।
2: अभी आया, लाओ।
6: बाऊजी यहां दस्तखत कर दीजिए।
2: कहां?
6: यहां।
2: अच्छा लो। क्या इतना ज्यादा बिल?
6: अजी बाबूजी, बिल तो यही जाहिर कर रहे हैं।
2: ये इतना ज्यादा कैसे?
6: अजी आपके मीटर की खराबी होगी।
2: तो फिर मैं बिल नहीं लेता, आप इसे ठीक करवा के लाइए जी।
6: अजी बाबूजी, बिल तो आपको लेना ही पड़ेगा। हाँ, और बिल जमा भी कराना पड़ेगा, वरना आपकी बिजली कट जाएगी। हाँ, आप ऐसा कीजिए कि हमारे दफ्तर में आके मीटर की कंप्लेंट लिखवा दीजिए, मीटर चेक होने पर और गलत निकलने पर रिफंड मिल जाएगा। और हाँ, आपकी सहूलियत के लिए बता दूं कि हमारे दफ्तर के बिलिंग डिपार्टमेंट में एक दो खिड़कियां छोड़ के खिड़की नंबर 3 पे मिस कल्पना बैठे हैं। क्या कही?
2: कल्पना?
6: मिस कल्पना।
2: अरे मैं किस चक्कर में पड़ा हुआ है? अरे ये तो सब मेरी कल्पना है कि मुझे बिल मिला है।
6: क्या गई?
2: वाह भाई वाह, दिस इज जस्ट माय इमेजिनेशन। अरे कुछ नहीं भैया, ला इधर ला, इधर ला बिल। मैं भी खाम खाम परेशान हो रहा हूँ।
7: बाबू कस्तूरी लाल जी, जय राम जी।
2: आइए आइए रामलाल जी, जय राम जी की।
7: कहिए जनाब, क्या हो रहा है?
2: बस मजे हो रहे हैं रामलाल जी, आप सुनाइए क्या हो रहा है?
7: सत्संग हो रहा है।
2: सत्संग?
7: जी हाँ, सत्संग।
2: अच्छा अच्छा।
7: उसी सिलसिले में आया हूँ।
2: मतलब?
7: बस थोड़ी आपकी श्रद्धा चाहिए।
2: मतलब?
7: ये रसीद है।
2: मगर मैं भी क्या सोच रहा हूँ, ये भी कोई परेशानी की बात है? ये लो, बोला ये भी कोई हकीकत है
7: जी?
2: अरे सोच क्या रहे हो बाबू रामलाल, लो ये सब कल्पना के खेल हैं। और हाँ, जरा ठहरिए डॉक्टर साहब, आप भी नीचे आ रहे बीच
4: में। मगर
2: सुनिए तो सही, मगर अगर मत कीजिए, मगर की जात पानी में मतलब रुपए निकाल दिए, दान का दान और कल्पना की कल्पना।
4: अरे मगर अब मेरा कोट तो छोड़िए।
2: अरे ठहरिए,
4: बड़ुआ बड़ुआ बड़ुआ।
2: एक दो, ये रहे रुपए। लो भैया रामलाल जी, डॉक्टर साहब की तरफ से भी, और रसीद वसीद बाद में भेज देना है।
7: धन्यवाद।
4: मगर
2: अरे डॉक्टर साहब, मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, आपने तो मेरी काया ही पलट दी। मैंने अभी अभी कल्पना की कि मैंने रुपए दान दिए, जबकि असल में ऐसी कोई बात थी ही नहीं, यानी आम के आम और गुटलियों के दाम। कितना हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ मैं डॉक्टर साहब।
4: मगर आप मेरी बात तो सुनिए।
2: देखना तो सावित्री कौन है जरा।
8: जीजा जी, मैं हूँ गिरधारी। जीजी नमस्ते।
9: नमस्ते। आओ भैया, क्या सीधे मेरठ से आ रहे हैं?
8: जीजी और जीजा जी,
2: मगर अभी कुछ ही दिन पहले तो तुम आए थे।
8: जीजा जी, बात ये है कि आज कुछ खास बात है, इसीलिए आया हुआ।
2: डॉक्टर साहब, आज तो मेरी कल्पना खूब खेल खेल रही है मुझसे। एक मिनट के लिए तो मैं घबरा ही जाता हूँ जब कोई मुसीबत आती है तो, है। और अब तो सबसे बड़ी मुसीबत आई है, मगर मैं
8: मेरी समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा जीजा जी, कि आप मेरी बात तो सुनिए।
2: अरे ये मनोविज्ञान की बातें हैं सालिग्राम, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी।
8: मगर मेरी बात आपकी समझ में जरूर आएगी जीजा जी। हाँ, आपका 25,000 रुपए का इनाम निकला है।
9: अरे भाई सच्चा?
8: हाँ दीदी, इस बार मैं मैंने लॉटरी के दो टिकट खरीदे थे, एक अपने नाम एक जिज्जा जी के नाम, और जिज्जा जी का इनाम निकल आया, ये देखिए टिकट।
3: अरे भैया
10: जवाब नहीं, इस कल्पना देवी का भी क्या क्या नजारे दिखाती है, पहले वो सब और अब ये 25,000 रुपए का इनाम। जवाब नहीं मनोविज्ञान का भी।
8: आप किस मूड में है जिज्जा जी, इसे मजाक मत समझिए। हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, आपका 25,000 रुपए का इनाम निकला है। हाँ
10: आज 1 अप्रैल है, कहीं मेरा 1 अप्रैल फूल तो नहीं बना रहा।
4: नो मिस्टर कस्तूरीलाल, ये सच है, आपको वाकई 25,000 रुपए का इनाम मिला है।
10: सचमुच मेरा इनाम निकला है? तब तो क्या ये इमेजिनेशन नहीं है, यानी यानी मैं अमीर हो गया, यानी मेरे कई मसले हल हो गए। वाह वाह, अजय रामू सोनू मोनू गप्पू पप्पू की माँ। अरे खड़ी क्या हो, इन लोगों का मुंह मीठा कराओ। गुड़ तो होगा ना घर में? 25,000 रुपए का इनाम, वाह वाह। अब जरा हिसाब लगाऊं, इसे कैसे इस्तेमाल करूंगा, किस तरह इसको बजट करूंगा, क्यों डॉक्टर साहब?
4: श्योर श्योर,
10: और आपकी भी जरूरत नहीं रहेगी।
11: पिताजी, मम्मी रसोई में अचानक चक्कर खाकर गिर गई हैं, पता नहीं क्या हुआ, जल्दी चलिए।
10: डॉक्टर साहब,
4: मैं अभी देखता हूँ, चलिए
10: चलिए चलिए।
11: मम्मी, डॉक्टर साहब जल्दी देखिए मम्मी को क्या हुआ है।
12: पिताजी क्या हुआ है मम्मी को?
11: मम्मी
12: मम्मी
8: जीजी जीजी,
4: आप जरा एक तरफ हो जाए, मैं देखता हूँ।
8: जिज्जा जी, शायद जिज्जी खुशी से बेहोश हो गई।
4: मिस्टर कस्तूरीलाल
10: जी, डॉक्टर साहब,
4: इट इज अ रूटीन केस।
10: रूटीन केस?
4: आपके बच्चों की माँ फिर माँ बनने वाली है।
8: क्या?
4: जी हाँ, और ये ना कल्पना है और ना 1 अप्रैल फूल वाली बात।
8: अरे ये तुम सबने क्या कर दिया?
13: हमने
14: हमने क्या किया?
10: अरे मेरा सारा बजट चौपट कर दिया।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए एक पहेली लीला। इस फिल्म का गीत तुलसी कुमार, आलम खां, ऐश्वर्या मजुमदार और डब्बू मलिक की आवाजों में। कुमार के लिखे इस गीत की धुन बनाई है उजैर जायसवाल ने।

लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह और शिल्पा राव को फिल्म लाल सिंह चड्ढा में। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल हैं और संगीत है प्रीतम का।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

चित्रलोक कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए सुनिए कृष्णा के संगीत निर्देशन में राजशेखर का लिखा गीत, आवाजें मोहित चौहान और उज्जैनी की फिल्म का नाम तनु वेड्स मनु।

इंग्लिश विंग्लिश। अब सुनिए इस फिल्म का गीत सुनिधि चौहान और स्वानंद किरकिरे की आवाजों में। बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने और संगीत से सजाया है अमित त्रिवेदी ने।

अब सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम के अंतिम पेशकश। इस गीत को संयुक्त रूप से लिखा है कैसरुल जाफरी और संदीप श्रीवास्तव ने। संगीत प्रीतम का, बोल पापोन के, फिल्म का नाम मेट्रो इन दिनों।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के

0: अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: कैन एंटर द वेनेजुएलन मार्केट सक्सेसफुली।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
3: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
2: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को

0: स्थिरता मिली है।
1: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है, लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
0: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
2: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
0: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
5: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
3: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
6: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सुनैना फिल्म के गीत से, जिसे गाया है यशुदास ने। गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

अभी आपने यशोदास को फिल्म सुनैना में सुना, अब सुनिए लता मंगेशकर का गाया सौदागर फिल्म का गीत। गीत और संगीत एक बार फिर से रविंद्र जैन का।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अब सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम की फिल्म का नाम एक दूजे के लिए।

लता मंगेशकर के बाद आइए सुनते हैं आशा भोसले को फिल्म अनामिका में। रचनाकार है मजरू सुल्तानपुरी, तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

आशा भोसले का ही गाया एक और गीत सुनते हैं अली बाबा 40 चोर से। धुन बनाई है आर डी बर्मन ने, वो लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

आप हमारे ये कार्यक्रम सुन रहे हैं विविध भारती से, आज के फनकार। ये कार्यक्रम होगा बस थोड़ी ही देर बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था। लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगीत।

नूतन समर्थ बहल, जी हां नूतन। इनका जन्म शोभना समर्थ और कुमार सेन समर्थ के घर सन 1936 के 4 जून को हुआ। चार भाई बहनों में नूतन सबसे बड़ी थी। पिता कुमार सेन समर्थ जाने माने कवि और निर्देशक थे तो माता शोभना समर्थ अपने जमाने की मानी हुई अभिनेत्री थी। पौराणिक फिल्मों में उनके द्वारा अभिनीत सीता के किरदार को इतना सराहा गया था कि शोभना समर्थ और सीता ये जैसे एक समीकरण ही बन गया था। आज हम बात कर रहे हैं इनकी सुपुत्री नूतन की। नूतन को अभिनय कला, संस्कृति के संस्कार धरोहर ही में मिले थे, लिहाजा उनकी माताजी ने 1950 में नूतन को ब्रेक देने के इरादे से फिल्म हमारी बेटी का निर्माण किया। तब नूतन की उम्र महज 14 साल की थी। उल्लेखनीय बात यह है कि नूतन इस छोटी सी उम्र में मिस इंडिया खिताब की विजेता रही थी। 1953 में उन्हें बड़ा ब्रेक मिला शम्मी कपूर अभिनीत फिल्म लैला मजनू में। सरदार मलिक साहब का संगीत बड़ा ही लोकप्रिय बन पड़ा था इस

नूतन एक संवेदनशील अभिनेत्री थी। उनके चेहरे पर उभरने वाली भावभंगिमाएं उनकी बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी को जैसे कॉम्प्लीमेंट करती थी। यही उनके खूबसूरत अदाकारी की खूबी थी। किसी भी चरित्र की गहराई में घुसकर उस चरित्र को जीवंत करने के लिए अधरों का कंपन, उनके भाल पर उभरती रेखाएं, आंखों की सूक्ष्म हलचल, इन बातों से वो पात्र को बिल्कुल जीवंत बना देती थीं। यही वजह है कि सन 1955 में अमिया चक्रवर्ती द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म सीमा के लिए उनका चुनाव हुआ। इस फिल्म में उनकी भूमिका को इतना सराहा गया कि इस साल के फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया।

दोस्तों, फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड 5 बार जीतने वाली अपने जमाने की वो पहली अभिनेत्री थी। बात सन 1959 की है। सामाजिक विषमता की विभीषिका को बिंब बनाकर फिल्मों के साथ साथ सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले सुलझे हुए निर्देशक बिमल रॉय फिल्म सुजाता का निर्माण कर रहे थे। नारी प्रधान और सामाजिक विषमता के विषय वाली ये फिल्म और इसका सुजाता का किरदार बड़ा ही जटिल था। इस फिल्म के रोल के लिए नूतन का चुनाव हुआ और नूतन ने भी अपनी सशक्त अदाकारी से इस फिल्म के इस किरदार में जैसे जान फूंक दी। फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला।

नूतन अपनी अभिनय क्षमता के कारण जटिल से जटिल भूमिकाओं को साकार करने में महारत रखती थीं। फिल्म सुजाता के बाद जो बहुचर्चित उनकी फिल्म आई वो थी बंदनी। सन 1963 में यह फिल्म रिलीज हुई थी। बिमल दा ने इस फिल्म का विषय भी बड़ा ही हटके चुना था। स्त्री का मनोविज्ञान और उसकी पेचीदगी को दर्शाने का मार्मिक चित्रण था इस फिल्म में। जैसे कि फिल्म के नाम से ही जाहिर होता है, ये फिल्म नारी प्रधान फिल्म थी। नूतन ने अपने तरल अभिनय से विषय वस्तु की जटिलताओं को समझते हुए बड़ी सहजता से उन्हें अभिनीत किया था। इस फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया।

1959 में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म पेइंग गेस्ट में उन्होंने अदाकारी के कुछ रोमानी अंदाज पेश किए। इनके हीरो थे एवरग्रीन अदाकार देवानंद।

0: ना क्या कहेगा।
1: कुछ ऐसी ही रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी अन्हारी, जो आई थी सन 1959 में। इस फिल्म में नूतन के हीरो थे अपने जमाने के ग्रेट शोमैन राज कपूर।

रोमांटिक कॉमेडी फिल्म छलिया में भी उन्होंने राज कपूर साहब के साथ हीरोइन का रोल निभाया था। फिल्म के निर्देशक थे मनमोहन देसाई।

1958 में एक फिल्म आई थी सोने की चिड़िया। इस म्यूजिकल फिल्म में भी नूतन ने अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। दोस्तों, देवानंद साहब के साथ उनकी एक और चर्चित फिल्म आई थी 1960 में, जिसका नाम था तेरे घर के सामने।

60 से 70 के दशक में उनकी कई फिल्में आईं। बहुत कम फिल्में हैं जो नहीं चली। लगभग हर फिल्म का संगीत हिट था, चाहे 1952 की फिल्म शीशम हो या 1954 की फिल्म शबाब हो, 1956 की बारिश हो या 1957 की फिल्म दिल्ली का ठग हो, 1958 की फिल्म आखिरी दांव हो या 1964 की फिल्म खानदान हो, 1965 की फिल्म रिश्ते नाते हो या हो 1968 की फिल्म सरस्वती चंद।

0: जहां तक फिल्म फेयर के चौथे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड का सवाल है, वो उन्हें मिला था फिल्म मिलन के लिए जो रिलीज हुई थी 1967 में। प्रसाद प्रोडक्शंस के बैनर तले ये फिल्म बनी थी।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,

रे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।

1978 में आई फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस फिल्म में उनके सशक्त अभिनय के लिए भी उन्हें मिला था फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। इस समय उनकी उम्र थी 42 साल।

0: दोस्तों, अभिनेत्री नूतन ने मुख्य अभिनेत्री की भूमिकाएं तो कई की, साथ ही साथ चरित्र भूमिकाएं भी की हैं। इनमें जो यादगार हैं वो हैं 1986 में आई फिल्म जो कि दलीप कुमार के साथ थी, फिल्म कर्मा।
1: बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बात

0: बारंबार इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी डू यू लव मी डू यू लव मी,
1: तो क्या कहा आपने?
0: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू सुबह।

1985 में फिल्म मेरी जंग, जिसमें उन्होंने अभिनेता अनिल कपूर की माता का रोल किया था। दोस्तों, नूतन ने कुल 70 फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी पहली फिल्म थी 1950 में आई फिल्म हमारी बेटी, और आखिरी फिल्म थी 1994 में आई फिल्म इंसानियत, जो उनके स्वर्गवास के पश्चात रिलीज हुई थी। दोस्तों, उनके बेटे मोहनीश बहल एक सफल अभिनेता हैं। नूतन की छोटी बहन अपने जमाने की जानी मानी मारूफ अदाकारा रही हैं तनुजा। इन्हीं की बेटी है काजोल भी, जो हिंदी फिल्मों में एक कामयाब अदाकारा हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने फिल्मों में नूतन के अभिनय को सराहते हुए सन 1974 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। हिंदुस्तानी फिल्मों में अदाकारी के शिखर को छूने वाली शोभना कुमार सेन समर्थ की ये छबीली बेटी अपने बेटे मोहनीश बहल को खानदान की अदाकारी की ये यादगार धरोहर सौंपकर 54 वर्ष की छोटी सी आयु में 21 फरवरी 1991 में हम लोग की दुनिया छोड़ परलोक से धार गई।

0: तो ये था आज के फनकार ये कार्यक्रम, केंद्रित था अपने जमाने की जाने मानी अभिनेत्री नूतन पर। शोध आलेख और स्वर अशोक सोनावणे का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी, मैंने इसे

0: बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
1: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, हर दिन पहले से ज्यादा खूबसूरत लगने लगा है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी मुस्कान सब दिल में घर कर गई हैं। अब हर दुआ में तुम्हारा नाम शामिल होता है, शायद यही तो प्यार है। जब किसी एक इंसान में पूरी दुनिया दिखाई देने लगे और मुझे मेरी पूरी दुनिया तुम में नजर आने लगी है।

हर मुलाकात के बाद कुछ नए अल्फाज चुन लाता है, जैसे दिल की धड़कनों को सुरों में पिरोकर कोई गीत बना रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, मानो हर धुन में सिर्फ अपनी महबूबा का ही चेहरा दिखता हो। कभी चांद की बात करता है, कभी बारिश की, पर असल में हर गीत उसी के नाम लिखा होता है। वो आशिक अपनी मोहब्बत को शब्दों और सुरों में सजाकर हर रोज एक नया नगमा लेकर आता है।

अब राहें अलग नहीं रही, जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे कदम साथ चलेंगे। खुशियों की धूप हो या मुश्किलों की छांव, हम एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते रहेंगे, हर परिस्थिति में, हर पड़ाव पर। अब ये सफर सिर्फ मैं का नहीं, हम का होगा, समय चाहे जैसा भी हो। साथ निभाने का ये वादा अब हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत सच्चाई बन चुका है।

अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। तुम चाहे जितनी बेरुखी कर लो, चाहे हर बात में हमें दर्द ही क्यों ना मिले, फिर भी इस दिल की धड़कनों पर बस तुम्हारा ही नाम रहेगा। हम शिकायत भी करेंगे तो तुम ही से, और दुआ भी मांगेंगे तो तुम्हारे लिए, क्योंकि इश्क ने हमें ऐसा बना दिया है कि जुल्म तुम्हारे होंगे, फिर भी गीत तुम्हारे ही गाए जाएंगे।

अब और कितना रूठोगे तुम? देखो, मैं हार गई हूं। अपने सारे गिले, अपनी सारी जिद तुम्हारे कदमों में रख दी है। चलो अब मान भी जाओ। तुम्हारी खामोशी अब दिल को तकलीफ देने लगी है। आओ फिर से वैसे ही बातें करें, जैसे कभी हमारे बीच दूरियां हुआ ही नहीं करती थी।

तेरी मोहब्बत में इस कदर खो गए हम कि अब दुनिया की कोई बात दिल को छूती ही नहीं। ना दिन अपने लगते हैं, ना रात में सुकून मिलता है। हर तरफ बस तेरा ही नाम, तेरा ही एहसास बसा रहता है। तेरी आंखों में ऐसे डूबे कि अपना वजूद तक भूल बैठे हैं। अब हाल ये है कि तेरे प्यार में हम सारा आलम खो बैठे हैं।

सागर सागर नया सागर तो ही ले ले मेरे खुदा, दिल से कोई किसी के ना खेले।

श्रोताओं नमस्कार। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के कार्यक्रम रंग तरंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत।